चित्रकूट के पशु पक्षियों, पेड़ पौधों तथा चर अचर प्राणियों के भाग्य से देवताओं को ईर्ष्या तो होती है, किंतु वे उनका जय जयकार करते हैं, उन्हें धन्य मानते हैं। क्षीर सागर को त्याग कर और अयोध्या को छोड़कर जहाँ श्री राम और सीता जी लक्ष्मण के साथ आकर रहे, उस स्थल की शोभा का बखान तो हजार मुंह वाले भी नहीं कर सकते। फिर भला कवि की वाणी की क्या बिसात। चित्रकूट प्रवास में श्री राम का स्नेह पाकर लक्ष्मण को अन्य आत्मियों के स्वप्न में भी याद नहीं आती। सीता जी भी घर द्वार भूलकर बहुत सुखी हैं, मानो राम रूपी चंद्रमा को देख देख कर चकोरी का प्रेम दिन दूना बढ़ता जा रहा है। पर्णकुटी प्रिय लगती है।

का अमानन कर चिरदशा अनुभवतन परुवाहन इक्लिम पर परावतन कस्य हातन दान पम्बांगुनान बरकलान जुतान मरेका मंडुकुं कर्जा समायांग लेबी कुआत दलम कस्यापन मंगहडापी पांडेमी दान सिस्टम पर इंगातान दिनी तर तरपाडु उन्तुक पनियाकित मनुलार मंगेनाय आसिया बरात पारा पमिम्पिन ब्रिक्स मनियरुकान पंगकांगान मैक्सिमल डायलॉग दान डिप्लोमेसी सरता मनेकानकान परलुनिया मलिंडुंगी वार्गा सिपिल दान इंफ्रास्ट्रक्चर सिपिल पारा पमिम्पिन मंगुतुक करास टेररिज्म दलम सगाला बंतुकनिया दान मनेगास्कान कंबाली कबीजाकान तांपा तोलेरांसी तरहडाप टेररिज्म प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगादा खान सरंकायन प्रतिमुआन बिलेत्राल दंगान पारा पमिम्पिन दुनिया दी सेला सेला काते थे ब्रिक्स दी न्यू दिल्ली सलामती का हारी तर आखिर बापा मोदी मंगादा खान लिमा बिलास प्रतिमुआन दंगान कपाला नगारा दान पमरिंता हन सलाइन बरापा प्रतिमुआन सिंगात दंगान पारा पमिम्पिन दुनिया दान कपाला लंबा का इंटरनेशनल बलियाउ मंगादा खान पमबिचारा आन बिलेत्राल दंगान पारा पमिम्पिन कजास्तान कजाकिस्तान मेसी इंडोनेशिया फिलिपीना अफ्रीका सलातान बुरुंडी नाइजीरिया दान उगांडा प्रधानमंत्री मोदी बर्तेमु दंगान प्रेसिडेंट कजाकिस्तान कोसिम जोमरात तोकायो दान मनिंजाओ कर्जा सामादी बिडंग पॉलिटिक प्रदागान प्रतहनान दान क अमानान कनेक्टिविटास इनर्जी मिनरल पेंटिंग टेक्नोलॉजी बारू इकोनॉमिक क्रिएटिव दान हुबुंगान अंतारा मसियारा अंतर मसियाराकात दिया जुगा बर्तेमु दंगान प्रेसिडेंट मेसिर अब्दुल फतह एलसीसी दान प्रेसिडेंट इंडोनेशिया प्रभाबो सुबियांतु सलामा प्रतेमुआन निया दंगान प्रेसिडेंट फिलिपीना फर्डिलानन आर मार्कोस जे आर मोदी मनियाम्बुत बाइक कपुतुसान फिलिपीना उन्तुक बरगाबुंग दंगान को आलिसी उन्तुक इंफ्रास्ट्रक्चर यांग ताहन बंचाना दंगान प्रेसिडेंट अफ्रीका सलातान सियारिल रामाफोसा मोदी मनिंजाओ सलरू रंकायान कमित्रा आन स्टार्जिज इंडिया अफ्रीका सलातान दिया जुगा बर्तेमु दंगान वकील प्रेसिडेंट नाइजीरिया कासिम सेतिमा पाडा हारी साप्तू प्रधानमंत्री मंगाडाकान प्रतिमुआन बिलेत्राल दंगान पारा पमिम्पिन इथोपिया मलेशिया यूएई वियतनाम दान त्योंकोक पाडा हारी जुम्मा दिया बर्तेमु दंगान पारा पमिम्पिन रूसिया दान ईरान सरता सेक्रेटरीस जनरल पाबेबे कॉन्फ्लिक्ट एशिया बरात उपाय डिप्लोमेटिक कंबाली मंदपात फोकस करेना कॉन्फ्लिक्ट आयस ईरान यांग सडंग बरलांगसुंग तरुस ममंग गारूही कवासान तलुक इराक दान नगारा नगारा तलुक दी जादवाल कान बर्तमु दी ओमान हारी इनी उन्तुक मंबाहा सलात होमरूस दान क अमानान रिगियोनाल यांगले भी लुआस ईरान मंगाता कान तिल्ला मन चपय कस पहामान दंगान ओमान मंगेनाई क मुंगिंग नान रूट मासुक दान कलवार मलालुई सलात ताइवान नामुन कस पकातान सगेरा उन्तुक मंबुका कंबाली सलात ताइवान तंपाकनिया तीदा मुमकिन करेना ईरान मंगाता कान हालिनी अकान बरगांतुंग पाडा पर सतुजुवान अमेरिका सरिका तरहडा परसियारा समंतारा इतु मीडिया पमरिंता ईरान मलापुरकान बहवा सबुआ कपाल दागांग ईरान दिहंताम दि देकात पुलाव केसम मनियवासकान सातु औरंग दान मलुकाई तिगा लाइनिया पम्बरताक हौती यमन दान दिदुकुंग ईरान मंगक्लेम सरंगान रुदाल दान ड्रोन लाइनिया तरहडाप पंगकालान मिलेतर दिसलातान अरब सऊदी ऑथोरितास परताहनान सिपिल सऊदी मंगाता कान सबुआ प्रयोक्तिल जातुह दी प्रोविंसी एल तुवाल देकात परबातासान यमन मलुकाय दुआ औरंग दान मरुसाक सबुआ मस्जिद दान बबरापा बंगुनान इंडिया मंगेंदुंग सरंगान तरहडाप कपाल दागांग एमते एल गिया दी लेपास पांताय ओमान कदुतान बेसार इंडिया दी ओमान मंगाता कान तिगा बिलास अवाक कपाल इंडिया तेलाह दी सलामत कान समंतारा ओपेरासी पंचायरियान दान पनियेला मातान त्रुस दिलाकु कान उन्तुक सातु वर्गात नगारा इंडिया यांग हिलांग
Kapal Indonesia di Indonesia 6 orang.

मनियाम्बुत दिस देलेगासी दी हम्पिरतिगा पुलुकोता दिसलरु नगरी दल दलाम्पिदा तोनिया प्रधानमंत्री मनियरोटी बाहवा नगारा नगारा ग्लोबल साउथ बरादा दी बारिस तरदेपन दालाम मंग हडापी क्राइसिस ग्लोबल नामुन बरादा दी बारिस बेलाकांग दलाम पंगाम्बिलान कुपुतुसान दिया मनिकान कान पेंटिंग निया मंगुबा पिरामिडा हाक इस्तीमेवा इनी मंजादी प्लेटफॉर्म को मित्रा आन दलाम कॉन्टेक्स्ट इनी प्रधानमंत्री मंगुसुलकान पनियुसुनान बरसामा सपुलु उसुलान रिफॉर्मासी ताता कलोला ग्लोबल देंगन तुजुआन मंजादी कान निया सबागाय पेती जलान रिफॉर्मासी ब्रिक्स मंजेलांग कातेते बरीकुत निया तरकाइत ईसु द फार्मासी देवान का अमानन पावे वे प्रधानमंत्री मनेगास्कान बाहवा हरी फार्मासी देके पेवे वे तीदा दपात लागी दी तुंडा द निगोसियासी मंगेनाय हालिनी हारुस दिकाइत कान दंगान करांग का वक्तु यंग पास्ती सरता हासिल यंग जलास दिया मंगाता कान बाहवा हाल सरूपा जुगा बरलाकू बागी हाक स्वरा पोजिसी क एमपी का एमपीपी नान दान प्रायोरिटास का बाजीकान दान लंबागा का उंगान यंग हारुस दीसेसुआ इकान दंगान रियलिटास इकोनॉमी साथ इनी दिया मनियबुत कान बाबा नगर नगारा पंगेराक पर तंबुहन इकोनॉमी ग्लोबल जुगा हारुस ममाइन कान पेरान यंग परपोसियल दालाम मंबेंतुक ताता कलोला इकोनॉमी ग्लोबल सबलुमनिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मनियाम्बुत पारा पमिंपिन नगारा अंगोता ब्रिक्स साथ मरेका दिवादी भारत मंडपम उन्तुक मंगायदरी कातेते तरसबूत डिमिकियन तादी कमेंटार saudara saudara pendengar kita masih bersama dengan siaran Radio India dalam acara selanjutnya ikutilah lagu Rakyat Maithili dari daerah Bihar.

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को सफल और परिणामोन्मुखी बनाने के लिए ब्रिक्स नेताओं का आभार व्यक्त किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, 21 राज्यों में भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकारें 2029 से पहले समान नागरिक संहिता लागू करेंगी। गणेश चतुर्थी का त्योहार आज पूरे देश में श्रद्धा पूर्वक मनाया जा रहा है। आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। मुंबई में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में 2025-26 के राजभाषा पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। भारत ने ओमान तट पर व्यापारिक पोत पर हुए हमले की निंदा की। भारतीय चालक दल के 13 सदस्यों को बचाया गया। धीरज बोमा देवरा ने मेक्सिको में तीरंदाजी विश्व कप के फाइनल में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष रिकर्व तीरंदाज बनकर इतिहास रचा। और क्रिकेट में भारत ने श्रीलंका को 72 रन से हराकर रिकॉर्ड 8वीं बार महिला एशिया कप का खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स के सभी सदस्य देशों के नेताओं का दिल्ली में हुए शिखर सम्मेलन को सफल और परिणामोन्मुखी बनाने के लिए आभार व्यक्त किया है। 2 दिन के शिखर सम्मेलन के विशेष क्षणों को दर्शाने वाला एक वीडियो प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया गया है। वीडियो में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के माध्यम से भारत ने विश्व स्तर पर मित्रता, साझेदारी और सहयोग को आगे बढ़ाया है। श्री मोदी ने कहा कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा दृष्टिकोण और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
1: पिछले 2 दिनों की हमारी चर्चाओं ने हमारा विश्वास और मजबूत किया है कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं, सॉल्यूशंस का एक इकोसिस्टम है। हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा।
0: शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले नेताओं में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन और अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान शामिल थे। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम, वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हंग, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह असीसी, फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर और युगांडा की उपराष्ट्रपति जेसिका अलूपो सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी शिखर सम्मेलन में उपस्थित थे। भारत ने 12-13 सितंबर 2026 को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, जिसमें समूह के 11 सदस्य देशों और 10 भागीदार देशों के नेताओं सहित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी भाग लिया। श्री मोदी ने शिखर सम्मेलन के दौरान अंतिम 3 दिनों में राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ 15 द्विपक्षीय बैठकें भी की। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि 21 राज्यों में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकारें 2029 से पहले समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करेंगी। मुंबई में पत्रकारों से बातचीत में श्री शाह ने कहा कि कई राज्यों में यूसीसी लागू हो चुकी है और 2029 से पहले भाजपा एनडीए शासित सभी 21 राज्यों में इसे लागू कर दिया जाएगा।
2: ढेर सारे राज्यों में कॉमन सिविल कोड यूसीसी को हमने इंट्रोड्यूस किया है और मुझे विश्वास है कि भाजपा एनडीए शासित 21 राज्यों में हम 2029 के पहले यूसीसी को इंट्रोड्यूस करेंगे। भारतीय न्याय संहिता जो बनाई है, इसने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को भारतीय आधार देने का काम किया है और कई सारे राज्यों में सजा कराने का दर का एक ही साल में 30% वृद्धि हुआ है।
0: श्री शाह ने कहा कि 3 तलाक को समाप्त कर दिया गया है, जिससे मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार मिले हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा पर श्री शाह ने कहा कि अनुच्छेद 370 और 35A को बिना किसी विवाद के हटा दिया गया है।
2: राष्ट्रीय सुरक्षा में धारा 370 और 35A हटाना जो असंभव माना जाता था, रक्त की एक भी बूंद गिराए बगैर, एक भी गोली चलाए बगैर धारा 370 आज पास्ट बनकर खड़ी है और कश्मीर पूर्णतया भारत के साथ जुड़ा है।
0: श्री शाह ने कहा कि सरकार ने 5 दशकों से चले आ रहे नक्सलवाद को समाप्त कर दिया है और देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 14 से अधिक शांति समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक महीने के राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान की घोषणा की है। यह अभियान जन भागीदारी के माध्यम से वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के संकल्प को मजबूत करने के लिए 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा। मुंबई में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि यह अभियान भाजपा, एनडीए के सहयोगी दलों, स्वयंसेवी संगठनों और देशभर के नागरिकों द्वारा आयोजित

0: किया जाएगा। इस अभियान में सेवा ज्योति कलश यात्रा, वडनगर वाराणसी सेवा यात्रा, सेवा से मेरा योगदान, सेवा सेतु अभियान, सेवाचे रंग, राष्ट्र संगे और सेवा प्रथम नवाचार चुनौती शामिल है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। वर्ष 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के तौर पर अपनाया था। गृहमंत्री अमित शाह आज नवी मुंबई में हिंदी दिवस 2026 कार्यक्रम और 6वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
3: महाराष्ट्र के नवी मुंबई में गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा 2 दिवसीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन का उद्देश्य महाराष्ट्र की समृद्ध भाषाएं, सांस्कृतिक और साहित्य परंपरा के साथ हिंदी के जीवंत संबंधों को रेखांकित करना है। उद्घाटन सत्र में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वर्ष 2025-26 के लिए राजभाषा गौरव और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान करेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और वरिष्ठ अधिकारी सम्मेलन में शामिल होंगे। मुंबई से प्रार्थना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत MTL गाइया पर कल हुए हमले की कड़ी निंदा की है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि अब तक चालक दल के 13 भारतीय सदस्यों को बचा लिया गया है। एक भारतीय नागरिक की तलाश जारी है। दूतावास ने कहा कि जारी खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों को बचाने में सहयोग के लिए ओमान के अधिकारियों का आभार व्यक्त किया है। भारत ने तनाव को तत्काल कम करने और क्षेत्र में शांति बहाल करने के लिए बातचीत और कूटनीति का रास्ता अपनाने की सलाह दी है। ईरान और खाड़ी देशों के बीच आज ओमान में होने वाली बैठक स्थगित कर दी गई है। इसमें होर्मुज जलडमरु मध्य से होकर जहाजों की आवाजाही की व्यवस्था पर चर्चा की जानी थी। ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी ने कल देर शाम इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आज सलालाह में होने वाली बैठक को आम सहमति बनाने के क्रम में स्थगित किया गया है। ईरान की सरकारी मीडिया के अनुसार कुछ क्षेत्रीय देशों के अनुरोध पर ईरान और ओमान ने संयुक्त रूप से ये निर्णय लिया। यमन की सेना ने लाल सागर के तट पर ईरान समर्थित हौसी विद्रोहियों के ठिकाने पर हमले किए हैं, जबकि हौसियों ने यमन की सरकार का समर्थन कर रहे पड़ोसी देश सऊदी अरब को निशाना बनाया है। यमन की सरकार ने लाल सागर तट पर और अधिक सैनिक भेजने का फैसला किया है। पिछले सप्ताह हौसी विद्रोहियों ने महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर मोखा और बाब अल मंदेब जलडुमरु मध्य में एक द्वीप पर कब्जा कर लिया था। पूरे देश में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है, जो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। हमारी संवाददाता ने बताया कि महाराष्ट्र सरकार ने गणेशोत्सव को राज्य उत्सव का दर्जा दिया है।
4: गणेश चतुर्थी का त्यौहार आज पूरे महाराष्ट्र में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। घरों और मोहल्लों में भक्ति गीतों, आरती और गणपति बाप्पा मोरिया के जयघोष के बीच लोग गणपति बाप्पा का स्वागत कर रहे हैं। मुंबई में कई गणेश मंडल सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों का भी आयोजन कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे और बेस्ट ने विशेष गाड़ियों की व्यवस्था की है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: उत्तर प्रदेश में भी आज से गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज कजरी तीज मनाई जा रही है।
5: लखनऊ के झूलेलाल वाटिका पर भव्य गणेश उत्सव का शुभारंभ होगा। गोमती के किनारे आज से शुरू होकर 25 सितंबर तक चलने वाले इस गणेश उत्सव में 13,000 स्कूल

0: स्क्वायर फीट का वातानुकूलित वाटरप्रूफ पंडाल बनाया गया है, जहां भक्त बैठेंगे और गजानन की चिट्ठी लिखेंगे। उधर पूर्वी उत्तर प्रदेश में कजरी तीज पर्व आज मनाया जाएगा। इस दिन सुहागिन महिलाएं शिव पार्वती की पूजा करेंगी और निर्जला व्रत रखेंगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में बाल विकास, पोषण और प्रारंभिक प्रोत्साहन विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में यूनिसेफ इंडिया की विशेषज्ञ डॉक्टर ऋचा एस पांडे और स्वामी दयानंद अस्पताल के बाल रोग और नवजात शिशु विभाग के प्रमुख डॉक्टर सुरेंद्र सिंह बिष्ट शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता टेलीफोन नंबर 0112331-0481 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं चंद्रशेखर शर्मा।
2: भारतीय तीरंदाज धीरज बोम्मा देवरा विश्व कप फाइनल में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष रिकर्व खिलाड़ी बन गए हैं। मैक्सिको में कल उन्होंने जापान के नाकानिशी जूनिया को रोमांचक शूट ऑफ में हराया। क्रिकेट में भारत ने महिला एशिया कप 2026 जीत लिया है। भारत ने कल फाइनल में श्रीलंका को 72 रन से हराकर 8वीं बार एशिया कप अपने नाम किया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका को 184 रन का लक्ष्य दिया था। लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की टीम निर्धारित 20 ओवर में 111 रन ही बना सकी। भारत की ओर से शैफाली वर्मा ने 39 गेंदों में 68 रन बनाए और स्मृति मंधाना ने 39 गेंदों में 59 रन का योगदान दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय महिला टीम को एशिया कप जीतने पर बधाई दी है। वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 156 रन बनाए। जवाब में भारत ने 13 ओवर और 4 गेंद में 3 विकेट पर 157 रन बनाकर जीत हासिल की। भारत की ओर से अभिषेक शर्मा ने 32 गेंदों में 82 रन बनाए और अर्षदीप सिंह ने 3 विकेट लिए। अभिषेक शर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।
1: इसके अलावा जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव ने न्यूयॉर्क में अमेरिका के बेन शेल्टन को हराकर अमेरिकी ओपन पुरुष सिंगल्स का खिताब भी जीत लिया है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
3: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से छपे प्रमुख समाचार पत्रों ने भारत की मेजबानी में संपन्न हुए ब्रिक्स सम्मेलन को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक जागरण ने ब्रिक्स नेताओं का चित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है, जय हो दिल्ली, अब पेचिंग में मिलेंगे। सम्मेलन के समापन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान हिंदुस्तान में है। पत्र लिखता है, खनिजों को हथियार न बनाए। अमर उजाला की सुर्खी है, ब्रिक्स का अब साझा लक्ष्य सर्वजन हिताय। राजस्थान पत्रिका ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की रिपोर्ट लिमिटिंग ओवरशूट के हवाले से लिखा है, ग्लोबल वार्मिंग की पहली लड़ाई हारे, दशकों तक रहेगा ज्यादा गर्मी का दौर। लोकसत्य ने स्वदेश लौटने पर विचार कर रहे लोगों पर लिखा है, पश्चिमी सपनों पर वीजा की कैंची, भारत लौट रहा टैलेंट। अमरीका, यूके, कनाडा से शुरू हुआ रिवर्स ब्रेन ड्रेन। दैनिक भास्कर ने सोशल मीडिया अटेंशन पर लिखा है, डिजिटल दौर में शॉक कंटेंट का खेल जिंदगियां बर्बाद कर रहा। हिंदी दिवस पर आज कई समाचार पत्रों ने विशेष आलेख प्रकाशित किए हैं। हिंदुस्तान ने भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्तियां, निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल, निबिन निज भाषा ज्ञान के, मिटत न हिय को सूल, प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, देश की धड़कन है हिंदी।
1: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को सफल और परिणामोन्मुखी बनाने के लिए ब्रिक्स नेताओं का आभार व्यक्त किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, 21 राज्यों में भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकारें 2029 से पहले समान नागरिक संहिता लागू करेंगी। गणेश चतुर्थी का त्यौहार आज पूरे देश में श्रद्धापूर्वक मनाया जा रहा है। आज हिंदी दिवस भी मनाया जा रहा है। भारत ने ओमान तट पर व्यापारिक पोत पर हुए हमले की निंदा की। और क्रिकेट में भारत ने श्रीलंका को 72 रन से हराकर रिकॉर्ड 8वीं बार महिला एशिया कप का खिताब अपने नाम किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi thanks BRICS leaders for making Delhi summit productive and outcome-oriented. Union Home Minister Amit Shah says BJP-led NDA governments in 21 states will introduce uniform civil code before 2029. festival of Ganesh Chaturthi being celebrated across

0: लागू कर देंगी। आज पूरे मुल्क में गणेश चतुर्थी का त्यौहार पूरे जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। मुंबई कॉन्फ्रेंस के दौरान 2025-26 के राजभाषा अवार्ड्स पेश किए जाएंगे। भारत ने ओमान के साहिल से कुछ दूर तिजारती बहरी जहाज पर हमले की मजम्मत की है। भारतीय हमले के 13 अरकान को बचा लिया गया है। धीरज बोमा देवारा ने मर्दों की पहली रिकर्व तीरंदाजी में तारीख रकम की है। उन्होंने मैक्सिको में आलमी कप के फाइनल में सोने का तमगा हासिल किया है। और क्रिकेट में भारत ने श्रीलंका को 72 रन से हराकर खवातीन का रिकॉर्ड 8वां एशिया कप खिताब जीता है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली सरबराह मीटिंग को समरावर और नतीजा खेज बनाने पर सभी ब्रिक्स रुकन मुल्कों के रहनुमाओं का शुक्रिया अदा किया है। दो रोजा सरबराह मीटिंग के अहम लम्हों की झलकियों पर मुश्तमिल एक वीडियो वजीर आजम के सोशल मीडिया हैंडल्स पर पोस्ट किया गया है। इस वीडियो में वजीर आजम की सरबराह मीटिंग की तकरीर के एक हिस्से को दिखाया गया है, जहां उन्होंने कहा था कि ब्रिक्स के जरिए भारत ने दोस्ती, शराकतदारी और तमाम तर शोबों में तआवुन में पेशरफ्त की है।
1: पिछले दो दिनों की हमारी चर्चाओं ने हमारा विश्वास और मजबूत किया है कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं, सॉल्यूशंस का एक इकोसिस्टम है। हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा।
0: जिन रहनुमाओं ने इस सरबराह मीटिंग में शिरकत की, उनमें रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन, चीन के सदर शी जिनपिंग, ईरान के सदर मसूद पेजिशकियान, अबू धाबी के वली अहद शहजादे मोहम्मद बिन जायद अल नहयान शामिल हैं। मलेशिया के वजीर आजम अनवर इब्राहिम, वियतनाम के वजीर आजम ली मिन होंग, इंडोनेशिया के सदर प्राबोवो सुबियांतो, मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह असीसी, फिलीपींस के सदर फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर, युगांडा की नायब सदर जैसिका अलूपो और दीगर शख्सियतों ने भी इस सरबराह मीटिंग में शिरकत की। भारत ने 12 और 13 सितंबर को ब्रिक्स सरबराह मीटिंग की मेजबानी की और इसमें 11 रुकन मुल्कों और ग्रुप के 10 हिस्सेदार मुल्कों के रहनुमाओं ने शिरकत की। इसके अलावा कुछ बैन अलावामी तंजीमों ने भी शिरकत की। जनाब मोदी ने सरबराह मीटिंग से अलग पिछले तीन दिन के दौरान सरबराह ने ममलकत व हुकूमत के साथ 15 दो तरफा मीटिंग्स का भी इनेकाद किया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि 21 रियासतों में बीजेपी की क्यादत वाली एनडीए हुकूमतें 2029 से पहले यकसां सिविल कोड यूसीसी नाफिज करेंगी। मुंबई में नामा निगारों से बात करते हुए वजीर दाखिला ने कहा कि कई रियासतों में यूसीसी लागू कर दिया गया है और उन्हें पूरा एतमाद है कि इसे बीजेपी एनडीए के इक्तदार वाली 21 रियासतों में 2029 से पहले नाफिज कर दिया जाएगा।
2: ढेर सारे राज्यों में कॉमन सिविल कोड यूसीसी को हमने इंट्रोड्यूस किया है और मुझे विश्वास है कि भाजपा एनडीए शासित 21 राज्यों में हम 2029 के पहले यूसीसी को इंट्रोड्यूस करेंगे। भारतीय न्याय संहिता जो बनाई है, इसने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को भारतीय आधार देने का काम किया है और कई सारे राज्यों में सजा कराने का दर का एक ही साल में 30% वृद्धि हुआ है।
0: जनाब शाह ने कहा कि एक साथ तीन तलाक के मामले को खत्म करके मुस्लिम खवातीन को बराबरी के हुकूक फराहम कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने भारतीय न्याय संहिता के जरिए मुल्क के फौजदारी अदलिया निजाम को मजबूत बनाया है। उन्होंने दावा किया कि बहुत सी रियासतों में महज एक साल की मुद्दत के दौरान मुजरिमों को सजा दिए जाने की शरह में 30% इजाफा हुआ है। वजीर दाखिला ने कहा कि इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि इंसाफ 3 साल के अंदर अंदर फराहम किया जा सकता है, एक निजाम कायम किया जा रहा है। जनाब शाह ने कौमी सलामती के बारे में कहा कि दफा 370 और 35A को खून की एक बूंद बहाए बगैर या महज एक गोली दागे बगैर खत्म कर दिया गया। उन्होंने जोर देकर कहा कि अब कश्मीर भारत के साथ पूरी तरह मरबूत है। आज पूरे मुल्क में गणेश चतुर्थी का त्यौहार पूरे जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। यह दिन भगवान गणेश की पैदाइश के दिन के मौके पर मनाया जाता है, जो अकलमंदी, खुशहाली और खुशकिस्मती की अलामत हैं। ये 10 रोजा त्यौहार लोगों के अपने घरों में भगवान गणेश की मूर्तियां सजाने और उनकी पूजा करने से शुरू होता है, जिसका इख्तिताम गणेश विसर्जन की तकरीबात के साथ होता है, जब अलग अलग जगहों पर जलसों के दौरान इन मूर्तियों को दरियाओं, झीलों या समंदरों में नजरेआब किया जाता है। इस मौके पर दुआएं की जाती हैं, भजन गाए जाते हैं और गणपति बप्पा मौर्या के नारे लगाए जाते हैं। इस मौके पर महाराष्ट्र में शानदार तकरीबात मुनाकिद की जा रही हैं।

0: पूरे मुंबई में गणेश मंगल सकाफती और समाजी प्रोग्राम मुनाकिद कर रहे हैं। पूरे मुंबई में गणेश मंडल सकाफती और समाजी प्रोग्राम मुनाकिद कर रहे हैं, जिससे इस त्यौहार के जोश व खरोश में मजीद इजाफा होता है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज लाल बख्शा राजा का दौरा करेंगे। लोगों की बड़े पैमाने पर शिरकत के पेश नजर सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुणे में 10 रोजा गणेश उत्सव आज से शुरू हो रहा है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में इस त्यौहार को अवामी सतह पर मनाने की बुनियाद रखी थी। तभी से यहां गणेश उत्सव समाजी यकजहती और अवामी बेदारी की अलामत बन गया है। इस त्यौहार में 5 तरह के गणपति, कस्बा गणपति, तांबड़ी जोगेश्वरी, गुरुजी तलीम, तुलसीबाग और केसरीवाड़ा बड़ी तवज्जो का मरकज होते हैं। पुणे के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और पुलिस ने इस मौके पर लोगों के हुजूम की देखभाल, ट्रैफिक के बंदोबस्त, सफाई सुथराई और सिक्योरिटी के वसी इंतजाम किए हैं। इधर उत्तर प्रदेश में भी आज से गणेश उत्सव मनाया जाएगा। खवातीन कजरी तीज भी मनाएंगी। पेश है एक रिपोर्ट।
1: उत्तर प्रदेश में गणेश चतुर्थी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। रियासत में कई मकामात पर छोटे बड़े पिंडाल सजाए जा रहे हैं। गोमती नदी के किनारे लखनऊ के झूले लाल वाटिका में गणेश उत्सव बड़े धूमधाम के साथ शुरू होने वाला है। उत्सव का पिंडाल कोलकाता के कारीगरों ने तैयार किया है। इस दौरान मशरकी उत्तर प्रदेश में आज कजरी तीज त्यौहार भी मनाया जा रहा है। इस दिन शादीशुदा खवातीन भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा करती हैं। इस मौके पर श्रावस्ती जिले में विभूतिनाथ मंदिर में बड़ी तादाद में अकीदतमंद जल अभिषेक करेंगे। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
0: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने गणेश चतुर्थी के मौके पर मुबारकबाद पेश की है। अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि यह त्यौहार लोगों की जिंदगी में इल्म, पुरउम्मीदी, अमन, खुशी और खुशहाली लेकर आता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गणेश चतुर्थी के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम शेयर करते हुए जनाब मोदी ने दुआ की कि यह पवित्र त्यौहार हर एक की जिंदगी में नई तवनाई और नया जोश लाए और भगवान गणेश के आशीर्वाद से सभी की कोशिशें कामयाब हों और मुल्क मुसलसल तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ता रहे। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। आज पूरे मुल्क में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 1949 में आज ही के दिन आइनसाज असेंबली ने मुल्क की सरकारी जबान के तौर पर देवनागरी रस्मुलखत में लिखी हिंदी को मंजूरी दी थी। आज हिंदी दुनिया में वसी पैमाने पर बोली जाने वाली जबानों में शामिल है और 52 करोड़ से ज्यादा लोगों की पहली जबान है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज नवी मुंबई में हिंदी दिवस 2026 के प्रोग्राम और छठे ऑल इंडिया राजभाषा सम्मेलन में, जो सरकारी जबान से मुतालिक एक कॉन्फ्रेंस होती है, शिरकत करेंगे। तफसील हमारे नामानिगार से।
2: ये 2 रोजा ऑल इंडिया सरकारी जबान कॉन्फ्रेंस महाराष्ट्र के शहर नवी मुंबई में मुनाकिद की जा रही है। इस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम वजारत दाखिला का सरकारी जबान का महकमा कर रहा है। कॉन्फ्रेंस का मकसद हिंदी और महाराष्ट्र की मालामाल लसानी, सकाफती और अदबी रिवायात के दरमियान ताल्लुक को उजागर करना है। आज इफ्तिताही जलसे में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह 2025-26 के राजभाषा गौरव और राजभाषा कीर्ति अवार्ड पेश करेंगे। इस साल की कॉन्फ्रेंस की खास बात कौमी गीत वंदे मातरम पर मरकूज बातचीत होगी। महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस, नायब वज़ीरे आला एकनाथ शिंदे और सुनेत्र पवार, पार्लियामेंट के बहुत से अरकान, दानिश्वरान, माहिरीन अदब, माहिरीन तालीम और सीनियर अफसरान इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। मुंबई से प्रार्थना की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
0: लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने आज हिंदी दिवस के मौके पर शहरियों को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब बिरला ने कहा कि अदब और सहाफत से लेकर सिनेमा, टेलीविजन, तालीम और डिजिटल दुनिया तक हिंदी लाखों अवाम के इजहार का एक ताकतवर वसीला बनी हुई है। उन्होंने कहा कि हिंदी ने भारत के एतमाद, फख्र और आलमी दर्जे को शिनाख्त अता की है और ये शहरियों की जिम्मेदारी है कि वो हिंदी को नई नस्ल से वाबस्ता करें और इसमें नई टेक्नोलॉजीज और नए मौकों का इजाफा करें। भारत ने कल ओमान के साहिल से कुछ दूर तिजारती बहरी जहाज MT गाइया पर किए गए हमले की मजम्मत की है। ओमान में भारतीय सिफारतखाने ने एक बयान में कहा है कि अभी तक भारतीय अमले के 13 अरकान को बचाया गया है और एक लापता भारतीय शहरी की तलाश और बचाव की कोशिशें जारी हैं। सिफारतखाने ने बताया कि वो सूरत हाल पर करीबी नजर रखे हुए है और तलाश और बचाव के काम में ओमान के हुक्काम के साथ रबते में है। सिफारतखाने ने भारतीय बाशिंदों को बचाने में ओमान के हुक्काम की तरफ से मदद किए जाने पर उनका शुक्रिया भी अदा किया है। भारत ने खित्ते में

0: रिकर्व जुमरे में तमगा जीतने का 16 साल का इंतजार भी खत्म हो गया। जयंत तुलुकदार आखिरी भारतीय रिकर्व तीरंदाज थे जिन्होंने 2010 में एडिनबरा में कांसे का तमगा जीता था। खवातीन क्रिकेट में भारत ने कल रात दुबई में खेले गए खवातीन टी20 एशिया कप के फाइनल मैच में श्रीलंका को 72 रन से शिकस्त दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवर्स में 5 विकेट के नुकसान पर 183 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने 39 गेंदों पर 68 रन बनाकर नुमाया स्कोर किया, जबकि स्मृति मंदाना ने 39 गेंदों में 59 रन का स्कोर किया। श्रीलंका की टीम 184 रन का ताकुब करते हुए 20 ओवर्स में सिर्फ 111 रन ही बना सकी। शेफाली वर्मा को उनकी शानदार कारकर्दगी की वजह से मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय टीम की सभी अरकान को खवातीन की टी20 एशिया कप चैंपियनशिप 2026 जीतने पर मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सदर जमहूरिया ने कहा कि इन खिलाड़ियों ने पूरे टूर्नामेंट में एक टीम के तौर पर बेहतरीन कारकर्दगी पेश की और सभी मैच जीतकर मुल्क का सर फख्र से बुलंद किया। उन्होंने कहा कि ये खिलाड़ी मुल्क के नौजवानों के लिए एक अजीम जज्बे का वसीला हैं। मर्दों के क्रिकेट में भारत ने दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए टी20 बैन अल-अक़वामी मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से शिकस्त देकर 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की सबकत हासिल कर ली है। पहले गेंदबाजी करते हुए भारतीय टीम ने अफगानिस्तान को 8 विकेट पर 156 रन पर ऑल आउट कर दिया। अर्शदीप सिंह ने 19 रन देकर 3 विकेट हासिल किए, जबकि अफगानिस्तान की तरफ से अजमतुल्ला उमरजई और मोहम्मद नबी ने मिलकर 83 रन बनाए। भारत ने हदफ का ताकुब करते हुए 13 ओवर्स और 4 गेंद में 3 विकेट के नुकसान पर 157 रन बनाए। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं असदुल्ला।
1: शुक्रिया कौनन। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब और प्रताप समेत आज के सभी अखबारों ने भारत की सरबराही में ब्रिक्स इजलास के इख्तिताम पजीर होने की खबर को सफे अव्वल पर शाये करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस बयान को नुमाया किया है कि ब्रिक्स हमारे मुश्तरका मामलात के हल का एक इको निजाम है और दुनिया हमसे ठोस नतीजे की तवक्को रखती है। रोजनामा प्रताप ने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के इस बयान को नुमाया किया है कि ब्रिक्स की बाहमी तिजारत 1.2 ट्रिलियन तक पहुंच गई है। इसी अखबार की एक और खबर है कि वजीर दाखिला अमित शाह ने भारत की जवाहरात और जेवरात की सनत के 52वें एवार्ड तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि लैब में तैयार किए गए हीरे और उसकी मैन्युफैक्चरिंग भारत के हाथों में रहनी चाहिए।
0: आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली सरबराह मीटिंग को समरावर और नतीजा खेज बनाने पर ब्रिक्स रहनुमाओं का शुक्रिया अदा किया है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि 21 रियासतों में बीजेपी की क्यादत वाली एनडीए हुकूमतें 2029 से पहले यकसां सिविल कोड लागू कर देंगी। आज पूरे मुल्क में गणेश चतुर्थी का त्यौहार पूरे जोश व खरोश से मनाया जा रहा है। आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। मुंबई कॉन्फ्रेंस के दौरान 2025-26 के राजभाषा अवार्ड पेश किए जाएंगे। भारत ने ओमान के साहिल से कुछ दूर तिजारती बहरी जहाज पर हमले की मजम्मत की है। भारतीय हमले के 13 अरकान को बचा लिया गया है। धीरज बोम देवारा ने मर्दों की पहली रिकर्व तीरंदाजी में तारीख रकम की है। उन्होंने मैक्सिको में आलमी कप के फाइनल में सोने का तमगा हासिल किया है। और क्रिकेट में भारत ने श्रीलंका को 72 रन से हराकर खवातीन का रिकॉर्ड 8वां एशिया कप जीता है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं आइए सुनते हैं कार्यक्रम स्वर गंगा। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे पंडित प्रशांत मलिक और पंडित निशांत मलिक द्वारा गाया राग ललित।
3: नमस्कार, मैं प्रशांत मलिक।
4: मैं निशांत मलिक।
3: आज की सुबह की सभा में हम दोनों भाई ध्रुपद गायन प्रस्तुत करेंगे राग ललित, जो कि एक सुबह के प्रहर का राग है। इसमें ध्रुपद परंपरा के अनुसार 4 चरण की आलाप, तत्पश्चात एक चौताल की रचना प्रस्तुत करेंगे, जिसके बोल हैं देखो सखी वृंदावन में मोहन रास रचायो। हमारे साथ पखावज पर संगति दे रहे हैं पंडित अनिल चौधरी जी और तानपुरे पे मौली गर्ग। धन्यवाद।

ما

لتؤمنوا بالله ورسوله وتعلموا

يد الله فوق أيديهم.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को सफल बनाने के लिए सभी सदस्य देशों का आभार व्यक्त किया है। शिखर सम्मेलन के विशेष क्षणों को दर्शाने वाला एक वीडियो प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया गया है। वीडियो में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के माध्यम से भारत ने विश्व स्तर पर मित्रता, साझेदारी और सहयोग को आगे बढ़ाया है। श्री मोदी ने कहा कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा दृष्टिकोण और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
1: पिछले दो दिनों की हमारी चर्चाओं ने हमारा विश्वास और मजबूत किया है कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं, सॉल्यूशंस का एक इकोसिस्टम है। हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा।
0: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 11 सदस्य देशों और 10 भागीदार देशों के नेताओं के साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी भाग लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि सम्मेलन की सफलता ने वैश्विक मंच पर भारत की मजबूत छाप छोड़ी है। श्री सिंह ने कहा कि ऐतिहासिक नई दिल्ली घोषणा पत्र भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव का प्रमाण है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने तिरुकुरल के प्रचार प्रसार के लिए प्रधानमंत्री मोदी की सराहना की है। उन्होंने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को तिरुकुरल के रूसी अनुवाद की प्रति भेंट करने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद भी दिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एधनॉम घेब्रियासिस ने कहा है कि इस वर्ष ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय सीधे तौर पर वैश्विक स्वास्थ्य से जुड़ा था। उन्होंने देशों से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा निगरानी, चेतावनी प्रणाली और स्थानीय उत्पादन को मजबूत करने का आग्रह किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि 21 राज्यों में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकारें 2029 से पहले समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करेंगी। मुंबई में श्री शाह ने कहा कि कई राज्यों में यूसीसी लागू हो चुकी है और 2029 से पहले भाजपा एनडीए शासित सभी 21 राज्यों में इसे लागू कर दिया जाएगा। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के तौर पर अपनाया था। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत में कई भाषाओं का होना देश की सबसे बड़ी ताकत है। हिंदी दिवस पर एक वीडियो संदेश साझा करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदी भाषा किसी दूसरी भाषा की प्रतिद्वंद्वी नहीं, बल्कि राष्ट्रीय एकता को जोड़ने वाली

0: महत्वपूर्ण कड़ी है।
1: भाषा किसी भी समाज की स्मृति होती है, उसका आत्मबोध होती है। हिंदी ने इस विविधता के बीच संवाद, संपर्क और समन्वय की भाषा के रूप में देश के विभिन्न वर्गों और समुदायों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी का विकास भी तभी सार्थक है जब सभी भारतीय भाषाओं के सम्मान, संरक्षण और संवर्धन के साथ आगे बढ़े।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हिंदी दिवस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि भारत की संस्कृति, सभ्यता और जीवन मूल्यों की सशक्त अभिव्यक्ति है। देश भर में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है जो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने कहा है कि उनका देश भारत के साथ संबंधों को द्विपक्षीय बातचीत के जरिए आगे बढ़ाना चाहता है। ढाका में उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को भारत के साथ आपसी हितों के आधार पर नए सिरे से काम करना चाहिए। भारत बांग्लादेश सीमा से जुड़े हाल के मामलों पर श्री कबीर ने कहा कि ढाका अंतर्राष्ट्रीय कानून, सीमा संबंधी नियमों और द्विपक्षीय समझौतों के तहत कूटनीतिक बातचीत से मुद्दों का समाधान करेगा। भारत ने T20 महिला एशिया कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में कल भारतीय टीम ने श्रीलंका को 72 रन से हराकर 8वीं बार एशिया कप अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Hindi Divas is being celebrated across the country today. It was on this day in 1949 that the Constituent Assembly adopted Hindi, written in Devanagari script, as the official language of the country. Today, Hindi is one of the widely spoken languages in the world and the first language of more than 52 crore people. Union Home Minister Amit Shah will attend the Hindi Divas 2026 program and the 6th All India Rajbhasha Sammelan official language conference in Navi Mumbai today. Sharing a video message on Hindi Divas today, he said that Hindi language is not the competitive language of any other language, but an important connecting thread of national unity.
1: भाषा किसी भी समाज की स्मृति होती है, उसका आत्मबोध होती है। हिंदी ने इस विविधता के बीच संवाद, संपर्क और समन्वय की भाषा के रूप में देश के विभिन्न वर्गों और समुदायों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी का विकास भी तभी सार्थक है जब सभी भारतीय भाषाओं के सम्मान, संरक्षण और संवर्धन के साथ आगे बढ़े।
2: Home Minister Amit Shah has said that BJP-led NDA governments in 21 states will introduce the Uniform Civil Code, UCC, before 2029. Speaking to reporters in Mumbai, the Home Minister said UCC has been introduced in several states and he is confident that it will be introduced in the 21 BJP-NDA-ruled states before 2029. Mr. Shah said triple talaq has been abolished, giving Muslim women equal rights. He said the government has strengthened the country's criminal justice system through the Bharatiya Nyaya Sanhita and claimed that several states have recorded a 30% increase in the conviction rate in a single year. The Home Minister also said a system is being established to ensure justice can be delivered within 3 years. Prime Minister Narendra Modi has expressed gratitude to the leaders of all the BRICS member countries for making the Delhi summit of the grouping productive and outcome-oriented. A video reflecting key moments of the two-day summit was posted on the social media handles of the Prime Minister. In the video, a part of the Prime Minister's summit speech was shown, where he said, through BRICS, India has advanced friendship, partnership and cooperation all across. India hosted the BRICS summit on September 12th and 13th, and it was attended by the leaders of the 11 member countries and 10 partner countries of the grouping, besides some international organizations. Mr. Modi also held 15 sit-down bilateral meetings with heads of state or heads of government in the last 3 days on the sidelines of the summit. Defense Minister Rajnath Singh has congratulated Prime Minister Narendra Modi for the success of the BRICS Summit 2026 in New Delhi, saying its success left an indelible mark

0: घर आंगन।
1: घर आंगन के आज की खास प्रस्तुति में आप सबका स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त मंजुला। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। और अभी आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। साथ ही साथ आप हमें सुन सकते हैं इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़ पर। और सबसे पहले आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। गणपति बप्पा आपके जीवन में सुख समृद्धि और नई उम्मीदें लेकर आए और हर विघ्न दूर करें। आज का दिन कई खूबसूरत रंगों से सजा है गणेश चतुर्थी। साथ ही हम बात करेंगे हिंदी दिवस की, हरतालिका तीज की, परंपराओं और खूबसूरत रंगों की, स्वाद की दुनिया और गीत संगीत तो होंगे ही जो इस खुशनुमा माहौल को और भी खास बना देंगे। तो इस खास दिन के खास सफर में बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए घर आंगन और आज के दिन को सेलिब्रेट कीजिए।

अभी हम सुन रहे थे किशोर कुमार और आशा भोसले को फिल्म इलाका से। और दोस्तों, गणेश चतुर्थी भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है। आज घर घर में बप्पा का स्वागत हो रहा है। कहीं ढोल ताशों की गूंज है, कहीं फूलों और रोशनी से सजा घर है, तो कहीं सुबह से ही रसोई में बन रहे हैं बप्पा के सबसे पसंदीदा मोदक। और आज का दिन पूजा का सिर्फ त्योहार नहीं है, ये हमारी संस्कृति, हमारी कला और साथ मिलकर उत्सव मनाने की खूबसूरत परंपरा है। खासकर महाराष्ट्र में आज का दिन, जहां बप्पा के साथ संगीत, ढोल ताशे, सजावट और सामूहिक उत्सव की रौनक देखने को मिलती है। गणेश जी को बुद्धि, विवेक, समृद्धि और शुभारंभ का देवता माना जाता है, यानी नए काम से पहले उन्हें स्मरण किया जाता है। और बप्पा के रूप में भी कितने सुंदर संदेश छिपे हैं। जरा गणपति के प्रतिमा पर गौर कीजिए, बड़ी बड़ी आंखें, बड़े कान, छोटी सी आंखों में एकाग्रता और बड़े कानों में जैसे कोई संदेश। कम बोलिए, ज्यादा सुनिए, सोच समझकर निर्णय लीजिए। गणेश जी का वाहन मूषक भी अपने आप में एक दिलचस्प प्रतीक माना जाता है। इतना बड़ा व्यक्तित्व और वाहन इतना छोटा, मानो संदेश ये हो कि बुद्धि और विनम्रता के सामने आकार मायने नहीं रखता, तो हमें अनुकूलन की याद दिलाती है। कभी मजबूत, कभी बेहद कोमल, शायद जिंदगी भी ऐसी ही है। हर परिस्थिति में एक जैसा व्यवहार नहीं, जहां जरूरत हो वहां शक्ति, जहां जरूरत हो वहां पे थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाया जाए। इस बार बप्पा का स्वागत करते हुए प्रकृति का भी ख्याल रखें दोस्तों। मिट्टी की प्रतिमा, प्राकृतिक रंग और पर्यावरण अनुकूल सजावट और विसर्जन को अपनाएं। आखिर बप्पा से हमें सुख, शांति और प्रकृति की रक्षा की प्रार्थना करते हैं, तो हमारी आस्था से प्रकृति को नुकसान क्यों पहुंचे? तो इस गणेश चतुर्थी बप्पा आपके घर खुशियां लेकर आए, आपके जीवन में हर विघ्न दूर करें और हर नई शुरुआत को शुभ बनाएं। आपके घर में भक्ति की रोशनी रहे, रिश्तों में मिठास रहे और मन में विश्वास बना रहे।

अभी हम सुन रहे थे सुरेश वाडेकर को फिल्म कालचक्र से, और हरितालिका तीज की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। श्रृंगार की चमक, मेहंदी की खुशबू, लोकगीतों की मिठास और शिव पार्वती के प्रेम में आस्था। हरितालिका तीज भारतीय संस्कृति का एक ऐसा पर्व है जिसमें भक्ति के साथ साथ प्रेम, संकल्प और नारी के आत्मबल की भी खूबसूरत झलक दिखाई देती है। तीज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। मान्यता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी इसी तपस्या और अटूट संकल्प की स्मृति में हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घायु, स्वास्थ्य और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के लिए व्रत रखती हैं। और आज का दिन सिर्फ व्रत और पूजा का दिन नहीं है दोस्तों, बल्कि हमारी लोक संस्कृति उत्सव भी है। 16 श्रृंगार, हाथों में रची मेहंदी, हरे लाल रंग के परिधान, तीज के लोकगीत और सखियों के साथ मिलकर उत्सव मनाने की परंपरा इस पर्व को और भी खास बना देती है। अब जरा अपने घर की तीज याद कीजिए। किसी के घर में आज मेहंदी लग रही होगी, किसी कहीं सास अपनी बहू को तीज का सामान दे रही होगी, कहीं सहेलियां मिलकर लोकगीत गा रही होंगी और कहीं दादी नानी पुरानी तीज की कहानियां सुना रही होंगी। और अलग अलग राज्यों में इसे मनाने के अपने अपने खूबसूरत तरीके हैं। खासकर उत्तर भारत में तीज के लोकगीत, झूले, श्रृंगार और सामूहिक उत्सव इसकी पहचान बन चुके हैं। और शायद इस पर्व की सबसे खूबसूरत बात यही है कि हर तालिका

तीज हमें माता पार्वती के उस संकल्प की याद दिलाती है कि अपने जीवन के फैसले में अपनी इच्छा, विश्वास और आत्मबल का उतना ही महत्व है। तो आइए आज के इस पावन अवसर पर भगवान शिव और माता पार्वती से सभी के जीवन में प्रेम, विश्वास, सुख और सौभाग्य की कामना करें। हरतालिका तीज के इस पावन पर्व पर आपको और आपके परिवार को ढेरों ढेरों शुभकामनाएं।

अभी हम सुन रहे थे आशा भोसले को, फिल्म थी बलमा। और आज 14 सितंबर है, यानी राष्ट्रीय हिंदी दिवस। आप सभी को राष्ट्रीय हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों, हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं है, हमारे भावों की आवाज़ है। वो भाषा जिसमें माँ की डांट भी अपनापन लगती है, दोस्तों की हंसी और भी खुलकर सुनाई देती है, और दिल की बात कहने के लिए अक्सर किसी शब्द कोश की जरूरत नहीं पड़ती। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को देवनागरी लिपि में संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। इसी ऐतिहासिक दिन की याद में हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। लेकिन हिंदी की खूबसूरती सिर्फ इसके इतिहास में नहीं है, इसकी विविधता में भी है। हिंदी अपने साथ देश के अलग अलग इलाके, शब्द, बोलियां, मुहावरे और संस्कृतियां लेकर चलती हैं। इसमें संस्कृत की गंभीरता है, लोक भाषाओं की मिठास है, और बदलते समय के साथ नए शब्दों को अपनाने की सहजता भी। और शायद यही किसी भी जीवंत भाषा की पहचान है, वो समय के साथ बदलती है लेकिन अपनी आत्मा नहीं खोती। आज हिंदी दिवस पर सवाल सिर्फ इतना नहीं कि हम हिंदी कितनी बोलते हैं, बल्कि ये भी है कि हम हिंदी को कितनी सहजता से स्वीकार करते हैं। क्योंकि अपनी भाषा से प्रेम करने का मतलब दूसरी भाषा से दूरी बनाना नहीं है दोस्तों। जितनी भाषाएं हम सीखें उतनी ही हमारी दुनिया बड़ी होती है। लेकिन अपनी मातृभाषा या अपनी सहज भाषा में सोचने और महसूस करने का अधिकार अपनी जगह बेहद खास है। तो आज हिंदी दिवस पर हिंदी को सिर्फ शुभकामनाओं तक सीमित ना रखें, इसे बोलिए, पढ़िए, लिखिए और सबसे ज़रूरी, इसे पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनाइए। क्योंकि भाषा सिर्फ शब्दों का माध्यम नहीं होती, भाषा हमारी स्मृतियां संभालती है, हमारी संस्कृति को आगे ले जाती है और आने वाली पीढ़ियों तक हमारी पहचान पहुंचाती है।

अभी हम सुन रहे थे अलका याग्निक को, फिल्म थी जख्म। और दोस्तों, एशिया कप फिर से भारत के नाम। टीम इंडिया ने श्रीलंका को हराकर महिला एशिया कप 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया है, वो भी रिकॉर्ड 8वीं बार। मैदान पर शुरू से ही भारतीय टीम का इरादा सिर्फ खेलने का नहीं था, जीतने का था। हर खिलाड़ी अपनी भूमिका निभाई, दबाव में हर पल को आत्मविश्वास में बदला, और यही है टीम इंडिया की असली ताकत। एक खिलाड़ी नहीं, पूरी टीम मिलकर जीत की कहानी लिखती है। तो आज सिर्फ इस ट्रॉफी के लिए नहीं, उन बेटियों के लिए भी जो मैदान पर उतर कर नई पीढ़ी से कह रही है, सपने बड़े रखिए, मेहनत पूरी कीजिए, क्योंकि जब हौसला बुलंद हो तो जीत सिर्फ मंजिल नहीं अपनी पहचान बन जाती है। टीम इंडिया, बहुत बहुत बधाई आपको। यही जज्बा, यही जुनून और यही जीत का सिलसिला यूं ही चलता रहे।

साहित्य को अपने विशिष्ट भाषा और जीवंत पात्रों से समृद्ध किया। मनु भंडारी का नाम हिंदी कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपका बंटी, महाभोज और एक इंच मुस्कान जैसी रचनाओं में उन्होंने परिवार, रिश्तों, राजनीति और सामाजिक बदलाव को बेहद मानवीय दृष्टि से प्रस्तुत किया। शिवानी यानी गौरा पंत ने अपनी सहज और प्रभावशाली भाषा में भारतीय परिवार, समाज और स्त्री जीवन की अनेक परतों को सामने रखा। कृष्णकली, 14 फेरे और भैरवी उनकी चर्चित रचनाएं हैं और इस सूची में मृदुला गर्ग का नाम भी बहुत जरूरी है। चितकोबरा, कठगुलाब और अनित्य जैसी रचनाओं के माध्यम से उन्होंने बदलते सामाजिक परिवेश, स्त्री जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसे विषयों को साहित्य में जगह दी। तो इन सभी लेखकाओं की लेखन शैली अलग थी, उनके अनुभव अलग थे और उनके विषय भी अलग थे, लेकिन एक बात समान थी दोस्तों कि इनके कलम ने अपने समय को दर्ज किया और पाठकों को समाज को नए नजरिए से देखने का अवसर दिया।

अभी हम सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर को फिल्म तीन देवियां से। और आज है विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी के स्वागत का दिन और गणपति बप्पा को मोदक प्रिय है, तो आज बात हो जाए एक ऐसे मोदक की जो टेस्टी भी और हेल्दी भी है। तो कहते हैं त्योहारों की मिठास सिर्फ स्वाद में नहीं, उसमें छिपी यादों और परंपराओं में होती है। लेकिन आज की रसोई में हम उसी परंपरा को थोड़ा सा नया ट्विस्ट दे सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं हेल्दी ओट्स नारियल मोदक। इसके लिए चाहिए ओट्स, ताज़ा नारियल, थोड़ा सा गुड़, मुट्ठी भर मेवे और इलायची। चाहिए तो आप इसमें थोड़ा सा रागी का आटा भी मिला सकते हैं, जिसमें स्वाद के साथ साथ फाइबर भी बढ़ेगा। तो सबसे पहले ओट्स को हल्का सा भूनकर पीस लीजिए। अब एक पैन में थोड़ा सा नारियल और गुड़ डालकर धीमी आंच पर पकाइए। इसमें कटे हुए बादाम, काजू और इलायची भी डालिए। ये तैयार हो गया मोदक का जो फिलिंग है। अब ओट्स और थोड़ा सा रागी लेकर उसमें गर्म पानी की मदद से नर्म आटा गूंथिए। इसमें छोटी छोटी लोइयां बनाकर हथेली पर फैलाइए। बीच में नारियल गुड़ की फिलिंग रखिए और मोदक को एक आकार दीजिए। अगर आपके पास मोदक का सांचा है तो काम और भी आसान। इन मोदकों को भाप में पकाइए लगभग 10 से 12 मिनट तक। बस तैयार है हमारे सॉफ्ट, खुशबूदार, स्वादिष्ट हेल्दी मोदक। और एक छोटी सी बात, हेल्दी का मतलब ये नहीं कि त्योहारों में मिठास ही खत्म कर दें। मात्रा का ध्यान रखें, सामग्री थोड़ी सी समझदारी से चुनें और परंपरा का स्वाद जरूर बनाए रखें।

अभी हम सुन रहे थे आशा भोसले और किशोर कुमार को फिल्म सीता गीता से। और त्योहारों का मौसम आते ही बाजारों में रंग बढ़ जाते हैं, साड़ियों की चमक, कुर्तों के रंग, गहनों की खनक और घर सजाने की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। लेकिन इस बार त्योहारों की खरीदारी में एक छोटा सा बदलाव किया जा सकता है। खरीदारी हो खूबसूरत भी, समझदारी भरी भी और पर्यावरण के लिए थोड़ी बेहतर भी। तो सबसे पहले बात कपड़ों की। हर त्योहार पर नया पहनना जरूरी नहीं है। अपनी अलमारी में रखी साड़ी को नया ब्लाउज देकर, किसी कुर्ते को नए दुपट्टे के साथ या माँ की साड़ी को कंटेम्प्रेरी अंदाज में पहनकर आप बिल्कुल नया फेस्टिव लुक बना सकते हैं। और अगर खरीदारी करनी ही है तो हथकरघा, खादी, कॉटन, चंदेरी, महेश्वरी या दूसरे पारंपरिक भारतीय वस्त्रों को चुनना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इससे हमारा ट्रेडिशन, जो ट्रेडिशनल टेक्सटाइल है, वो भी आगे बढ़ता है, कपड़ों में एक अलग पहचान भी आती है। अब बात बजट की। त्योहारों की खुशी शॉपिंग बैग्स की संख्या से नहीं, उन चीजों से तय होती है जिन्हें हम सच में इस्तेमाल करेंगे। इसलिए खरीदारी की एक छोटी सी सूची बना लें। पहले ही पसंद आया तो खरीद लिया की जगह क्या मुझे इसकी सच में जरूरत है वाला सवाल काफी पैसे बचा सकता है। तो इस फेस्टिव सीजन एक खूबसूरत कोशिश क्यों ना करें, कम खरीदें, सोच समझ कर खरीदें, भारतीय कला और कारीगर को चुनें और ऐसी चीजें घर लाएं जिनकी खूबसूरती त्योहार खत्म होने के बाद भी बनी रहे। क्योंकि असली फेस्टिव शॉपिंग वही है जिसमें खुशी घर तक आए लेकिन उसका बोझ हमारी जेब और पर्यावरण पर ना पड़े। खुशियां खरीदने के लिए बड़ी कीमत नहीं चाहिए, बस पसंद में थोड़ी समझदारी और दिल में थोड़ी सादगी चाहिए।

अभी हम सुन रहे हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी को फिल्म है सुहाना सफर। तो इन्हीं खूबसूरत रंगों और शुभकामनाओं के साथ आज का सफर यहीं तक। हरतालिका तीज आपके जीवन में प्रेम, सौभाग्य और खुशियां लेकर आए। बप्पा आपके घर आंगन में सुख, शांति और समृद्धि भरे। इसी के साथ दीजिए मंजुला को इजाजत। नमस्कार।

आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा। आपका घर आंगन। घर आंगन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को सफल बनाने के लिए सभी सदस्य देशों का आभार व्यक्त किया है। शिखर सम्मेलन के विशेष क्षणों को दर्शाने वाला एक वीडियो प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया गया है। वीडियो में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के माध्यम से भारत ने विश्व स्तर पर मित्रता, साझेदारी और सहयोग को आगे बढ़ाया है। श्री मोदी ने कहा कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा दृष्टिकोण और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
1: पिछले दो दिनों की हमारी चर्चाओं ने हमारा विश्वास और मजबूत किया है कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं, सॉल्यूशंस का एक इकोसिस्टम है। हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा।
0: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 11 सदस्य देशों और 10 भागीदार देशों के नेताओं के साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी भाग लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि सम्मेलन की सफलता ने वैश्विक मंच पर भारत की मजबूत छाप छोड़ी है। श्री सिंह ने कहा कि ऐतिहासिक नई दिल्ली घोषणा पत्र भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव का प्रमाण है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनॉम घेब्रेसस ने कहा है कि इस वर्ष ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय सीधे तौर पर वैश्विक स्वास्थ्य से जुड़ा था। उन्होंने देशों से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा निगरानी, चेतावनी प्रणाली और स्थानीय उत्पादन को मजबूत करने का आग्रह किया। विदेश मंत्रालय ने 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन में सहयोग के लिए केंद्र सरकार के सभी विभागों और एजेंसियों का आभार व्यक्त किया है। मंत्रालय ने उन सभी राज्य सरकारों का भी धन्यवाद किया जिन्होंने ब्रिक्स की विभिन्न बैठकों की मेजबानी की। उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन का आयोजन जटिल कार्य था जिसके लिए सरकार और देश के सभी स्तरों पर समन्वित प्रयास जरूरी थे। ये सम्मेलन कल नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। सरकार ने कहा है कि वर्ष 2020 के बाद से 9 राज्य में 147 कोयला खंडों की नीलामी की गई है। कोयला मंत्रालय ने बताया है कि इससे लगभग 47,500 करोड़ रुपए का राजस्व और 4,90,000 नौकरियां सृजित होने का अनुमान है। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले वित्त वर्ष में आवंटित वाणिज्यिक खदानों से लगभग 3,090 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था। देशभर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखे हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के तौर पर अपनाया था। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत में कई भाषाओं का होना देश की सबसे बड़ी ताकत है। हिंदी दिवस पर एक वीडियो संदेश साझा करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदी भाषा किसी दूसरी भाषा की प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि राष्ट्रीय एकता को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है।
2: भाषा किसी भी समाज की स्मृति होती है, उसका आत्मबोध होती है। हिंदी ने इस विविधता के बीच संवाद, संपर्क और समन्वय की भाषा के रूप में देश के विभिन्न वर्गों और समुदायों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी का विकास भी तभी सार्थक है जब सभी भारतीय

0: conditions are expected over Arunachal Pradesh, Assam and Meghalaya during the next 2 days. State Minister for Foreign Affairs Humayun Kabir has said Bangladesh wants to move towards a new relationship with India through bilateral discussions rather than multilateral forums. Speaking to reporters at the Ministry of Foreign Affairs in Dhaka, Mr. Kabir said Bangladesh needs to move beyond what he described as an excessive preoccupation with India and deal with New Delhi on the basis of mutual interests. World Health Organization Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus has called for stronger health cooperation, innovation, resilience and sustainable financing. In a social media post, Dr. Tedros said the four themes of the BRICS Leaders Summit are directly relevant to global health. In tennis, Germany's Alexander Zverev has won the men's singles title of the US Open, beating American Ben Shelton in New York last night. This marks Alexander Zverev's second major title of 2026 following his French Open victory in June. And with that, we end this news bulletin.
1: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्त चैनल है. मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर. वक्त हुआ है स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त दोपहर के 1:10 और 18 सेकंड और ये वक्त है आपके उस खूबसूरत से प्रोग्राम का जिसका रहता है आपको हर रोज इंतजार, प्रोग्राम एक ही फिल्म से. प्रोग्राम शुरू करूँ उससे पहले सुनते हैं ये संदेश.
2: हेलो
3: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ.
2: फिर से
3: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले. आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे.
4: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे.
2: सर इतने कहाँ से?
4: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
3: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में.
2: 2 लाख
5: क्या हुआ पापा?
2: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं.
3: अरे
2: काट दिया.
5: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है.
2: फ्रॉड?
5: पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें. उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें. अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
2: तो पैसे गवाओगे.
6: आरबीआई कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए.
1: प्रोग्राम एक ही फिल्म लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे और आज मैं आपको लिए चलूंगी 1967 के इस दौर में जब बॉलीवुड में सस्पेंस और मर्डर मिस्ट्री का एक नया दौर शुरू हो रहा था. आज हम बात करेंगे निर्देशक सूरज प्रकाश की एक सुपरहिट सस्पेंस से भरी फिल्म, थ्रिलर वाली फिल्म जिसमें एक ऐसा ड्रामा था जो लास्ट तक एंड तक फिल्म के आपको बांधे रखता है. एक बेहतरीन मर्डर मिस्ट्री जिसने दर्शकों को आखिरी सीन तक इस तरीके से उत्सुकता बनाए रखा कि वो एक पल के लिए भी उठने का नाम नहीं लिए. बहुत खूबसूरत सी इसमें कास्ट थी, शशि कपूर, शर्मिला टैगोर. तो आप अंदाज़ा लगा ही रहे होंगे कि आज हम आपके लिए कौन सी फिल्म लेकर आए हैं. और अब अगर आप अंदाज़ा लगा रहे हैं तो फिर क्या करना है आपको, अपने जवाब मेल के जरिए पहुंचाना है हम तक. और मेल आईडी है ip.radio.delhi@gmail.com. ये वो रास्ता है जिसके जरिए आप मेरे इस प्रोग्राम के हम सफर बन सकते हैं. तो फिलहाल सुनते हैं एक खूबसूरत सा गीत और उसके बाद आपको बताएंगे कि आज पिटारे में कौन सी फिल्म छुपी हुई है जो कि 1967 में रिलीज हुई थी.

और आप सबका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने फिल्म का सही नाम लिखकर हम तक पहुंचाया है। ढेर सारे संदेश आपके सही जवाब के साथ हम तक पहुंच गए हैं और आप हमारे हमसफर भी बन गए हैं, इसके लिए भी हम आपको शुक्रिया कहते हैं जी। तो आज हम आपके लिए चुनकर लेकर आए हैं 1967 की फिल्म आमने सामने, एक ऐसी फिल्म जिसमें सच और झूठ, भरोसा और शक, प्यार और रहस्य सब आमने सामने खड़े दिखाई देते हैं। इस फिल्म

का निर्देशन किया था सूरज प्रकाश ने और निर्माता भी सूरज प्रकाश ही थे। मुख्य कलाकार में शशि कपूर, शर्मिला टैगोर, प्रेम चोपड़ा, मदन पुरी, राजेंद्र नाथ, कमल कपूर, करण दीवान और शमी जी नजर आए थे। संगीत जो आप सुन रहे हैं, इतना खूबसूरत अंदाजा आपने लगा ही लिया होगा, ये संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने और जो गीत हैं उसके बोल लिखे थे आनंद बख्शी साहब ने। 2 घंटे 43 मिनट की अवधि वाली ये सुपरहिट फिल्म जिसने एक ऐसे कहानी को दर्शकों के सामने पेश किया, ऐसी कहानी से दर्शकों को बांधे रखा जिसे आज भी लोग याद करते हैं। इसी फिल्म का एक और खूबसूरत सा गीत आइए सुनते हैं।

लता और रफी साहब की आवाज में ये सुपरहिट सॉन्ग फिल्म आमने सामने। कहानी का केंद्र है दीपक वर्मा, जिसका किरदार निभाया है शशि कपूर ने। दीपक पर अपनी अमीर पत्नी की हत्या का आरोप लगता है। अदालत में मुकदमा चलता है, लेकिन पर्याप्त सबूत ना मिलने के कारण वो बरी हो जाता है। इसके बाद दीपक अपनी पुरानी पहचान से दूर होकर गोपाल मित्तल के नाम से मुंबई में नई जिंदगी शुरू करता है, और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। उसकी मुलाकात होती है खूबसूरत और अमीर लड़की सपना से, जिसका किरदार शर्मिला टैगोर ने निभाया है। शुरुआत में तो सपना को गोपाल बिल्कुल पसंद नहीं आता। उसे लगता है कि गोपाल उसके पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां बदलती हैं और दोनों के बीच प्रेम पनपने लगता है। सपना का परिवार चाहता है कि उसकी शादी प्रेम से हो, जो किरदार प्रेम चोपड़ा ने निभाया है, लेकिन सपना अपने दिल की सुनती है और गोपाल को चुनती है। दोनों शादी कर लेते हैं। सुनने में तो आपको यहाँ तक एक सामान्य प्रेम कहानी जैसी लग रही होगी, लेकिन आमने सामने की असली कहानी तो शादी के बाद ही शुरू होती है। हनीमून के दौरान सपना की जान लेने की कोशिश होती है। अब सवाल उठता है कि आखिर सपना को कौन मारना चाहता है, और सबसे बड़ा सवाल कि क्या गोपाल सचमुच वही व्यक्ति है जो वो खुद को बताता है। धीरे धीरे सपना को पता चलता है कि उसके पति गोपाल का असली नाम दीपक वर्मा है, और ये वही दीपक है जिस पर अपनी पत्नी, जो पहली पत्नी है, उसकी हत्या का आरोप लग चुका है। अब सपना के मन में अपने ही पति को लेकर डर और शक दोनों पैदा होने लगते हैं। गोपाल का बदलता व्यवहार इस रहस्य को और भी गहरा करता है, और उसके बाद हम और आप यानी कि दर्शक भी सोचने लगते हैं कि क्या दीपक वास्तव में हत्यारा है या फिर कोई और है जो घटनाओं के पीछे से पूरी कहानी चला रहा है। और यही सवाल फिल्म को सस्पेंस से भर देता है। फिल्म आमने सामने।

शशि कपूर उस समय हिंदी सिनेमा में अपनी रोमांटिक और आकर्षक स्क्रीन उपस्थिति के लिए बहुत पसंद किए जाते थे। वहीं शर्मिला टैगोर की खूबसूरती और अभिनय की उनकी जो एक अलग पहचान थी वो दर्शकों को अपनी ओर खींचती थी। आमने सामने फिल्में दोनों की जोड़ी के साथ कहानी का रहस्य फिल्म को सामान्य रोमांटिक फिल्म से अलग बनाता है। शशि कपूर ने एक ही किरदार के दो नामों यानी कि दीपक वर्मा और गोपाल मित्तल के जरिए कहानी के रहस्य को संभाला, जबकि शर्मिला टैगोर का किरदार सपना धीरे धीरे प्रेम के शक और फिर डर की ओर बढ़ता है। अब हम यहाँ पर एक कैरेक्टर को और याद करना चाहेंगे, वो है प्रेम चोपड़ा, जिन्होंने प्रेम मल्होत्रा की भूमिका निभाई थी। उनके किरदार की मौजूदगी कहानी में एक और कोड जोड़ती है, खासकर तब जब सपना गोपाल को चुनती है और परिवार और प्रेम की प्रतिक्रिया कहानी को आगे बढ़ाती है। प्रेम चोपड़ा के करियर में ये वो दौर था जब वे हिंदी फिल्मों में अपनी विशिष्ट नेगेटिव इमेज बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे थे, और इन सब के बीच आमने सामने फिल्में इन हर किरदार ने अपने अपने किरदार को बखूबी निभाया। आमने सामने फिल्म की सबसे बड़ी खूबी थी उसका रहस्य बनाए रखना। कहानी लगातार दर्शकों के मन में सवाल पैदा करती थी कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, गोपाल कौन है, दीपक का अतीत क्या है, सपना पर हमला कौन कर रहा है। यानी फिल्म का शीर्षक सिर्फ दो लोगों के आमने सामने की बात नहीं करता, बल्कि कहानी में कई तरीके के विरोधाभासों को भी सामने लाता है। आपके ढेर सारे संदेश भी हम तक पहुंच गए हैं, बस कुछ ही देर में उन संदेशों को भी मैं शामिल करने जा रही हूं।

अजीत भापसर जी, प्रमिला भापसर वीरन गांव गुजरात से ढेर सारी जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, राविया शेख रेख, शेख रहीम मुन्ना जी हमारे साथ हैं। चंडीगढ़ से सतीश शनीजा, बिमला अनेजा हमारे साथ जुड़े हैं। दुर्गाई सेलू से चंदू कुलकर्णी, हेमलता सी आर कुलकर्णी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप मक्कर जी हमारे साथ पिंगावाला चौक

जालंधर से जुड़े हुए हैं और ये संदेश पद्मा टॉकीज नेपा नगर से सुदर्शन शाह पल्लवी जी का आया है। गांव लोहागढ़ ठाकुरवाला से सोन सिंह गिल दलजीत राजीव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितेश कुमार देवानगन दुर्गा प्रसाद जी पलारी छत्तीसगढ़ से हमें सुन रहे हैं। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवानगन कौशल्या हेमलता और डिम्पल जी हमारे साथ हैं। प्रकाश वर्मा प्रिंस जी पलारी से हमारे साथ फिर से जुड़े हैं और तहसील वरुण जिला अमरावती महाराष्ट्र से मुकेश कासलेकर जी हमारे साथ हैं। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गंगरेजा पूनम जी हमें सुन रहे हैं। गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन से, शालीमार बाग से अशोक कुमार सहगल हमारे साथ हैं। पिपरिया से कमलकांत गुप्ता दीपा रिमछिम जी हमें सुन रहे हैं। देवशंकर तामुरी अजय देव तुषार जी डोंजी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से हमारे साथ हैं। शिवा गो प्रेम गोप पश्चिम सिंहभूम चाईबासा झारखंड से हमें सुन रहे हैं। ऊपरकोट मोहल्ला चौखंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सैदबासी निगत परवीन शनवास सरफराज फरदीन और परिवार के सभी सदस्य जुड़े हुए हैं। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा जसवीर जस्सी जी हमारे साथ हैं और सुदर्शन मुखी अनीता मुखी सिमरन जी शांतिनगर सोनीपत से हैं। अगला संदेश अजीत भापसर जी का ही एक और पहुंचा है। भोपाल का राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा कपिल पूजा है हमारे साथ और ये मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा बेरड़ी नाना जी तामसे मीना तामसे जी हमें हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और हीरावणि वर्मा दतरंगी भाटा पारा से हमारे साथ हैं। गांव नागरकोरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से जामुन देवी प्रेम पूजा बेबी आराध्या हमारे साथ हैं। अगला संदेश देवनारायण साहू योगिता चुलबुली गीता जी भोईना पार बालोद छत्तीसगढ़ से आया है। सुरेंद्र खुराना जी न्यू मुल्तान नगर दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शुक्रिया। अगला संदेश हमारे पास बागपत उत्तर प्रदेश से संजय डिंगिया नमन अपार डिंगिया का आया है, आपका भी हम धन्यवाद करते हैं। पीचीआई संसद मार्ग से अनिल मोहन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से उषा मोहन चिल्लू नायक मधु नायक जी हमें सुन रहे हैं। अगला संदेश नलवेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवानकर निर्मला विशाल जी का आया है। फारूक अली खान जी हमें हमारे साथ हैं और गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूंडी जी का एक और संदेश है। पीटीआई संसद मार्ग से अनिल मोहन जी हैं। भूषण खेरा जी हमारे साथ हैं। चर डोगरी पिपरिया जिला कबीरधाम से अजय कुमार जय किशन और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सुरेंद्र खुराना जी न्यू मुल्तान नगर दिल्ली से कह रहे हैं कि आज की फिल्म आमने सामने मैंने देखी हुई है और बहुत बेहतरीन फिल्म है, बिल्कुल शुक्रिया आपका। रोहित वशिष्ठ जी हमारे साथ प्रेम नगर प्रेम सागर सुभाष लता जी के साथ अमृतसर से जुड़े हुए हैं। लालगिरी गोस्वामी हेमलता जी रघुनाथपुरा श्री गंगानगर राजस्थान से हैं। आप सभी का हम शुक्रिया अदा करते हैं हमारे इस हम सफर बनने के लिए। और एक और संदेश आया है शिवा गोप जी का पश्चिम सिंहभूम चाईबास झारखंड से, तो आप सभी का हम शुक्रिया अदा करते हैं। तो दोस्तों ये एक ऐसी कहानी जिसमें मोहब्बत भी है, रहस्य भी है, शक की परछाई भी है, जो कहानी के हर मोड़ पर दर्शकों को सोचने पर मजबूर करती है। तो ये फिल्म हमेशा की तरह यही कहेंगे कि वक्त निकालकर अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। फिलहाल तो वक्त कह रहा है कि आपसे मुझे अनुमति लेनी है, लेकिन 3 बजे आपसे फिर मिलूंगी प्रोग्राम मैचिनी मेलोडीज़ में। याद रखिएगा, नोट कर लीजिए, 3 बजे मैचिनी मेलेडीज लेकर एक बार फिर हाजिर होंगी। 2:30 पर प्रोग्राम रहेगा, एक ही कलाकार शिल्पा जी आपके साथ रहेंगी। तब तक अपनी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम एक ही फिल्म से, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। 1:40 होने को है, कुछ ही देर में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: खबर उस तो बाद मिलेंगे 2 प्रोग्राम लेके दोबारा।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है।

0: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 147 ਕੋਲਾ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਜ਼ਵੇਰੇਵ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬੇਨ ਸ਼ੈਲਟਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ US ਓਪਨ ਪੁਰਸ਼ ਸਿੰਗਲ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਾਦੇਸ਼ਿਕ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸ਼ਾਮ 6:20 ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਨਮਸਕਾਰ,
1: ਆਦਾਬ। ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने कहा है कि भारत की लिसानी गुनागुनियत कसरत में वहदत के जज्बे को मजबूत बनाती है। उन्होंने हिंदी दिवस के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। दिफा की वजारत की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2025 में चीन ने फौजियों की तैनाती में नुमाया कमी की है। रिपोर्ट में जम्मू और कश्मीर की सिक्योरिटी सूरतहाल को मुस्तहकम करार दिया गया है। मौसमियात महकमे ने गुजरात के कई जिलों में तेज बारिश होने की पेशगोई की है। आज पूरे मुल्क में गणेश चतुर्थी अकीदत और जोशोखरोश के साथ मनाई जा रही है। और US ओपन टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ने अमेरिका के बेन शेल्टन को हराकर मर्दों का सिंगल्स टाइटल जीत लिया है। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने कहा है कि भारत की लिसानी गुनागुनियत कसरत में वहदत के जज्बे को मजबूत बनाती है। हिंदी दिवस के मौके पर लोगों को मुबारकबाद देते हुए जनाब शाह ने कहा कि भारत लिसानी और सकाफती यगानिगत की सरजमीन है और जोर दिया कि मुल्क की कई जबानें उसकी ताकत हैं। उन्होंने कहा कि हिंदी जबान ने मुल्क के मुख्तलिफ तबकात और बरादरियों को आपस में जोड़ने में एक अहम रोल अदा किया है और ये जबान बातचीत, वाबस्तगी और तालमेल का एक जरिया है। आज हिंदी दिवस के मौके पर एक वीडियो पैगाम शेयर करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदी जबान किसी दीगर जबान की मुसाबिकती जबान नहीं है, बल्कि कौमी इत्तेहाद को मजबूत करने का एक अहम वसीला है।
2: भाषा किसी भी समाज की स्मृति होती है, उसका आत्मबोध होती है। हिंदी ने इस विविधता के बीच संवाद, संपर्क और समन्वय की भाषा के रूप में देश के विभिन्न वर्गों और समुदायों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी का विकास भी तभी सार्थक है जब सभी भारतीय भाषाओं के सम्मान, संरक्षण और संवर्धन के साथ आगे बढ़े।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में ब्रिक्स सरबराह मीटिंग को समरावर और नतीजा खेज बनाने पर ब्रिक्स के सभी रुकन मुल्कों के रहनुमाओं के तई तशक्कुर का इजहार किया है। दो रोजा सरबराह मीटिंग के अहम लम्हों की झलकियों पर मुश्तमिल एक वीडियो वजीर आजम के सोशल मीडिया हैंडल्स पर पोस्ट किया गया है। इस वीडियो में सरबराह मीटिंग के मौके पर वजीर आजम की तकरीर के एक हिस्से को दिखाया गया है, जहां उन्होंने ये कहा था कि ब्रिक्स के जरिए भारत ने दोस्ती, शराकतदारी और तमाम तर शोबों में तआवुन को आगे बढ़ाया है। भारत ने 12 और 13 सितंबर को ब्रिक्स सरबराह मीटिंग की मेजबानी की। इसमें 11 रुकन मुल्कों और ग्रुप्स के 10 शराकतदार मुल्कों ने रहनुमा शरीक हुए। इसके अलावा कुछ बैन अल-अक़वामी तंजीमों ने भी इसमें शिरकत की। जनाब मोदी ने सरबराह मीटिंग के मौके पर पिछले 3 दिन के दौरान मुल्कों और हुकूमतों के सरबराहों के साथ 15 दोतरफा मीटिंगें भी की। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में ब्रिक्स सरबराह मीटिंग की कामयाबी पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी को ये कहते हुए मुबारकबाद दी है कि इसकी कामयाबी से आलमी मंजरनामे पर एक नाकाबिले फरामोश छाप कायम हुई है। उन्होंने कहा कि तारीखी नई दिल्ली ऐलामिये पर दस्तखत होना महज एक दस्तावेज नहीं, बल्कि ये वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में आलमी सतह पर भारत के बढ़ते हुए असर रसूख का इजहार है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर वजीर मौसूफ ने कहा कि जनाब मोदी की नजरिया साज क्यादत में ब्रिक्स की सदारत के दौरान भारत ने मजबूती, इख्तरा, इश्तराक और पायदार निजाम को अव्वलीन तरजीहात के तौर पर उजागर किया। वजारत खारजा ने नई दिल्ली में 18वीं ब्रिक्स सरबराह मीटिंग के कामयाब इनेकाद में उनके ताउन के लिए सभी मरकजी हुकूमत के महकमों और एजेंसियों के तई तशक्कुर का इजहार किया है। यह सरबराह मीटिंग कल कामयाबी के साथ अख्ताम पजीर हुई। वजारत ने कहा है कि इस सरबराह मीटिंग का इनेकाद एक वसी तकरीब थी, जिसमें हुकूमत और पूरे मुल्क की जामे कोशिशों की जरूरत थी। उसने ब्रिक्स सरबराह मीटिंग की मेजबानी करने के लिए सभी रियासती हुकूमतों का भी शुक्रिया अदा किया है। हुकूमत ने कहा है कि फौज की अंथक कोशिशों के

आज पूरे मुल्क में गणेश चतुर्थी अकीदत और जोशो खरोश के साथ मनाई जा रही है और यूएस ओपन टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव ने अमेरिका के बेन शिल्टन को हराकर मर्दों का सिंगल्स टाइटल जीत लिया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: terms security situation in Jammu and Kashmir as stable. Union Home Minister Amit Shah says, India's linguistic diversity strengthens unity amidst diversity, congratulates people on occasion of Hindi Divas. IMD predicts heavy rain and thunderstorm for several districts across Gujarat today. Ganesh Chaturthi being celebrated across the country today with great devotion, pomp and gaiety. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। ब्रिक्स नेताओं ने ऊर्जा सुरक्षा को आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा की महत्वपूर्ण नींव बताया। प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों को आर्थिक या राजनीतिक दबाव के साधन के रूप में इस्तेमाल करने पर आगाह किया। रक्षा मंत्रालय ने कहा, देश की उत्तरी सीमा पर वर्ष 2025 में चीनी सेना की तैनाती में उल्लेखनीय कमी देखी गई। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति स्थिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, भारत की भाषाई विविधता अनेकता के बीच एकता को मजबूत करती है। गृहमंत्री ने हिंदी दिवस की शुभकामनाएं भी दी। गुजरात के अनेक जिलों में आज आंधी तूफान के साथ तेज बारिश का अनुमान। देश भर में आज गणेश चतुर्थी पर श्रद्धा और हर्षोल्लास का माहौल। और अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अमेरिका के बेन शेल्टन को हराकर पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स नेताओं ने कहा है कि ऊर्जा सुरक्षा, सामाजिक तथा आर्थिक विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा और सभी देशों के कल्याण की महत्वपूर्ण नींव है। नई दिल्ली में आयोजित दो दिन के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान सदस्य देशों ने ऊर्जा बाजारों में स्थिरता सुनिश्चित करके और विभिन्न स्रोतों के जरिए ऊर्जा के निर्बाध प्रवाह को बरकरार रखने तथा महत्वपूर्ण ऊर्जा प्रतिष्ठान को सुरक्षित रखकर ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया। सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आगाह किया कि प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों को आर्थिक या राजनीतिक दबाव के साधन के रूप में इस्तेमाल करने से प्रगति में बाधा आ सकती है। एक रिपोर्ट।
2: दो दिनों तक चले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास पर केंद्रित रहा। भारत ने अपनी अध्यक्षता के दौरान लोगों के विकास और ग्लोबल साउथ के हितों को विशेष महत्व दिया। इस सम्मेलन की सबसे बड़ी उपलब्धि सम्मेलन के पहले ही दिन सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाना था। पश्चिम एशिया की स्थिति पर ब्रिक्स नेताओं ने सभी पक्षों से अधिकतम संयम बरतने, बातचीत और कूटनीति के माध्यम से समस्या का समाधान करने की अपील की। वहीं आम लोगों और नागरिक सुविधाओं की सुरक्षा की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया। इसके अलावा सभी नेताओं ने हर तरह के आतंकवाद की कड़ी निंदा की और आतंकवाद के खिलाफ शून्य सहनशीलता की नीति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। वहीं संक्रामक बीमारियों की रोकथाम और उनसे निपटने के लिए ब्रिक्स इंटीग्रेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाने पर भी सहमति बनी। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि सम्मेलन की सफलता ने वैश्विक मंच पर भारत की मजबूत छाप छोड़ी है। श्री सिंह ने कहा कि ऐतिहासिक नई दिल्ली घोषणा पत्र भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव का प्रमाण है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनॉम घेब्रेयेसस ने कहा है कि इस वर्ष ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय सीधे तौर पर वैश्विक स्वास्थ्य से जुड़ा था। उन्होंने देशों से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा निगरानी, चेतावनी प्रणाली और स्थानीय उत्पादन को मजबूत करने का आग्रह किया। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने त्रिकुरल के प्रचार प्रसार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की है। उन्होंने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को त्रिकुरल के रूसी अनुवाद की प्रति भेंट करने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद भी दिया। विदेश मंत्रालय ने 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन में सहयोग के लिए केंद्र सरकार के सभी विभागों और एजेंसियों का आभार व्यक्त किया है। मंत्रालय ने उन सभी राज्य सरकारों का भी धन्यवाद किया जिन्होंने ब्रिक्स की विभिन्न बैठकों की मेजबानी की। उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन का आयोजन जटिल कार्य था जिसके लिए सरकार और देश के सभी स्तरों पर समन्वित प्रयास जरूरी थे। ये सम्मेलन कल नई दिल्ली में सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।

0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि सेना के अथक प्रयासों के चलते जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। रक्षा मंत्रालय ने अपनी नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 में कहा है कि इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप हिंसा में उल्लेखनीय कमी आई है। विरोध प्रदर्शनों में भी गिरावट आई है और पत्थरबाजी की कोई घटना नहीं हुई है। रिपोर्ट में चीन के साथ समग्र स्थिति पर भी प्रकाश डाला गया है। वर्ष 2025 में उत्तरी सीमाओं के सामने चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी बलों की तैनाती में उल्लेखनीय कमी देखी गई। वास्तविक नियंत्रण रेखा LSC और पारंपरिक प्रशिक्षण क्षेत्रों में 10 संयुक्त शस्त्र ब्रिगेड के आकार के बल तैनात किए गए हैं। भारत और चीन के बीच राजनीतिक, राजनयिक और सैन्य स्तर पर द्विपक्षीय बातचीत से उत्तरी सीमाओं पर सकारात्मक विकास हुआ है, जिससे स्थिरता आई है। बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने कहा है कि उनका देश भारत के साथ संबंधों को द्विपक्षीय बातचीत के जरिए आगे बढ़ाना चाहता है। ढाका में उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को भारत के साथ आपसी हितों के आधार पर नए सिरे से काम करना चाहिए। भारत बांग्लादेश सीमा से जुड़े हाल के मामलों पर श्री कबीर ने कहा कि बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय कानून, सीमा संबंधी नियमों और द्विपक्षीय समझौतों के तहत कूटनीतिक बातचीत से मुद्दों का समाधान करेगा। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज महाराष्ट्र के नवी मुंबई में 6वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के दौरान राजभाषा गौरव और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 2025-26 प्रदान किए। श्री शाह ने हिंदी दिवस के उद्घाटन सत्र को भी संबोधित किया।
1: हिंदी शब्द संसाधन, हिंदी टंकन अंशुलिपि, इसके प्रशिक्षण का भी शुभारंभ हुआ है। राजभाषा कीर्ति और राजभाषा गौरव पुरस्कार का भी सबको सम्मानित करने का काम हुआ है। जिन जिन लोगों को राजभाषा कीर्ति सम्मान और राजभाषा गौरव पुरस्कार मिला है, वो सभी को मैं मन पूर्वक बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ।
0: गृहमंत्री ने वंदे मातरम को देश का गौरव बताया।
1: वंदे मातरम की उद्घोषणा के साथ न केवल आजादी की उत्कंठता को, आजादी प्राप्त करने की तीव्र भावना को जागृत किया, इसके साथ साथ भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की नींव डालने का काम भी बंकिम चंद्र जी ने किया था। आजादी के बाद भी इसको पूर्ण स्वरूप से स्वीकार करते करते 80 साल हो गए। नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले जिन्होंने वंदे मातरम को फिर से बार पूर्ण स्वरूप गौरव के साथ सरकारी समारोह में गाने का काम किया।
0: दो दिन के अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग की ओर से नवी मुंबई में किया जा रहा है। इसका उद्देश्य हिंदी और महाराष्ट्र के समृद्ध भाषाई, सांस्कृतिक तथा साहित्यिक परंपराओं के बीच संबंध को उजागर करना है। सम्मेलन में विभिन्न संस्थानों, संगठनों, बैंकों और मंत्रालयों की ओर से प्रदर्शनी भी लगाई गई है। देशभर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखे हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। आज हिंदी दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है और 52 करोड़ से ज्यादा लोगों की पहली भाषा है।
2: हिंदी दिवस वो दिन है जब हम सिर्फ एक भाषा का उत्सव नहीं मनाते, बल्कि उस भाव को नमन करते हैं जो हमें शब्दों के माध्यम से एक दूसरे से जोड़ता है। संत कबीर ने भी कहा है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। वाणी केवल संवाद का माध्यम नहीं बल्कि हमारे संस्कारों की भी पहचान है। हिंदी ने सदियों से भावनाओं को शब्द दिए हैं। भाषा का वास्तविक गौरव तभी है जब वो ज्ञान को सबके लिए सहज बनाए और समाज को जोड़े। इसीलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी कहा है कि निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को सूल। इस हिंदी दिवस पर आइए हिंदी को केवल सिर्फ एक दिन के रूप में न याद करें, बल्कि इसे बोलें, पढ़ें, लिखें और आगे बढ़ाएं। साथ ही दूसरी भाषाओं का भी सम्मान करें, क्योंकि भाषा में जितनी स्वीकार्यता होगी वो उतनी ही आगे बढ़ेगी। आकाशवाणी की ओर से हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हिंदी दिवस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि भारत की संस्कृति, सभ्यता और जीवन मूल्यों की सशक्त अभिव्यक्ति

0: व्यक्ति है। सरकार ने कहा है कि वर्ष 2020 के बाद से 9 राज्य में 147 कोयला खंडों की नीलामी की गई है। कोयला मंत्रालय ने बताया है कि इससे लगभग 47,500 करोड़ रुपए का राजस्व और 4,90,000 नौकरियां सृजित होने का अनुमान है। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले वित्त वर्ष में आवंटित वाणिज्यिक खदानों से लगभग 3,090 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था। भारत के विद्युत मंत्रालय ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण को 13 सितंबर 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली निर्यात करने की मंजूरी दे दी है। हाल ही में आई बाढ़ से नेपाल के जल विद्युत अवसंरचना को भारी नुकसान पहुंचा है। इससे नेपाल के घरेलू बिजली उत्पादन क्षमता में कमी आई है और बिजली की अतिरिक्त आवश्यकता उत्पन्न हुई है। राजस्थान में 309 शहरी स्थानीय निकायों के लिए हुए चुनावों की वोटों की गिनती जारी है। अब तक मिले रुझानों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है। राज्य के 10 नगर निगमों में से भाजपा जयपुर, अलवर, भीलवाड़ा और उदयपुर सहित 6 में आगे है, जबकि कांग्रेस पाली और बीकानेर में बढ़त बनाए हुए है। भरतपुर में निर्दलीय उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। पश्चिम बंगाल सरकार भूमि मालिकों की जानकारी के बिना किए जाने वाले फर्जी भूमि पंजीकरणों को रोकने के लिए एक प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली शुरू कर रही है। यह संपत्ति पंजीकरण को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम है। केंद्रीय विद्युत और आवास तथा शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल G20 ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए अमरीका पहुंच गए हैं। ऊर्जा प्रचुरता पर G20 मंत्री स्तरीय बैठक 14 से 16 सितंबर तक आयोजित की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @EIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। गुजरात के अनेक जिलों में आज तेज बारिश और आंधी तूफान की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
1: पोरबंदर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, नवसारी और वलसाड़, इन 5 तटीय और अत्यधिक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं कच्छ, जामनगर, देवभूमि द्वारका, राजकोट, मोरबी, सुरेंद्रनगर, बोटाद, अमरेली, भावनगर और सूरत समेत 10 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट प्रभावी है। इन दौरान 41 से 61 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने की भी संभावना जताई गई है। वहीं राज्य में मानसून की नई बारिश से फसलों को संजीवनी मिली है, जिससे किसानों में खुशी की लहर छाई है। राज्य के 35 बांध अपनी पूरी क्षमता से भरने के कारण हाई अलर्ट पर है। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: मौसम विभाग ने कल तक हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पूर्वी राजस्थान, ओडिशा और बिहार में भी तेज बारिश की आशंका व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में अगले 2 दिन तक बारिश जारी रह सकती है। देश भर में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है, जो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में भगवान गणेश की पूजा की।
2: गणेश चतुर्थी की पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। भगवान श्री गणेश सबके जीवन में हमेशा शुभ करें, हर व्यक्ति के जीवन में खुशी, उत्साह, उत्सव रहे, इसकी कामना करता हूँ। भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद बना रहे।
0: गणेश चतुर्थी की वजह से आज घरेलू शेयर बाजार बंद है। कमोडिटी बाजार में आज सुबह के सत्र में कोई कामकाज नहीं हुआ, लेकिन शाम 5 बजे से कारोबार फिर शुरू हो जाएगा। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अमरीकी ओपन पुरुष सिंगल्स खिताब जीत लिया है। फाइनल में ज्वेरेव ने अमरीका के बेन शेल्टन को हराया। ये 2026 में ज्वेरेव का दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। इससे पहले उन्होंने जून में फ्रेंच ओपन का खिताब जीता था। भारत ने T20 महिला एशिया कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में कल भारतीय टीम ने श्रीलंका को 72 रन से हराकर 8वीं बार एशिया कप अपने नाम किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स नेताओं ने ऊर्जा सुरक्षा को आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा की महत्वपूर्ण नींव बताया। प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों को आर्थिक या राजनीतिक दबाव के साधन के रूप में इस्तेमाल करने पर आगाह किया। रक्षा मंत्रालय ने कहा देश

0: की उत्तरी सीमा पर वर्ष 2025 में चीनी सेना की तैनाती में उल्लेखनीय कमी देखी गई। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति स्थिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, भारत की भाषाई विविधता अनेकता के बीच एकता को मजबूत करती है। गृहमंत्री ने हिंदी दिवस की शुभकामनाएं भी दी। गुजरात के अनेक जिलों में आज आंधी तूफान के साथ तेज बारिश का अनुमान और देश भर में आज गणेश चतुर्थी पर श्रद्धा और हर्षोल्लास का माहौल। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में 2:30 हुए हैं और ये वक्त है आज इस कार्यक्रम का एक ही कलाकार से। जी हाँ, ये तो हम सभी जानते हैं। तो शुरू करते हैं अपना ये कार्यक्रम। आज मैं आपके साथ हूँ, आपकी दोस्त शिल्पा गोस्वामी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, सिनेमा की दुनिया में कुछ नाम ऐसे होते हैं जिन्हें याद करने के लिए किसी एक फिल्म का नाम लेना ही काफी होता है। और आज का हमारा जो नाम है वो है जीपी सिप्पी साहब का। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसे फिल्मकार जिनकी पहचान सिर्फ एक निर्माता के तौर पर नहीं हुई, बल्कि जिन्होंने हिंदी सिनेमा को ऐसी फिल्में दी जिनकी चमक आज भी वैसी ही है जैसी पहले थी। इन फिल्मों के पीछे था एक बड़ा फिल्मी परिवार और उस परिवार की मजबूत नींव रखने वाला नाम था जीपी सिप्पी। तो आइए दोस्तों, आज के इस खास कार्यक्रम में हम जानेंगे जीपी सिप्पी की जिंदगी, उनकी फिल्में, उनका सफर, उनकी फिल्मों और उनसे जुड़े कुछ रोचक किस्से। सबसे पहले सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

दोस्तों, जीपी सिप्पी का जन्म 14 सितंबर 1914 को हुआ था। उनका पूरा नाम था गोपाल दास परमानंद सिपाही मालनी। उनका जन्म उस समय के सिंध क्षेत्र में हुआ था। फिल्मों में आने से पहले दोस्तों, वह उनका जो जीवन था बिल्कुल अलग दिशा में था। वे कानून के क्षेत्र से जुड़े हुए थे और बाद में उन्होंने मुंबई में रियल एस्टेट और निर्माण के कारोबार में भी काम किया था। यानी जिस व्यक्ति ने आगे चलकर करोड़ों दर्शकों को सिनेमा के पर्दे पर सपने दिखाए, उनकी शुरुआत फिल्मी दुनिया से नहीं बल्कि दूसरे व्यवसायों से हुई थी। लेकिन दोस्तों, शायद सिनेमा उनके लिए सिर्फ एक कारोबार नहीं था, सिनेमा उनका जुनून बन चुका था। और फिर आया वह समय जब उन्होंने फिल्म निर्माण की दुनिया में कदम रखा।

साथियों, 1951 में जीपी सिप्पी ने फिल्म बनाई सजा। फिल्म में देवानंद और निम्मी थे और यह फिल्म कोई बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर नहीं रही, लेकिन दोस्तों, इस फिल्म ने जीपी सिप्पी को एक ऐसी दुनिया से परिचित करा दिया जिससे फिर उनका जो नाता जीवन भर फिल्म से जुड़ गया। उन्होंने धीरे धीरे अपनी पहचान बनाई और सिप्पी फिल्म्स के बैनर के तहत कई महत्वपूर्ण फिल्मों का निर्माण किया। उनकी फिल्मों की सूची देखें तो पता चलता है कि वे अलग-अलग तरह की कहानियों और सितारों के साथ काम करने का साहस रखते थे। उन फिल्मों में शामिल थी ब्रह्मचारी, बदन, अंदाज, सीता और गीता और फिर आई शोले।

साथियों, जीपी सिप्पी के परिवार में भी सिनेमा का प्रभाव बढ़ता चला गया। उनके बेटे रमेश सिप्पी आगे चलकर हिंदी सिनेमा के जाने माने निर्देशक बने और यही पिता पुत्र की जोड़ी आगे चलकर भारतीय सिनेमा की सबसे प्रसिद्ध फिल्मों में से एक लेकर आई, ज्योति शोले। लेकिन शोले तक पहुंचने से पहले दोस्तों, एक और बेहद महत्वपूर्ण फिल्म आई, वो थी अंदाज। सन 1971

न्यायी अंदाज का निर्देशन रमेश सिप्पी ने किया था और निर्माण जीपी सिप्पी का था। फिल्म में राजेश खन्ना, हेमा मालिनी और शम्मी कपूर प्रमुख भूमिकाओं में थे। यही वह दौर था जब रमेश सिप्पी ने निर्देशक के रूप में पहली अपनी पहचान बनानी शुरू की। तो लीजिए सुनते हैं इसी फिल्म का ये गीत।

दोस्तों, अब आता है जीपीसीपी के करियर का शायद सबसे बड़ा अध्याय। कहा जाता है कि सीता और गीता की सफलता के बाद जीपीसीपी ने अपने बेटे रमेश सिप्पी से एक बड़े एक्शन फिल्म प्रोजेक्ट पर काम करने की इच्छा जताई। यहीं से आगे चलकर उस फिल्म की तैयारी हुई जिसे हम पहले भी आपको बता चुके हैं। वो फिल्म थी शोले। सीता और गीता के बाद धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी लोकप्रिय हो चुकी थी और

ये शोले में भी दोनों साथ दिखाई दिए। दोस्तों, शोले एक फिल्म नहीं, एक इतिहास बन चुका है, निर्माता जीपी सिप्पी और निर्देशक रमेश सिप्पी का।

साथियों, उनकी फिल्मों में मनोरंजन के साथ साथ बड़े कैनवास का आकर्षण भी दिखाई देता था। वे सिर्फ यह नहीं सोचते थे कि फिल्म आज कितनी चलेगी, वे सोचते थे कि क्या यह फिल्म आने वाले सालों में भी याद रखी जाएगी। शायद दोस्तों यही कारण है कि उनके बैनर से निकली कई फिल्में आज भी दर्शकों के बीच चर्चा में रहती हैं।

दोस्तों, बातें तो बहुत हैं लेकिन समय हमें इशारा कर रहा है आपसे अनुमति लेने के लिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए।

अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम एक ही कलाकार, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। वक्त हो गया है दोपहर के 3:17 और जानते हैं ना आप ये वक्त कौन से प्रोग्राम का है? जी हाँ, मैटिनी मेलेडीज का। और इस प्रोग्राम को लेकर हाजिर हूँ मैं, आपकी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे। और आज हम कुछ खास लेकर आए हैं, खास इसलिए क्योंकि जिंदगी में रिश्ते तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक ऐसा रिश्ता है जो बहुत अनमोल है। मतलब कह सकते हैं कि आप हर रिश्ता दोबारा मिल जाता है, लेकिन ये रिश्ता सिर्फ एक ही बार मिलता है। जो लगाव, जो प्रेम, जो अपनापन इस रिश्ते में है, वो किसी और रिश्ते में है ही नहीं। तभी तो इस रिश्ते को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है। हिंदी सिनेमा में भी इस किरदार पर कई सारी नायिकाओं ने काम किया है। चलिए हम आपको बता ही देते हैं कि आज हम बात कर रहे हैं माँ, माँ की। हिंदी सिनेमा में जैसा कि हमने आपको बताया, माँ का किरदार जो है वो सिर्फ एक भूमिका नहीं रहा, बल्कि ममता, त्याग, संघर्ष और परिवार को जोड़कर रखने वाली उस भावना का प्रतीक रहा है जिसे दर्शकों ने हमेशा अपने दिल के बहुत करीब रखा। और इस तस्वीर में 1960 से 2000 के दशक तक माँ के किरदारों से पहचान बनाने वाली कई सारी अभिनेत्रियों को दिखाया गया है। पीछे के दौर की बात करें तो लीना चिटनीस, निरूपा रॉय, दुर्गा खोटे, ललिता पवार, अचला सचदेव जैसी जो दिग्गज अभिनेत्रियां थीं, उन्होंने उस दौर में माँ के किरदार को ऐसी भावनात्मक गहराई दी कि कई बार उनका छोटा सा दृश्य भी पूरी फिल्म पर भारी पड़ जाता था। तो आज हम आपके लिए चुनकर कुछ इसी तरीके के किरदार निभाने वाली अभिनेत्रियों को लेकर आए हैं जिन्होंने पर्दे पर माँ का ऐसा रोल निभाया कि उसमें अपनी माँ नजर आती हैं। तो शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत से गीत के साथ और उसके बाद आगे की बात भी करेंगे। और हाँ, आप भी मुझे बता सकते हैं कि आपको माँ का किरदार निभाने वाली कौन सी अभिनेत्री सबसे ज्यादा अच्छी लगती थी, या फिर वो कौन सी अभिनेत्री है जिसे आप माँ के किरदार में ज्यादातर पसंद करते थे। तो अब हम शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की। और हमारे साथ जुड़ने का तरीका तो आपको पता ही है, मेल आईडी है ipradiodelhi@gmail.com। फिलहाल मन्ना डे और महेंद्र कपूर की आवाज़ में ये खूबसूरत सा गीत।

जी हाँ, 1960 के दशक में भारतीय सिनेमा में माँ का किरदार निभाने वाली कई दिग्गज अभिनेत्रियाँ थीं। इन अभिनेत्रियों पर कई सदाबहार गीत भी फिल्माए गए या फिर उनके किरदारों को समर्पित गीत फिल्मों में शामिल किए गए। तो आज हम कुछ ऐसी ही अभिनेत्रियों को चुनकर लेकर आ रहे हैं और उनके ऊपर फिल्माए या उनके सराउंडिंग जो फिल्माए गीत हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं। ये खूबसूरत सा गीत अभी आपने सुना। अब हम बात करते हैं 1960 के दशक में माँ, दादी और नानी ऐसे कई सारे यादगार रोल निभाए अचला सचदेव ने। फिल्म वक्त याद है ना आपको? वक्त में बलराज सहानी के साथ उनकी जो जोड़ी थी और उन पर फिल्माया गया गीत आज भी विंटेज शादियों और महफिलों की शान है। तो इस गीत को हम कैसे भूल सकते हैं, सुनते हैं इन्हीं के ऊपर पिक्चराइज ये गीत जो बहुत ही खूबसूरत सी लग रही थी। और इन्होंने इस फिल्म में, वक्त फिल्म में, बलराज सहानी की पत्नी का रोल निभाया था और बेटों की माँ बनी थी। तो सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

1960 के दशक की सबसे बड़ी ऐतिहासिक फिल्म थी शहंशाह अकबर की पत्नी और सलीम की माँ, इनका किरदार निभाने वाली एक अभिनेत्री। और ये फिल्म ऐसी थी जिसने कई सारे शोहरत के झंडे गाड़े, शायद आपको याद आ ही गया होगा। बात कर रहे हैं हम 1960 की फिल्म मुगले आजम। और जब बात मुगले आजम की हो तो उसमें हम शहंशाह अकबर की पत्नी और सलीम की माँ यानी कि महारानी जोधाबाई को कैसे भूल सकते हैं। और आप जानते हैं ना कि ये किरदार किसने निभाया था? दुर्गा खोटे ने। इतनी खूबसूरत लगी थी वो इस फिल्म में, लगता था कि बाकी जो असली महारानी जोधाबाई थी वो यही थी। तो इनके ऊपर ये जो गीत हमने चूज किया है इस फिल्म से, वो गीत इनके ऊपर फिल्माया तो नहीं गया है, लेकिन ये इस गीत के आसपास जरूर थी। सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत।

तो अब हम मिलते हैं एक सख्त कड़क मिजाज चालाक माँ, जो कभी कभी सास के रूप में भी अपना खौफनाक रूप दिखा देती थी, ललिता पवार। जी हाँ, जहाँ एक तरफ निरुपा रॉय और सुलोचना ममतामयी माँ बनी बनती थी, वहीं ललिता पवार को 1960 के दशक में सख्त कड़क मिजाज वाली माँ के रूप में भी पहचाना जाता है। वहीं इनका जो सास वाला जो किरदार था, सास भी माँ होती है, तो वो भी बहुत कड़क होता था। और ऐसा लगता था कई बार कि अगर असल जिंदगी में इस तरीके की सास होगी तो फिर क्या ही कहना है। तो कई बार खौफ इतना ज्यादा हो जाता था इनकी फिल्मों में इनके किरदारों का। तो ये एक इनकी कला थी जो वो अपने किरदार में इस तरीके से वो ढालती थी उस किरदार को कि वो पूरा असली नजर आता था। तो चलिए बात करते हैं इन्हीं की एक फिल्म अनाड़ी की, जो कि 1959-60 में आई थी, और माफ कीजिएगा, ये 1960 में आई थी। और सुनते हैं इसी फिल्म से ये खूबसूरत सा गीत।

और अब अगली माँ का जो गीत है वो आप तक पहुंचाए, उससे पहले आपकी जो संदेश है उनको हम शामिल कर लेते हैं। तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख और शेख रहीम मुन्ना जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्किन, बीना मस्किन, डब्बू सम्राट, चैतन्य मस्किन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता केशु रिधान खुराना जी हमें सुन रहे हैं। अगला संदेश पहुंचा है कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर जी का, और ये संदेश हमारे पास मस्किन दादा जी का आया है बिहारी कॉलोनी दिल्ली से। छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस निखिल यशस्वी जी हमारे साथ हैं। ऊपरकोट मोहल्ला चौखंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी निगत परवीन, शहनवाज सरफाज, फरदीन सुहान अरजान और ये लिख रहे हैं कि बेहतरीन प्रस्तुतिकरण और गीतों के लिए शुक्रिया, आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीरनगांव गुजरात से अजीत भापसर, प्रमिला भापसर जी लिख रहे हैं कि भारतीय सिनेमा के पर्दे में रियल माँ के किरदार का प्रोग्राम चल रहा है। अचला सचदेव, निरूपा रॉय, कामिनी कौशल, दुर्गा खोटे, बहुत सारी माँ ऐसी हैं जिन्होंने, अभिनेत्रियाँ हैं जिन्होंने माँ का किरदार निभाया था और वो कामयाब भी हुई थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सुदर्शन मुखी, अनीता जी, सिमरन जी शांतिनगर सोनीपत से हमारे साथ हैं। और खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज, आयुषी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। कुछ और संदेश भी हमारे पास आएंगे, उनको भी हम लेंगे, लेकिन उसके पहले जो अगली माँ हमने आपके लिए ली है वो है लीना चिटनिस। 1950 और 60 के दशक में उन्होंने कई बड़ी फिल्मों में एक लाचार, बीमार और भावुक माँ का किरदार निभाया जो दर्शकों को रुला देता था। चलिए सुनते हैं 1961 में उनकी फिल्म गंगा जमुना से ये गीत।

तो दोस्तों ये थी कुछ माएँ जिन्होंने फिल्मी पर्दे पर माँ का किरदार निभाकर उस किरदार को अमर बना दिया। अब वक्त हमें अनुमति नहीं दे रहा है कि हम आपसे और बातें करें, क्योंकि बातें तो बहुत सारी हैं और गीत भी बहुत सारे हैं, लेकिन अगली मुलाकात में हम उन सबको पूरा करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अपनी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे को अनुमति दीजिए, जल्दी ही मिलने के वायदे के साथ आपसे अनुमति लेती हूँ। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम मैटिनी मेलोडीज, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। 3:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम उर्दू मजलिस।

सामीन, अभी आप जगजीत सिंह की आवाज़ में गज़ल सुन रहे थे। कलाम था राजेश रेड्डी का। सामीन, हज़रत अमीर खुसरो को हिंदी और उर्दू दोनों का पहला शायर माना जाता है। उन्होंने पहेलियाँ, कहमकरनियाँ, दो सुखने और कव्वालियाँ दोनों भाषाओं के मेलजोल से बनी भाषा हिंदवी में लिखी है। उनकी तसानीफ में जगह जगह हिंदी अल्फाज और मुहावरात मिलते हैं। गोरी सोए सेज पर मुख पर डारे केस, गोरी सोए सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहुदेस।

सामिन, कबीर का शुमार भक्ति काल के अहम शोरा में होता है। उनकी शख्सियत में दोनों मजाहिब के असरात नजर आते हैं। कबीर ने अपने अशार में हज़्ब मौका, ब्रज भाषा, पूर्वी हिंदी और अवधी तीनों जबानें इस्तेमाल की हैं। उनके दोहे मशहूर हैं। उनका मजमुआ बीजक के नाम से शाया हो चुका है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा

सामीन, अभी आप सुभाष आनंद की आवाज़ में गज़ल सुन रहे थे। कलाम था हज़रत अमीर खुसरो का। सामीन, हिंदी शेर व अदब को फ़रोग़ देने में मुग़ल बादशाहों की खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं। हिंदी ज़बान ने फ़ारसी ज़बान से असर कबूल किया। अकबर के अहद में हिंदी शायरी का नया रूप निखर कर सामने आया। दरबार से वाबस्ता शोरा में अब्दुल रहीम खान खाना का नाम खसूसियत से काबिले ज़िक्र है। वो संस्कृत, फारसी, हिंदी ज़बानों के माहिर थे। उनके दोहे कबूल आम हैं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, तोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए।

सामिन, प्रेम चंद हिंदी और उर्दू दोनों जबानों के अदीब हैं। उन्होंने कहानियाँ, अफसाने, नावल तख्लीक किए। उनकी ज़बान सादा, सलीस और आम है। उन्होंने देही ज़िंदगी पर खूब लिखा है।

सामीन, अभी आप दिनेश प्रभाकर की आवाज़ में गज़ल सुन रहे थे। कलाम था महेश चंद्र नक्श का। सामीन, दुष्यंत कुमार त्यागी एक मशहूर शायर हैं। उन्हें जदीद हिंदी गज़ल को अवामी एहसासात, समाजी मसाइल और सियासी शऊर से जोड़ने वाले अहम शोरा में शुमार किया जाता है। उन्होंने ड्रामे भी लिखे और नावल भी लिखे हैं, लेकिन उन्होंने हिंदी में गज़ल को एक नई पहचान दी है। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए।

सामिन, अभी आप शोभना राव की आवाज़ में गज़ल सुन रहे थे। कलाम था फिराक गोरखपुरी का। इसी के साथ आज का उर्दू मजलिस प्रोग्राम अब यहीं ख़त्म होता है। अपनी मेज़बान नसरीन बेगम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उर्दू मजलिस। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। और लीजिए, आप सुनते हैं समाचार।

印度的里广播电台，听众朋友们，请收听 Bihar 邦的 Bhojpuri 民间歌曲。

0: खेल खिलाड़ी खेलों का आईना।
1: हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम खेल खिलाड़ी। मैं हूं कविता और आज मेरे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं मेरे सहयोगी
2: अभिनव कुमार झा। नमस्कार श्रोताओं।
1: अभिनव और मैं आज आपको लेकर चलेंगे खेल जगत की उस पूरी राइड पर जहां पर हम आपको सुनवाएंगे खेलों से जुड़ी हुई बहुत अहम खबरें, जहां पर हम बात करेंगे टेनिस की, साथ ही साथ बात होगी आर्चरी वर्ल्ड कप में हुई उपलब्धि की। इसके साथ साथ हम बात करेंगे इंडिया की जो महिला टीम है एशिया कप में उन्होंने जीता है खिताब, साथ ही साथ एशियन गेम्स पर भी होगी हमारी नजर। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात हम करेंगे क्रिकेट की, क्योंकि क्रिकेट में भारतीय महिला टीम ने दिखा दिया है कि भारत की महिला टीम को धुरंधर यूं ही नहीं कहा जाता। और अब जिस तरीके से भारतीय महिला टीम एक के बाद एक आयाम लिख रही है, अपनी जीत के जो खिताबी जो एक किताब लिख रही है, ये काबिले तारीफ है। हम बात कर रहे हैं यहां पर एशिया कप ट्रॉफी की। क्रिकेट के मैदान पर जब इरादे मजबूत होते हैं

0: बल्लेबाजों के बल्ले से रन बरसते हैं और गेंदबाज विपक्षी टीम को टिकने का मौका नहीं देते, तो जीत का रंग और भी गहरा हो जाता है। एशिया कप 2026 के फाइनल में भारतीय महिला टीम ने कुछ ऐसा ही शानदार प्रदर्शन किया। श्रीलंका के खिलाफ फाइनल मुकाबले में भारत ने 72 रनों की बड़ी जीत दर्ज करते हुए 8वीं बार एशिया कप की ट्रॉफी अपने नाम कर ली। टॉस जीतकर भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा की सलामी जोड़ी ने इस फैसले को पूरी तरीके से सही साबित कर दिया। भारत की शुरुआत बेहद आक्रामक रही। स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा ने पहले विकेट के लिए 129 रनों की साझेदारी की, जो महिला T20 एशिया कप के इतिहास में किसी भी विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी रही है। शेफाली वर्मा ने महज 24 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया, जो एशिया कप के इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक रहा। उन्होंने 39 गेंदों में 68 रन बनाए और प्लेयर ऑफ द मैच भी रही। वहीं स्मृति मंधाना ने भी 39 गेंदों में 59 रनों की तेज तरार पारी खेली। अब श्रीलंका के सामने था 184 रनों का बड़ा लक्ष्य, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने श्रीलंकाई बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। क्रांति गौर ने शुरुआती ओवर में ही विकेट लेकर भारत को अच्छी शुरुआत दिलवाई। इसके बाद चमारी अट्टपट्टू और विश्मी गुणारत्रे ने 58 रनों की साझेदारी जरूर की, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने इस साझेदारी को ज्यादा आगे नहीं बढ़ने दिया। इसके बाद दीप्ति शर्मा और श्री चरणी ने श्रीलंका की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। श्री चरणी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट हासिल किए, जबकि दीप्ति शर्मा ने 3 विकेट अपने नाम किए। तो एशिया कप 2026 में भारतीय क्रिकेट टीम ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बड़े मुकाबलों में दबाव झेलना हो या निर्णायक मौके पर दमदार प्रदर्शन करना, टीम इंडिया हर मोर्चे पर तैयार है। स्मृति, शेफाली के बल्ले की चमक, दीप्ति और श्रीचरणी की धारदार गेंदबाजी, पूरी टीम के शानदार खेल ने भारत को दिलवा दिया 8वां एशिया कप का खिताब। और इस खुशी में क्या कह रहे हैं भारतीय टीम के कोच अमोल मजुमदार, आइए सुनते हैं।
1: टूर्नामेंट इज ओवर, वी आर द चैंपियंस, दैट्स गुड इनफ। इट वाज ऑन द बिग बोर्ड दैट इंडिया चैंपियंस ऑफ एशिया कप 2026 एंड दिस टूर्नामेंट इज ओवर, officially over for us. We are happy that we've turned out to be champions. Now we look forward for the Asian Games.
0: तो इसके बाद एशियन कप पर, एशियन चैंपियनशिप और एशियन गेम्स पर भी जरूर यहां पर नजरें हैं भारतीय टीम की, लेकिन एक जो यहां पर सेटबैक रहा वो रहा टीम श्रीलंका के लिए, क्योंकि श्रीलंका की जो टीम है वो लास्ट टाइम चैंपियन थी और श्रीलंका ने मुकाबले में बहुत कोशिश की, लेकिन भारतीय गेंदबाजों के सामने कुछ भी नहीं हो पाया और ये जो मैच है ये श्रीलंका की टीम हार गई। लेकिन श्रीलंका की टीम की जो कैप्टन है चमारी अट्टपट्टू, उन्होंने किस तरीके से बात की बाद में मैच हारने के बाद, आइए सुनते हैं।
2: बेसिकली वी आर नॉट प्लेइंग आवर बेस्ट क्रिकेट टुडे, ऑल थ्री डिपार्टमेंट स्पेशली बॉलिंग इन द पावर प्ले वी आर नॉट एक्सिक्यूट आवर प्लान्स एंड दे आर कमिंग विद गुड प्लान्स अगेंस्ट अस एंड दे एक्सिक्यूट देयर प्लान्स बट वी स्ट्रगल लॉट, स्पेशली द कंडीशन इज रियली गुड फॉर द बैटर्स. They are coming with good positive mindset and they score more runs in power play. So and after Shifu and Smriti got out, we had a little bit good chance. But then we struggled a little bit and we dropped a few catches. And we give more extra runs. So you know this kind of final 180 is not easy to chase. I know that. Extra 30-40 runs. So it's cost us.
0: तो बिल्कुल, जब यहाँ पर कहते हैं कि क्रिकेट जो है वो अनिश्चितताओं का खेल होता है और ऐसे में जब आप इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आपके पास हो, इतना बड़ा खिताब दाव पर हो, तो जरा सी भी चूक जो है ना वो किसी भी खेमे में खलबली मचा सकती है। लेकिन ये खलबली जो मची श्रीलंका में, फायदा मिला इंडिया को। क्रिकेट की ही बात को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं अपने सहयोगी अभिनव के पास।
3: बिल्कुल, नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में रविवार को खेले गए पहले T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। टॉस जीतकर भारत ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया और अफगानिस्तान को 20 ओवर में 8 विकेट पर 156 रन तक सीमित रखा। अफगानिस्तान की शुरुआत बेहद खराब रही और एक समय उसका स्कोर 43 रन पर 5 विकेट था, लेकिन अजमतुल्ला उमरजई ने 44 गेंदों पर नाबाद 64 रन की शानदार पारी खेली, जबकि मोहम्मद नबी ने 33 रन बनाकर टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। भारत की ओर से हर्षदीप सिंह ने 19 रन देकर 3 विकेट लिए, जबकि जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती को एक एक सफलता मिली। 157 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने शुरुआत में संजू सैमसन का विकेट गंवाया, लेकिन श्रोताओं, अभिषेक शर्मा ने तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए

0: अहज 32 गेंदों में 82 रन ठोक दिए। उनकी पारी में 7 चौके और 7 छक्के शामिल रहे। इसके बाद ईशान किशन ने 33 गेंदों पर 42 रन बनाकर पारी को मजबूती दी और भारत ने केवल 13.4 ओवर में 3 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। कप्तान शेर सैयर और तिलक वर्मा ने टीम को जीत तक पहुंचाया। अभिषेक की विस्फोटक बल्लेबाजी और गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन से भारत ने मुकाबले को एक तरफा बना दिया और सीरीज में शानदार शुरुआत की। मैच जीतने के बाद भारतीय स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने कल के मुकाबले और भारतीय बल्लेबाजी पर क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं।
1: So we have been used to playing in such pitches and we know the dimensions of Delhi. It's not a big ground. So there are certain lengths that you have to hit and we were initially given the stats, okay, so these lengths work in this ground and these lengths don't work in this ground. So we stuck to our plans and it worked well. While sitting on top of the dressing room, I was just telling someone that against our team batting lineup, you can't bowl spin. So if you bowl spin against our batting lineup, they are just going to smack left, right and center. We are just so used to playing spinners. And so yeah, one of the best batting lineups we have are top 8 batsmen. Anyone can take on any spinner in this world. So I've personally bowled against them, played against them. I know how hard it is. So yeah, I feel for the spinners. Yeah.
0: अब सीरीज के बाकी दो मैचेस 15 और 17 सितंबर को अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जाएंगे।
2: तो यहाँ पर क्रिकेट की खबरों को अब विराम देते हैं और क्रिकेट के मैदान से निकलकर का अब चलेंगे हम यहाँ पर टेनिस कोर्ट में, जहाँ पर जो मुकाबले हैं यूएस ओपन के वो आ चुके हैं। फाइनल रिपोर्ट के साथ तैयार है मेरे सहयोगी अभिनव।
0: बिल्कुल, यूएस ओपन 2026 के पुरुष एकल फाइनल में जर्मनी के शीर्ष वरीयता प्राप्त अलेक्जेंडर जेवरेव ने अमेरिका के बेन शेल्टन को 4 सेटों के रोमांचक मुकाबले में 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 से हराकर पहली बार यूएस ओपन का खिताब अपने नाम किया। आर्थर एश स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में जेवरेव ने शुरुआत से ही अपनी सर्विस और बेस लाइन खेल के दम पर दबाव बनाए रखा और पहला सेट 6-3 से जीत लिया। दूसरे सेट में शेल्टन ने कड़ी चुनौती दी, लेकिन जेवरेव ने टाई ब्रेक में 7-2 से बाजी मारकर मुकाबले में 2-0 की बढ़त बना ली। हालांकि शेल्टन ने तीसरे सेट में शानदार वापसी करते हुए 5-7 से सेट अपने नाम किया, लेकिन जेवरेव ने निर्णायक चौथे सेट में फिर नियंत्रण हासिल किया और 6-2 से जीत दर्ज कर ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया। यह जेवरेव का दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। इससे पहले उन्होंने इसी साल फ्रेंच ओपन जीता था और विंबलडन के रनर अप रहे थे।
3: Very first thing I want to start off with Ben. Ben, you're an incredible player, incredible person. This was your first Grand Slam final, but I already told you you're going to be back here many, many more times. And if I would have to bet all my money on it, I would bet that you would lift this trophy one day. Then I want to thank my team. We went 30 years without winning a Grand Slam title, and now we won 2 in a span of 3 months. So I think God has seen how hard we worked, how much we suffered, how much pain we went through. I think 2026 is the outcome of all the years that happened before. So thank you guys. See you guys.
0: 6 साल पहले 2020 में यूएस ओपन फाइनल में मिली हार के बाद जेवरेव के लिए ये जीत खास तौर पर यादगार रही। वहीं पहली बार ग्रैंड स्लैम फाइनल खेल रहे शेल्टन का अभियान भी ऐतिहासिक रहा।
4: To the fans who showed up today, the fans at home, the people who've been here all week, the people who stayed till 4 in the morning. You guys drove me. You guys brought me to the place that I'm here today, the position that I want to be in the finals of these tournaments. I'm just getting started and I'll be back here again. Thank you so much.
0: महिला एकल में कजाकिस्तान की एलेना रायवकीना ने दो बार की गत चैंपियन आरेना सबालेंका को 6-4, 5-7, 6-2 से हराकर अपना पहला यूएस ओपन खिताब जीता। इस तरह 2026 यूएस ओपन में पुरुष और महिला दोनों एकल वर्गों को नए चैंपियन मिले और टूर्नामेंट ने टेनिस में नई पीढ़ी के उभार की तस्वीर पेश की।

0: तो अब टेनिस कोर्ट से निकल के चलेंगे सीधा आर्चरी के मैदान में, जहां पर जो निशाने हैं भारत के फेवर में आए हैं, और आर्चरी टीम ने कर दिया है एक बहुत बड़ा उलटफेर, कारनामा किया है यहां पर। धीरज ने क्या है पूरी रिपोर्ट, चलते हैं अभिनव के पास।
1: धीरज बॉम देवरा ने कविता मेक्सिको के साल्टिलो में आयोजित 2026 आर्चरी वर्ल्ड कप फाइनल में इतिहास रचते हुए पुरुष रेकर व्यक्तिगत वर्ग का स्वर्ण पदक जीत लिया। भारत के लिए यह जीत इसलिए बेहद खास रही क्योंकि धीरज इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में व्यक्तिगत खिताब जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष रिकर्व तीरंदाज बन गए। फाइनल में उनका सामना जापान के जूनिया नाकानिशी से हुआ, जहां दोनों के बीच मुकाबला बेहद रोमांचक रहा और 5 सेट के बाद स्कोर 5-5 से बराबर था। निर्णायक शूट ऑफ में धीरज ने शानदार दबाव प्रबंधन दिखाते हुए

0: 10 अंक का निशाना लगाया, जबकि नाकानिशी 9 अंक ही हासिल कर सके और भारतीय तीरंदाज ने मुकाबला 6-5 से अपने नाम कर लिया।
1: Oh, that's a very, very good shoot-off arrow from Dheeraj Bommadevara, despite the shakiness. And that is into the nine. And Dheeraj Bommadevara from India has taken the title of the World Cup final in 2026. And that is an astonishing win for the man who is known as a giant killer.
0: इससे पहले धीरज ने क्वार्टर फाइनल में तुर्की के बर्किम टूमेर को 7-1 और सेमीफाइनल में फ्रांस के जीन चार्ल्स वलाडोंट को 7-1 से हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। धीरज की ये उपलब्धि भारतीय तीरंदाजी के लिए ऐतिहासिक है। 2023 और 2024 के वर्ल्ड कप फाइनल में पदक से चूकने के बाद उन्होंने साल्टिलो में अपने शानदार प्रदर्शन से आखिरकार सबसे बड़ा खिताब हासिल किया। वह 2026 वर्ल्ड कप फाइनल में भारत के एकमात्र प्रतिनिधि थे और सीजन के तीसरे चरण में अंतालिया में व्यक्तिगत रिकर्व स्वर्ण जीतकर उन्होंने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। साल्टिलो में उनकी निरंतरता, निर्णायक क्षणों में सटीक निशाना और शूट ऑफ में 10 अंक का परफेक्ट शॉट भारतीय तीरंदाजी की बढ़ती ताकत का शानदार उदाहरण बना।
2: तो अब एशियन गेम्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि एशियन गेम्स का काउंटडाउन लगातार जारी है और सीरीज में आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे खेलों की जो रोमांच से भरपूर है। चलिए सुनते हैं ये विस्तृत जानकारी। एशियन गेम्स की तैयारी अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही है और जैसे जैसे जापान के आइची नागोया में होने वाले खेलों की तारीख नजदीक आ रही है, भारतीय खिलाड़ियों से उम्मीदें भी बढ़ती जा रही है। एथलेटिक्स के ट्रैक से लेकर समुद्र की लहरों तक और मैदान पर तेज रफ्तार रग्बी मुकाबलों तक एशियन गेम्स हमें खेलों की एक ऐसी दुनिया दिखाते हैं जहां हर सेकंड, हर मीटर और हर पॉइंट मायने रखता है। आज हमारी एशियन गेम्स सीरीज में बात होगी तीन अलग अलग लेकिन बेहद रोमांचक खेलों की, एथलेटिक्स, सेलिंग और रग्बी सेवन एस की। सबसे पहले बात उस खेल की जिसे अक्सर मदर ऑफ ऑल स्पोर्ट्स कहा जाता है, एथलेटिक्स। एथलेटिक्स एशियन गेम्स में भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण खेलों में से एक रहा है। हांगझोउ 2023 में भारतीय एथलीटों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 29 पदक जीते थे, जिसमें 6 स्वर्ण, 14 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल थे। कुल पदकों के लिहाज से एथलेटिक्स भारत का सबसे सफल खेल रहा था। भारतीय टीम अब एक बार फिर बड़ी उम्मीदों के साथ मैदान में उतरेगी। इस टीम में कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के पदक विजेता गुलवीर सिंह, मुरली श्रीशंकर और तेजस्विन शंकर जैसे नाम शामिल हैं। गुलवीर सिंह ने ग्लासगो में 10,000 मीटर में रजत पदक और 5,000 मीटर में कांस्य पदक जीता था, जबकि मुरली श्रीशंकर ने लॉन्ग जंप में रजत और तेजस्विन शंकर ने डेकेथलॉन में कांस्य पदक अपने नाम किया था। वहीं अविनाश सांबले, तजिंदर पाल सिंह तूर और पारुल चौधरी जैसे एशियन गेम्स के मौजूदा चैंपियन भी अपने खिताब का बचाव करने उतरेंगे। शॉटपुट में भारत की सबसे बड़ी उम्मीदों में से एक हैं तजिंदर पाल सिंह तूर। तूर दो बार के एशियन गेम्स चैंपियन ही नहीं बल्कि 2018 और 2023 दोनों एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। हांगझोउ में उन्होंने 20.36 मीटर के थ्रो के साथ खिताब अपने नाम किया था। अब आइची नागोया में तूर के सामने इतिहास बनाने का मौका है, लगातार तीसरी बार एशियन गेम्स का शॉटपुट गोल्ड जीतने का।
3: भगवान की दया बनी रहे इसी तरह से जैसे पहले से बनी आ रही।

0: अभी हमारे भाई सुन रहे थे ऋषिपाल नागर की आवाज़ में प्यारा सा भजन। और देखिए आगे बढ़ते हैं, और हमारे पास एक और टॉपिक है, प्रधानमंत्री धन धान्य योजना।
1: बिल्कुल सही।
0: और इस योजना के माध्यम से जो हमारे भाई हैं वो अपनी, कहते हैं ना कि प्रधानमंत्री धन धान्य योजना कृषि योजना, देश के 100 कम प्रदर्शन वाले जिलों, कृषि जिलों में कृषि उत्पादकता बढ़ाने और किसानों की आय को सुधारने के लिए शुरू की गई योजना है। और इस योजना का आरंभ 16 जुलाई 2025 को मंजूरी दी गई थी और 11 अक्टूबर 2025 को लॉन्च किया गया था।
1: बिल्कुल सही कहा। और इसका उद्देश्य है देश के 100 कम प्रदर्शन करने वाले क्षेत्र, यानी कि कृषि पिछड़े हुए क्षेत्र को आगे लेकर आना, जिलों
0: जी
1: में किसानों की उत्पादकता, सिंचाई, भंडारण और ऋण सुविधा में सुधार करना है। और इसी अवधि की बात करें तो ये योजना 2025-26 से लेकर 2030-31 तक, यानी कि 6 वर्षों के लिए लागू की गई है। और
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल, और साथ ही साथ अगर हम बजट की बात करें तो इस पर प्रतिवर्ष 24,000 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है। और समन्वय की बात करें तो इसमें 11 मंत्रालयों की 36 मौजूदा योजनाओं को एक साथ जोड़ा गया है।
0: बिल्कुल। और सब्सिडी की अगर बात करें तो सस्ते बीज और उर्वरक पर भी 50% से लेकर 80% तक की भारी छूट दी जाती है। और सिंचन उपकरण जैसे ड्रिप सिंचाई या टपक सिंचाई जैसे आधुनिक सिंचाई प्रणालियों को खरीदी पर बड़ी सब्सिडी मिलती है, जिसमें 30% से लेकर 50% तक पानी की बचत होती है।
1: बिल्कुल। और भी अगर बिंदुओं पे बात करें, जैसे कि जिला अधिकारियों द्वारा कृषि विश्वविद्यालयों और नीति आयोग के सहयोग से जिला स्तरीय योजनाएं तैयार की जाएंगी, और साथ ही साथ किसान ऐप और जिला रैंकिंग प्रणाली, पारदर्शिता और डिजिटल डैशबोर्ड द्वारा पहुंच तथा जो जवाबदेही है जो सुनिश्चित कर पाएंगे।
0: बिल्कुल। और देखिए ऋण की अगर बात करें तो ऋण भी बहुत ही आसानी से मुहैया हो जाता है किसानों को, साहूकारों के चंगुल से बचने के लिए। जो हमारी सरकार ने बहुत ही अच्छी इस योजना का को किसानों तक पहुंचाया है कि वो आसान तरीके से ऋण प्राप्त कर सकें, और बीज, कीटनाशक दवाएं और खाद जैसी दैनिक जरूरतों के लिए क्रेडिट का, किसान क्रेडिट कार्ड योजना है एक, उसके माध्यम से 50,000 रुपये से लेकर 1,00,000 रुपये तक का ऋण 4% से 7% तक की रियायती ब्याज दर पर मिलता है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और साथ ही साथ जो योजना है, 100 जिलों की पहचान के आधार पर इसको निर्धारित किया गया, जैसे कि निम्न उत्पादकता होगी और कम फसल जिसका संघनन होगा, और यहाँ पर कम ऋण भुगतान भी होगा।
0: बिल्कुल। और जैसे लंबी लॉन्ग टर्म्स वाला ब्याज भी उपलब्ध है, जैसे ट्रैक्टर खरीदना, नलकूपों, या आपको समरसीबल लगवाना है, निजी स्तर पर छोटे कोल्ड स्टोरेज या गोदाम बनवाने हैं, जैसे पूंजीपति संपत्तियों के निर्माण के लिए 1,00,000।

0: लाख से 10 लाख रुपए तक का लोन आसान किस्तों पर मिलता है।
1: बिल्कुल, और पंचायत और ब्लॉक स्तर पर भी भंडारण की सुविधा उपलब्ध कराना भी रहेगा इसके अंतर्गत, और बेहतर सिंचाई और दीर्घकालीन ऋण उपलब्धता और फसल विविधीकरण और सतत कृषि को बढ़ावा देना रहेगा।
0: बिल्कुल, अब आप इतनी सारी बातें अगर इस योजना से मिलती है तो हमारा तो यही सुझाव है कि हमारे भाइयों को इस योजना से जुड़ना चाहिए और लाभ लेना चाहिए, क्योंकि हमारी सरकार ने इतनी सारी योजनाएं, किसान क्रेडिट कार्ड, किसान बीमा योजना, किसान धन धान्य योजना, और ये क्या नाम, आप हमारे जो किसान भाइयों को 6,000 रुपये प्रतिवर्ष दिए जाते हैं वो भी एक
1: बिल्कुल, और इस तरीके से जो हमारा किसान है उसकी उन्नति के लिए काफी सारी जो सुविधाएं हैं हमारी सरकार देती है, और काफी सारी योजनाएं लगातार भारत
0: बिल्कुल,
1: सरकार द्वारा चलाई जा रही है।
0: इनका फायदा उठाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए और अपनी खेती को अच्छी तरह से करना चाहिए और अपनी आय को दुगना करना चाहिए।
1: बिल्कुल सही कहा।
0: तो अब आगे हम भी बढ़ते हैं और सुनवाते हैं ऋषिपाल
1: नागर का ये अगला गीत।
0: आते हैं हम यशवीर नागर, और यशवीर नागर रछौती की आवाज़ में।

0: अभी हमारे भाई सुन रहे थे यशवीर नागर रचौती की आवाज़ में, ये बहुत ही प्यारा सा रागनी, और इस किस्सा था मेनका और विश्वामित्र का। और इसी
1: और इसी के साथ ग्राम संसार जो कार्यक्रम है अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है।
0: जी
1: प्रस्तुत इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है तुषार पराशर, संयोजक शिवनंदन लाल, मुझे मंजीत कौर और मेरी सहयोगी वंदना को दीजिए अनुमति। राम
0: राम राम।
1: राम।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आइए श्रोताओं, आप सुनते हैं हिंदी समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। ब्रिक्स नेताओं ने कहा है कि ऊर्जा सुरक्षा, सामाजिक तथा आर्थिक विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा और सभी देशों के कल्याण की महत्वपूर्ण नींव है। नई दिल्ली में 2 दिन के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान सदस्य देशों ने ऊर्जा बाजारों में स्थिरता सुनिश्चित करने और विभिन्न स्रोतों के जरिए ऊर्जा का निर्बाध प्रवाह बनाए रखने तथा महत्वपूर्ण ऊर्जा प्रतिष्ठान को सुरक्षित रखकर ऊर्जा सुरक्षा की जरूरत पर बल दिया। सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आगाह किया कि प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों को आर्थिक या राजनीतिक दबाव के साधन के रूप में इस्तेमाल करने से प्रगति में बाधा आ सकती है। अमेरिका के एक विश्लेषक ने 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को बहुत सफल बताया है। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र अलग अलग विचारों वाले देशों के बीच आम सहमति बनाने की भारत की क्षमता को दर्शाता है। अटलांटिक काउंसिल में दक्षिण एशिया मामलों के वरिष्ठ फेलो माइकल कुगेलमैन ने कहा कि ये घोषणा पत्र भारत की बढ़ती वैश्विक समन्वय क्षमता और ब्रिक्स की बढ़ती स्वीकार्यता को दर्शाता है। सरकार ने कहा है कि वर्ष 2025 में उत्तरी सीमाओं के सामने चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की तैनाती में उल्लेखनीय कमी देखी गई है। रक्षा मंत्रालय ने वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 में कहा है कि भारत और चीन के बीच राजनीतिक, राजनयिक और सैन्य स्तर पर द्विपक्षीय बातचीत से उत्तरी सीमाओं पर स्थिरता आई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि सेना के अथक प्रयासों के कारण जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में वियतनाम के विदेश मंत्री ले हुआई ट्रुंग के साथ भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में दोनों देशों के बीच राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने तथा भारत में निर्मित रक्षा उपकरणों की आपूर्ति बढ़ाने पर चर्चा हुई। वियतनाम भारत की लुक ईस्ट, आसियान, हिंद प्रशांत महासागर और ग्लोबल साउथ नीतियों में महत्वपूर्ण साझेदार है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग

0: के साथ साथ यूक्रेन की स्थिति पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को नई दिल्ली के यशोभूमि में पांचवें सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे। इसमें 40 से अधिक देशों के 600 से अधिक प्रदर्शक, 300 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और प्रतिभागी शामिल होंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत की संस्कृति और साहित्य कमल की तरह है, जिसकी हर क्षेत्रीय भाषा उसकी एक पंखुड़ी को दिखाती है। श्री शाह ने यह बात आज नवी मुंबई में दो दिन के हिंदी दिवस और छठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर कही।
1: भारतीय साहित्य एक विकसित सतदल कमल की तरह है, जिसकी प्रत्येक पंखुड़ी हमारी प्रादेशिक भाषाएं किसी भी एक पंखुड़ी को नष्ट होने से कमल का सौंदर्य नष्ट हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि प्रादेशिक भाषाएं रानी बनकर प्रांत में विराजमान रहे और इन सभी भाषाओं के बीच में हिंदी मध्यमणि बनकर इस सतदल कमल का सौंदर्य बढ़ाती रहे।
0: श्री शाह ने कहा कि सभी क्षेत्रीय भाषाओं को पूरा सम्मान और गरिमा देते हुए हिंदी को केंद्रीय भूमिका निभानी चाहिए।
1: भाषा किसी भी समाज की स्मृति होती है, उसका आत्मबोध होती है। हिंदी ने इस विविधता के बीच संवाद, संपर्क और समन्वय की भाषा के रूप में देश के विभिन्न वर्गों और समुदायों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी का विकास भी तभी सार्थक है जब सभी भारतीय भाषाओं के सम्मान, संरक्षण और संवर्धन के साथ आगे बढ़े।
0: मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दुहोमा ने मिजो संस्कृति को संरक्षित रखते हुए हिंदी सीखने का आह्वान किया है। उन्होंने आज आइजोल में हिंदी दिवस समारोह में ये बात कही। मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में लंबे समय से चल रहे विरोध प्रदर्शनों और अशांति पर चिंता व्यक्त की है। परिषद ने कहा कि प्रदर्शनों को अब 100 दिन पूरे हो चुके हैं, जिससे अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है और व्यापक क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। परिषद ने चेतावनी दी कि सार्थक बातचीत में किसी भी प्रकार की और देरी से जनता में असंतोष, अविश्वास और अस्थिरता बढ़ सकती है। देशभर में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है, जो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए श्रोताओं, चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर। कार्यक्रम का नाम कृषि जगत।

0: कृषि जगत सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को
1: राम
0: राम
1: राम।
0: राम। मंजीत बहन, हम फिर से उपस्थित हैं अपना कार्यक्रम लेके, और हम अपने भाइयों को एक बहुत ही अच्छी जानकारी दिलवाएंगे और साथ साथ ही कुछ उनको मनोरंजन भी करवाएंगे। तो सबसे पहले आज जानकारी दिलवाएंगे, लेकिन उससे पहले एक अपने भाइयों से बात करते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में।
1: बिल्कुल
0: कहते हैं ना कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो हमारी सरकार तय करती है हमारी फसलों का, सरकार ने 2026-27 में जो हमारा खरीफ की फसलें हैं उनका न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की है, ताकि किसानों को उनकी उपज और लाभकारी मूल्य मिल सके। पिछले वर्ष की तुलना में MSP में सबसे अधिक वृद्धि सूरजमुखी के बीज यानी कि ₹622 प्रति कुंटल, उसके बाद कपास पर ₹557 प्रति कुंटल, और उसके बाद तिल पर ₹500 प्रति कुंटल बढ़ाई गई है।
1: बिल्कुल
0: और इसमें सभी भुगतानों की कहीं की गई लागतें शामिल हैं, जैसे कि किराए पर लिए गए मानव श्रम, बैल श्रम, मशीन श्रम, और पट्टे पर ली गई भूमि के लिए भुगतान किया गया किराया, बीज, उर्वरक,

0: खाद और कच्चे तेल के उपयोग में होने वाले खर्च, सिंचाई शुल्क, औजारों और कृषि भवनों पर मूल्यह्रास, कार्यशील पूंजी पर ब्याज, पंप सेट का संचालन के लिए डीजल, बिजली आदि विविध खर्चों पर पारिवारिक श्रम का अनुमानित मूल्य, ये सब जुड़ता है।
1: बिल्कुल आपने सही कहा, और क्योंकि ये किसान के लिए बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि न्यूनतम समर्थन जो मूल्य है और या फिर खरीद मूल्य है, जो हमारी भारत सरकार है वो बहुत सारे कड़े कदम और नियम बनाती है ताकि हमारे किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो सके और
0: बिल्कुल
1: फ़ायदा पहुंच सके।
0: बिल्कुल, क्योंकि बाजार में कीमतें गिरने पर किसानों का मूल्य गिर जाता है, उनकी कीमतों का, उनकी फसलों का। तो हमारी जो सरकार है एक न्यूनतम मूल्य तय कर देती कि इस मूल्य में तो आपको आपकी फसल बिकेगी ही बिकेगी। वो एक अलग चीज़ है कि हमारे किसान भाई उससे अधिक की मूल्य में बेच दें,
1: बिल्कुल
0: क्योंकि जगह जगह मंडी है, ऑनलाइन है, ई मंडी से जुड़े हुए हमारे किसान भाई बहन, तो जहाँ उनको ज़्यादा पैसा मिलेगा वो वहीं अपनी फसल बेचेंगे।
1: बिल्कुल। और MSP का जो निर्धारण है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य के स्तर और अन्य गैर मूल्य उपायों के संबंध में किया जाता है, तैयार किया जाता है आयोग किसी भी वस्तु या वस्तुओं के समूह की अर्थव्यवस्था की संपूर्ण संरचना के व्यापक अवलोकन के अलावा निम्नलिखित कारणों पर भी ध्यान देती है, यानी कि उत्पादन लागत होगी, इनपुट कीमतों में परिवर्तन हो गया, इनपुट आउटपुट मूल्य जो समता है उस पर देखा जाता है, बाजार कीमतों के रुझान और मांग आपूर्ति, अंतर फसल जो मूल्य है समता उसको देखा जाता है, औद्योगिक लागत जो संरचना है उस पर भी प्रभाव डालता है, और जीवन यापन की जो लागत है उस पर भी प्रभाव डालता है, सामान्य मूल्य स्तर को देखा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य की जो स्थिति है उसको आंका जाता है, किसानों को भुगतान की गई कीमत और किसानों द्वारा प्राप्त कीमत में भी समानता देखी जाती है।
0: बिल्कुल, और कुल इसका निचोड़ के जो भाव आता है वो है किसानों को आर्थिक नुकसान से बचाना।
1: बिल्कुल
0: और इसने सरकार जो वर्तमान में 23 प्रमुख फसलों को MSP तय कर चुकी है, जो कि हमारे किसान भाई YouTube पे या आप किस कृषि मंत्रालय में, कृषि विभाग में, किसी में भी आप कहते हैं ना, उस पे
1: जानकारी
0: जाकर
1: प्राप्त कर
0: जानकार प्राप्त कर सकते हैं। ब्लॉक में जाके भी आप इस चीज़ों का वो कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
1: बिल्कुल
0: तो ये तो थी जानकारी, और अब एक और जानकारी दिलवाते हैं। तोरिया और अगेती तिलहनी फसलों की बुआई, डॉक्टर YS सिवे, और इनसे बातचीत कर रहे हैं शिवनंदन लाल। और डॉक्टर YS सिवे जो सहायक महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली से हैं, तो आइए सुनते हैं इनसे ये जानकारी।
2: किसान भाइयों नमस्कार। खेती में अगर हम बदलाव करते हैं तो निश्चित तौर पे आपकी मृदा का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और आपको उत्पादन भी अच्छा मिलता है। और आज हम बात करेंगे कि तोरिया और अगेती तिलहनी फसलों की बिजाई कैसे की जाए, कब की जाए और इससे अधिक उत्पादन कैसे लिया जाए, इसकी विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर YS सिवे जी, जो कि सहायक महानिदेशक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में। डॉक्टर साहब कार्यक्रम में आपका स्वागत है। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले तो जानना चाहूंगा कि तोरिया और तिलहनी जो फसलें हैं, जैसे तोरिया और सरसों की बात करते हैं, दोनों में अंतर क्या है?
3: हाँ देखिए, दोनों में अंतर ये है कि तोरिया जो है कम अवधि की फसल होती है और सरसों जो है समय ज्यादा लेती है,
2: जी
3: और ये एक विंडो पीरियड होता है उसमें हम तोरिया को उगा सकते हैं। खरीफ की बहुत सी फसलें कट गई हैं,
2: जी
3: कटने के बाद में खेत खाली हो जाएंगे, जैसे ज्वार है या बाजरा है या मूंग है, उड़द है, ये जल्दी पक जाती हैं। और जो हम रबी की फसल की बुआई करते हैं, जैसे गेहूं वगैरह है, जौ है, जई है, तो उससे पहले इसको लिया जा सकता है तोरिया को। तोरिया जो है कम अवधि की एक हमारी तेल वाली फसल है, सरसों जो है थोड़ा ज्यादा लंबे समय तक पकती है, तो इस वजह से जो है इस समय प्रीफर करते हैं तोरिया लगाने को। बहुत से किसान जो है जई लगाते हैं, जौ लगाते हैं, इवन गेहूं भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये कम समय में कम अवधि में अच्छी पैदावार देती है, तो इस वजह से जो है तोरिया को लगाने का प्रिफरेंस इस महीने में बहनों और भाइयों को करनी चाहिए।
2: तो डॉक्टर साहब जो तोरिया है और सरसों है, दोनों के क्या तेल में भी कुछ फर्क होता है?
3: हाँ थोड़ा बहुत अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं है, तेल दोनों की तेल लगभग उतनी मात्रा होती है, लेकिन थोड़ा तेल में अंतर है, क्वालिटी थोड़ी डिफर हो सकती है। और विशेषकर क्योंकि आजकल क्वालिटी के लिए सरसों की किस्में अलग आ गई हैं,
2: जी

0: में हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली ने निकाली है, क्योंकि जिसमें थोड़ी झल ज्यादा मारती है और जिसमें कुछ कम झल मारती है, दोनों में थोड़ा क्वालिटी का अंतर होता है, लेकिन फिर भी तेल इनका दोनों का खाने के लिए अच्छा होता है मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए, ऐसा अनुसंधानों द्वारा सिद्ध हो चुका है कि सरसों का तेल हो या तोरिया का तेल हो, दोनों खाने के लिए बहुत अच्छे होते हैं।
1: तो डॉक्टर साहब, अगर हम तोरिया की बात करें, इसकी बिजाई का सही समय?
0: जैसा खेत खाली होते चले जाते हैं वैसे इसकी जो है 15 सितंबर के बाद में हम इसको बोना शुरू कर देते हैं तोरिया को, और 15 अक्टूबर तक हम इसको लगा सकते हैं। ये बढ़िया समय है।
1: तोरिया की उन्नत किस्में कौन
0: हाँ,
1: कौन सी?
0: तोरिया की उन्नत किस्में वैसे तो क्षेत्र अनुसार अलग अलग है, लेकिन अभी जो एक सबसे प्रमुख किस्म है वो TS-38 करके है, जो आसाम से निकाली गई है। इसकी पैदावार बहुत अच्छी मानी गई है। 22-23 में किस्म आई है, और इससे पहले भी बहुत किस्में निकाली गई हैं। उनमें विशेषकर है पीताम्बरी 13 है, सुश्री है, TL-17 है, पंत हिल तोरिया 1 है, पंत तोरिया 508 है, राज विजय तोरिया 1 है, तपस्वरी है, त्रिपुरा तोरिया 1 है, और RSPT 6 है, आजाद चेतना जिसको TKM-14-2 के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत सारी किस्में हैं अपने क्षेत्र के अनुसार जो है अनुमोदित की गई हैं। विशेषकर जैसे मैं बताना चाहूँगा उत्तर प्रदेश के लिए जो है तापेश्वरी बहुत अच्छी है
1: जी।
0: 2018 में
1: क्या खूबी है इसकी?
0: इसकी खूबी ये है कि इसकी जो है अच्छी आती है और एक साथ जो है सिंक्रोनाइज मैच्योरिटी होती है, ये इसकी खूबी है। ज़्यादातर जो है हमारी तोरिया है इसमें सिंक्रोनाइज मैच्योरिटी होती है, इसमें जो है एक साथ पक जाती है और उसको काट के और फिर जो है हम आगे दूसरी फसल लगा सकते हैं। इसके साथ साथ जो है हम उत्तर प्रदेश के लिए आजाद चेतना करके जिसे ये बताइए 2020 में निकाली गई है लेटेस्ट किस्में, और ये जो है ये भी कानपुर की वैरायटी है और बहुत अच्छी मानी गई है तोरिया के लिए। और ऐसी उत्तराखंड के लिए जो है वो तेरा बहुत पुरानी वैरायटी है, लेकिन ये पंतिल तोरिया वन करके पंत तोरिया 508 ये दोनों उत्तराखंड के लिए हैं। तो ये अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग किस्में हैं, उन्हीं को चुनना चाहिए, क्योंकि कोई भी किस्म जो निकाली जाती है वो जलवायु मिट्टी को देखकर निकाली जाती है। अपने
1: ये सारी किस्में डॉक्टर साहब इस समय लगाने का सही समय है?
0: सही समय चल रहा है बिल्कुल इनका, जैसे बताया 15 सितंबर से लगाने का सही समय होता है, तो इनको लगा सकते हैं तोरिया को।
1: तो डॉक्टर साहब, जैसे हम बात अगर अगेती सरसों की करें
0: जी,
1: तो उसकी उन्नत किस्में कौन कौन?
0: ये अगेती सरसों में विशेषकर जो है पूसा मस्टर्ड जो हमारी 25 है ये बहुत अच्छी मानी गई है, लगभग 120 दिन में पक कर तैयार हो जाती है 120 से, ये बहुत अच्छी किस्म है और पैदावार भी अच्छी देती है। यदि किसानों को दो चुननी हो
1: जी,
0: अगेती सरसों लगानी है और तोरिया लगानी है और उनके पास में थोड़ा ड्यूरेशन है, तो वो जो है पूसा मस्टर्ड 25 को लगाएं। इसका बीज भी उपलब्ध है हमारे यहाँ सीड प्रोडक्शन यूनिट में, NSC में भी है, पूसा संस्थान में भी है, तो इसको लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा, इसकी पैदावार थोड़ी ज़्यादा मिलेगी इससे।
1: लगभग कितने में हो जाते हैं
0: इसकी जो है, जैसे हमारी तोरिया की जो है लगभग 1 टन के आसपास आती है, इसकी जो 1.2 टन 1.3 टन आ जाती है।
1: दाना भी इसका
0: दाना भी थोड़ा मोटा होता है, तो इसका मतलब जो है 1.5 गुना तक यील्ड मिलती है इसकी अपेक्षा। दूसरा जो है इसका जो हमारी अवशेष बचता है उसकी भी आजकल इकोनॉमिक वैल्यू है।
1: जी जी जी
0: क्योंकि वो भट्टे वगैरह में वैसे यूज कर लेते हैं या किसी, दाना तो मिलेगा ही लेकिन इसका अवशेष जो भी यूज हो जाता है।
1: तो जो अगेती सरसों की बिजाई का समय कब शुरू?
0: हाँ,
1: हो जाएगा?
0: अगेती सरसों का बिजाई का समय जो है वो लगभग 20 सितंबर से शुरू हो जाता है। 20 सितंबर के बाद जो है अगेती सरसों लगा सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि लगाते समय जो है ये सुनिश्चित कर लें कि खेत में नमी होनी चाहिए, तभी जो इसकी बिजाई करनी चाहिए।
1: तो डॉक्टर साहब, बरानी क्षेत्रों में क्या इसकी खेती की जा सकती
0: है? हाँ, बरानी क्षेत्रों में तोरिया की जो है अगेती सरसों की खेती की जा सकती है। क्यों की जा सकती है? क्योंकि अभी बारिश हुई है, जुताई पहले कर लेते हैं तो खाली खेत रहता है, तो जो रेनफॉल की मॉइस्चर है उसी पर इसका जर्मिनेशन हो जाता है और अच्छी पैदावार होती है।
1: कहने का मतलब जो गेहूं वगैरह की बिजाई करते हैं जब किसान भाई, उसकी खेत की ज्यादा तैयारी करते हैं तोरिया,
0: ज्यादा जुताई की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे मतलब खेत पट है बिल्कुल एकदम बारिश हो गई है तो एक जुताई करके फिर सीधी बिजाई कर सकते हैं, इवन मतलब सीधी बिजाई भी कर सकते हैं, लाइनों में लगाएं इसको
1: जी। तो
0: खेत
1: के बीज की मात्रा
0: कितनी? बीज की मात्रा बहुत कम जरूरत पड़ती है, 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से बीज की जरूरत पड़ती है, चाहे वो हमारा तोरिया चाहे अगेती सरसों दोनों के लिए।
1: तोरियां

0: तो हमारे किसान भाई खाली तोरियां लगाते हैं, लेकिन कुछ हमारे किसान भाई जो सरसों लगाते हैं उसके साथ कुछ मिक्स खेती भी करते
1: हाँ,
0: रहे हैं।
1: देखिए आपने सही सवाल पूछा है। जब हम मेन सरसों लगाएंगे
0: जी
1: तो उस समय अक्टूबर के महीने में लगाते हैं।
0: जी
1: सरसों का सही समय लगाने का जो होता है, जो हम सही समय वाली बता रहे हैं,
0: जी
1: तो उसमें जो है सरसों के साथ में सरसों प्लस चना, सरसों प्लस मटर, सरसों प्लस जो है हम आलू, ये सारी सरसों प्लस गन्ने जो अक्टूबर में प्लांटिंग करते हैं गन्ने की, तो उसमें जो है हम सरसों लगाते हैं। तो ये सारी चीजें इंटरक्रॉपिंग के रूप में हम खेती कर सकते हैं और इसके दो फायदे होते हैं।
0: जी
1: एक तो हमारी जो है मेन फसल जो भी हम लगा रहे हैं, चाहे हम मस्टर्ड बेस लगाएंगे तो आलू की दो लाइन हम बीच में लगा देंगे, हमारी उतनी आलू की पैदावार भी मिलेगी। और हमारी जो है फिर चना है, मटर है, मसूर है, इनको लगाएंगे, इनकी पैदावार भी मिलेगी। और विशेषकर बरानी क्षेत्रों में तो हमको इंटरक्रॉपिंग करनी चाहिए, हमको जो है मिक्स क्रॉपिंग नहीं करनी चाहिए, इंटरक्रॉपिंग करनी चाहिए, लाइनों में लगाना चाहिए,
0: जी
1: ताकि जो है हमारा पॉपुलेशन भी मेंटेन रहे। और क्योंकि ये फैलने वाली है और कुछ जो है सेड लविंग क्रॉप है हमारी, जो सेड में भी थोड़ी बहुत हो जाती है, जैसे विशेषकर चना है, मटर है, उनको ज़्यादा बहुत ज़्यादा सेड का इफेक्ट, ये बल्कि अच्छा माना जाता है संयोग कि हमारा जो है दो दाल वाली और तेल वाली फसल का यदि हम सह फसली खेती करते हैं तो हमारा एश्योर्ड हो जाता है कि हमारा पर यूनिट के हिसाब से प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी और इनकम बढ़ जाता
0: और मृदा
1: है,
0: स्वास्थ्य भी
1: मृदा
0: अच्छा
1: स्वास्थ्य
0: है।
1: भी बना रहता है क्योंकि उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है हमारी दो दाल वाली फसलों में, तो इस चीज
0: तो
1: में।
0: डॉक्टर साहब, इनका अनुपात क्या रखना
1: हाँ,
0: चाहिए?
1: अनुपात देखिए, सरसों की एक लाइन लगाई, फिर जो है हम तीन लाइन जो है चने की लगा सकते हैं, मटर की लगा सकते हैं, मसूर की लगा सकते हैं और गेहूं की लगा सकते हैं, फिर एक लाइन जो है हम अर्थात जो है 1:3 रेशियो के हिसाब से हमको लगाना चाहिए। ऐसी जो आलू की हम दो लाइनें लगानी चाहिए, एक सरसों लगा दी फिर दो लाइनें आलू की, उसके बाद जो फिर एक सरसों की, तो क्रॉप के अनुसार जो गन्ने के अंदर जो है हमको जो है एक ही लाइन काफी होती है, जैसे
0: जी
1: गन्ना हमने प्लांट किया तो
0: जी
1: एक ही लाइन बहुत होती है।
0: क्योंकि गन्ने की तो बिजाई थोड़े
1: हाँ
0: जब करते हैं,
1: हाँ
0: जैसे
1: तो वो
0: शरदकालीन बिजाई का समय चल रहा है,
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल,
0: उसमें बिजाई करेंगे, और जब तक गन्ना उगेगा तब तो सरसों
1: हाँ
0: तो।
1: सरसों अच्छी हो जाएगी। शरदकालीन गन्ने में जो है मस्टर्ड बहुत अच्छी होती है
0: तो डॉक्टर
1: सरसों की।
0: साहब, गन्ना और सरसों का तब भी महत्व था और
1: आज
0: आज भी
1: आज भी
0: महत्व।
1: आज भी आज और बढ़ गया है,
0: जी
1: आज यूं बढ़ गया क्योंकि हमारी तेल वाली जो तेल का उत्पादन हमको बढ़ाना है
0: जी
1: और तेल हम आयात कर रहे हैं, तो उसके लिए जो है हमको ये सबसे अच्छी चीज है कि हम क्यों ना जो अपने जो क्षेत्र में जो गन्ना लगाते हैं वहां पे जो है सरसों की खेती करें, ताकि हमारी आमदनी बढ़ जाए और हमारे साथ साथ जो है आयात का जो निर्भरता है उस पर कम हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि इसमें कुछ खर्चा भी नहीं आता है, तो इस हिसाब से जो है शुगर केन प्लस मस्टर्ड की बहुत बढ़िया इंटरक्रॉपिंग है।
0: तो डॉक्टर साहब, जैसे हम बात करें आपने के सरसों के उत्पादन को बढ़ाना है,
1: हाँ
0: तो इसको बढ़ाने के लिए सरकार भी कुछ प्रयास कर
1: हाँ
0: रही है।
1: सरकार भी प्रयास कर रही है, सरकार जो है मतलब ऑल सीड मिशन चला रखा है, उस गवर्नमेंट जो है जो हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उसके माध्यम से जो है सीड किट प्रोवाइड कर रही है सरसों के और जो भी हमारे ऑल सीड वाली फसलें उनके भी,
0: जी
1: और उसके साथ साथ जो है कुछ अनुदान भी दे रही है, अनुदान दूसरे रूप में दे रही है, मतलब जैसे हम सरसों की खेती कर रहे हैं, किसी ऑयल सीड की खेती कर रहे हैं, तो हम जो है अपने फार्म पे हम फ्लड इरिगेशन ना करके इरिगेशन का इस्तेमाल
0: जी
1: कर सकते हैं। तो डिफरेंट माध्यम से जो है गवर्नमेंट जो है इसको सब्सिडी देके और प्रमोट कर रही है कि हम किसी तरीके से जो है हमारा जो तेल का जो है उत्पादन बढ़े हमारे देश के अंदर और निर्भरता हमारे दूसरे देशों पर कम हो जाए।
0: तो डॉक्टर साहब, उत्पादन तो जब ही बढ़ेगा जब अच्छी किस्में आएंगी,
1: अच्छी
0: इसमें जो
1: किस्में
0: कृषि
1: अच्छी,
0: वैज्ञानिकों का
1: हाँ
0: क्या योगदान
1: हाँ
0: है?
1: किसी देखिए जैसे मैंने बताया कि नई नई किस्में निकल रही हैं, जैसे अभी इस साल जो मस्टर्ड की पिछले साल दो वैरायटी हमारी निकली है, पूसा की, पूसा
0: जी
1: मस्टर्ड 37 और पूसा मस्टर्ड 38, दोनों बहुत बढ़िया किस्में, इनकी पैदावार जो है 3 टन से भी ज्यादा आ रही है। तो यदि आप 3 टन जो है मस्टर्ड की पैदावार ले रहे हैं तो इतनी अच्छा नई नई किस्में आ रही हैं और नई नई किस्मों को हम पहुँचा भी रहे हैं किसानों के माध्यम, मतलब चाहे हमारा MGMG प्रोग्राम है उसके माध्यम से भी सीड किट दे रहे हैं और चाहे जो है हम अपने अडॉप्टेड विलेज हैं उनकी उनमें भी हम जाकर दे रहे हैं, चाहे अपने KVK के माध्यम से, तो सीड भी पहुँचाया जा रहा है, सीड भी दिया जा रहा है। सीइंग इज बिलीविंग, किसानों को लाकर मेले
0: बिल्कुल
1: में भी
0: बिल्कुल,
1: दिखाया
0: हाँ,
1: जाता
0: देख
1: है,
0: के विश्वास करना।
1: विश्वास करना, तो ये सारी चीजें। लेकिन अच्छी पैदावार लेने के लिए आपको अपनी मिट्टी का स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है और जो जितनी जरूरत पोषक तत्वों की है मृदा परीक्षण के आधार पर वो भी डालने की जरूरत है, विशेषकर जो

0: तेल वाली फसलों में सल्फर की जहाँ डेफिशिएंसी है वहाँ जो है 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सल्फर भी देने की जरूरत है, क्योंकि सल्फर का रोल जो है वो ऑयल सिंथेसिस में होता है,
1: जी
0: तो जहाँ कमी है वहाँ सल्फर को, चाहे बेंटोनाइट सल्फर है चाहे एलिमेंटल सल्फर है, उसके रूप में देना चाहिए।
1: तो डॉक्टर साहब, किसान भाई जो हमारे तिलैनी फसलें हैं इनसे अधिक उत्पादन लें, आप कुछ खास बातें बताना चाहेंगे?
0: हाँ, मैं ये बताना चाहूँगा, एक तो जो अनुमोदित किस्में अपने क्षेत्र के लिए उनको ही चुनें, और दूसरी बात ये है कि मृदा परीक्षण के आधार पर पोषक तत्वों का प्रबंधन करें, जितनी नाइट्रोजन की जरूरत है उतनी नाइट्रोजन दें, इसमें विशेषकर जो है तोरिया में और अर्ली जो हम सरसों लगाते हैं उसमें लगभग 80 किलोग्राम हमको नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है और 30 से 40 किलोग्राम फॉस्फोरस की, और लगभग जो है 30 किलोग्राम हमको सल्फर की जरूरत पड़ती है। तो इनको जो है आप बुआई के समय डालें, नाइट्रोजन की जो आधी मात्रा जो है बुआई के समय डालें और आधी मात्रा जो है पहला पानी देने के बाद डालें। तो इस तरीके से जो पोषक तत्वों का प्रबंधन करना, भी अच्छी पैदावार के लिए किस्मों का चुनना और बीज सही मात्रा में डालना और बीज को लाइनों में डालना, इन चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है।
1: जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने काफ़ी विस्तार से बताया कि किस तरीके से हमारे किसान भाई तोरिया और सरसों की बिजाई करके अधिक लाभ कमा सकते हैं। डॉक्टर YS सिवे जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी हमारे भाई सुन रहे थे बहुत ही अच्छी जानकारी तोरिया और अगेती तिलहनी फसलों की बुआई, डॉक्टर YS सिवे, सहायक महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली से, और इनसे बातचीत कर रहे थे शिवनंदन लाल। और अब आगे बढ़ते हैं और अपने भाइयों को बताते हैं, कुछ चुनिंदा चीज़ों के भाव बताएंगे, लेकिन उससे पहले अपने भाइयों का करवाते हैं मनोरंजन और सुनवाते हैं श्रीपाल फौजी को।

0: अभी हमारे भाई सुन रहे थे शिवपाल फौजी की आवाज में ये उपदेश।
1: बिल्कुल। और अब बात कर लेते हैं आजादपुर मंडी के भाव आज के। और सबसे पहले हम सब्जियों के ऊपर बात करेंगे। आज टमाटर अगर प्रति किलो की बात करें तो 18 रुपए से लेकर 32 रुपए प्रति किलो रहा। वहीं प्याज की बात करें तो 24 से 26, आलू की बात करें तो 11 रुपए से 12 रुपए के बीच, फूलगोभी 15 से 45, वहीं हरी मिर्च 12 से 16 रुपए प्रति किलो का रहा।
0: और हरियाणा की कुछ मंडियों के भाव मेरे पास भी हैं मंजीत बहन। धान की जो भाव है इस वक्त हरियाणा की मंडियों में 3600 रुपये से 3950 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से रहा, और गेहूं 2585 से

0: ये 2600 रुपए के बीच में रहा। ग्वार का भाव 5000 प्रति कुंटल के भाव से रहा। मक्का 2100 रुपये प्रति कुंटल और सेब का जो भाव है वो 7000 से 12000 रुपये प्रति कुंटल के भाव रहा। और भिंडी और करेला जो सब्जियां हैं वो 2500 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से रही।
1: बिल्कुल, ये तो थे मंडी के भाव। और इसके साथ अब मौसम का हालचाल जान लेते हैं कि जो आज का जो तापमान रहा वो 33 डिग्री सेल्सियस रहा अधिकतम और 26 डिग्री सेल्सियस रहा न्यूनतम। और हल्की हल्की बारिश रही। और आर्द्रता की बात करें तो 62% रहा। और वहीं कल की बात कर ले तो कल का जो तापमान यानी कि 15 सितंबर का जो तापमान रहने वाला है अधिकतम 33 रहने वाला है, उसके साथ साथ न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। और आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी की बात करें तो 68 रहने वाला है और बारिश की संभावना भी दर्शाती है।
0: बिल्कुल, हमारे जो किसान भाई हैं जिन्होंने बेल वाली सब्जियां लगा रखी हैं, अगर तेज बरसात हो जाती है किसी वजह से, क्योंकि मौसम ऐसा ही चल रहा है, कभी तेज बरसात हो जाती है, कभी आंधी चलने लगती है, कभी कुछ, तो अगर पानी किसी वजह से भर जाता है आपकी खेती में तो उसकी निकासी बराबर बनाते रहें, क्योंकि अगर फसलों में पानी भरा रहेगा तो बेल वाली सब्जियां गल सकती हैं और आपका नुकसान हो सकता है। और इसके साथ ही हम अपने कार्यक्रम का पता भी बता देते हैं। तो जो हमारा पता है वो है कृषि एवं गृह एकांश द्वारा केंद्र निदेशक, कमरा नंबर 610, नव प्रसारण भवन, आकाशवाणी, नई दिल्ली 110001। आप अपनी कोई भी प्रतिक्रिया इस पर भेज सकते हैं, आप लेटर के माध्यम से या एसएमएस के माध्यम से या फ़ोन करके व्हाट्सएप पर। तो हम आपके फ़ोन का या एसएमएस का इंतज़ार करेंगे। और इसी के साथ हमारा आज का कृषि कार्यक्रम यही संपन्न होता है।
1: प्रस्तुतकर्ता तुषार पराशर और संयोजक शिवनंदन लाल के साथ मुझे मंजीत कौर और वंदना को दीजिए अनुमति।
0: राम
1: राम
0: राम।
1: राम।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आइए श्रोताओं, चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर, जिसमें हम सुनेंगे गजलें जगजीत सिंह जी के स्वरों में।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गजलें जगजीत सिंह जी के स्वरों में। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आइए अब सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: ये देख कैसे।
2: हैप्पी बर्थडे भाई।
1: हाँ, मेरा फेवरेट कलर
2: हमेशा शॉपिंग।
3: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
4: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
5: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
3: आई नो ना।
5: RBI कहता है,
6: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
7: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं वैष्णवी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में दिल्ली सरकार सेवा संकल्प अभियान चलाएगी। इस दौरान सरकार 13,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदी दिवस के अवसर पर जन सूचना सेवा शुरू करने की घोषणा की। रिजर्व बैंक ने साइबर धोखाधड़ी और विवादित लेन देन पर रोक के संबंध में नई रूपरेखा का मसौदा जारी किया। लोगों से सुझाव और टिप्पणियां आमंत्रित। गणेश चतुर्थी पर राजधानी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया दशम गणपति महामहोत्सव का भव्य उद्घाटन। 2100 शंखों की गूंज से बना ऐतिहासिक रिकॉर्ड। और अरुण जेटली स्टेडियम में कल भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा 2020 मैच। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में दिल्ली में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक सेवा संकल्प अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान सरकार 13,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में राजधानी में 1,25,000 करोड़ रुपए के बुनियादी ढांचे से जुड़े कार्य किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत दिल्ली सरकार के प्रत्येक विभाग सेवा से जुड़े हुए अलग अलग कार्यों पर

0: हमारे एनवायरमेंट विभाग द्वारा जो 70 लाख पेड़ पौधे लगाने का टारगेट था उसी को आगे बढ़ाते हुए हर वार्ड में अलग अलग संस्थाओं के साथ जुड़ करके प्लांटेशन करने का भी हमारा इस पखवाड़े में पूरा प्लान बन चुका है।
1: इसके साथ ही मेरे सपनों का भारत विषय पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा जिसमें चित्रकला, भाषण और रील बनाने की प्रतियोगिताएं शामिल होंगी। दिल्ली के लगभग 5,000 स्कूलों के 5 लाख विद्यार्थियों को इन प्रतियोगिताओं से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही इस अभियान के दौरान यमुना सफाई से जुड़े हुए लगभग 8,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सभी नागरिकों से इस अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लेने का आग्रह किया। प्रादेशिक समाचार के लिए सौम्या शरण।
2: स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने 17 सितंबर को आयोजित होने वाले मेगा रक्तदान शिविर की तैयारियों की समीक्षा की। श्री सिंह ने इस अवसर पर दिल्ली सरकार के विभिन्न अस्पतालों के डॉक्टरों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान श्री सिंह ने सभी नागरिकों को रक्तदान अभियान में शामिल होने के लिए स्वैच्छिक रूप से प्रेरित और जागरूक करने पर बल दिया। इस शिविर में दिल्ली सरकार के 11 अस्पतालों के ब्लड बैंक अपना सहयोग देंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने सभी संबंधित विभागों और एजेंसियों को रजिस्ट्रेशन, स्क्रीनिंग, रक्त संग्रह, मेडिकल सहायता, सुरक्षा, एम्बुलेंस सेवाएं, स्वच्छता, यातायात प्रबंधन और अन्य जरूरी सुविधाओं के संबंध में सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और दिल्ली वासियों से अपील की कि वे आगे आकर स्वेच्छा से रक्तदान करें और सेवा पखवाड़ा का सार्थक बनाएं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि अगले एक वर्ष में राजधानी में 2000 आधुनिक शौचालय बनाए जाएंगे। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली नगर निगम और पर्यटन विभाग 1000 शौचालयों का निर्माण करेंगे। उन्होंने कहा कि नगर निगम द्वारा बनाए जाने वाले 1000 शौचालयों का पूरा धन मुख्यमंत्री विकास कोष से उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आज शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र के सिंगलपुर गांव स्थित लेबर चौक पर नवनिर्मित आधुनिक शौचालय ब्लॉक का उद्घाटन किया। इस बीच दिल्ली सरकार ने पहले चरण में 500 सार्वजनिक शौचालय ब्लॉक बनाने के लिए लगभग 266 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। पहले चरण के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद शेष 500 सार्वजनिक शौचालय ब्लॉक दूसरे चरण में बनाए जाएंगे। दिल्ली सरकार ने बताया कि 93 शौचालय ब्लॉक दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में, 90 उत्तर पश्चिम, 72 पश्चिम क्षेत्र, 51 दक्षिण, 49 दक्षिण पूर्व में, 40 नई दिल्ली, 39 मध्य दिल्ली क्षेत्र में बनाए जाएंगे। निर्माण कार्य को 14 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। महापौर प्रवेश वाही ने आज स्वच्छता व्यवस्था की समीक्षा के लिए रोहिणी और प्रशांत विहार क्षेत्रों में निर्माणाधीन कॉम्पैक्टर का औचक निरीक्षण किया और अधिकारियों को इसके निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा करने के आदेश दिए। श्री वाही ने बताया कि निरीक्षण के दौरान कुछ कमियां पाई गई जिसके बाद संबंधित अधिकारी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई शुरू की गई और निजी कंपनी पर 10 लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया गया। दिल्ली सरकार में मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने आज दिल्ली सचिवालय में सिख समाज सहित अलग अलग समाजों और वर्गों से आए लोगों से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिरसा ने कहा कि बैठक के दौरान सभी से उनके क्षेत्र और समाज से जुड़े विषयों पर बातचीत कर उनके सुझावों को जाना। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
2: देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। इस अवसर पर सर्वोच्च न्यायालय ने आज जन सूचना सेवा शुरू करने की घोषणा की। इसका उद्देश्य न्याय व्यवस्था को अधिक समावेशी बनाना और लोगों के लिए महत्वपूर्ण न्यायिक फैसलों को समझना आसान बनाना है। इस सेवा के अंतर्गत महत्वपूर्ण फैसलों और आदेशों का सरल हिंदी में सार उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही करीब 15 से 30 मिनट की अवधि के हिंदी ऑडियो और वीडियो बुलेटिन भी जारी किए जाएंगे। न्यायालय ने कहा कि ये पहल लोगों और विशेष रूप से दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए शुरू की गई है। इससे वे महत्वपूर्ण फैसलों, उनके प्रभाव और आगे की कार्यवाही को अपनी परिचित भाषा में आसानी से समझ सकेंगे। नगर निगम ने आज हिंदी दिवस और राजभाषा सम्मान समारोह का आयोजन किया। समारोह के दौरान हिंदी भाषा और

0: साहित्य के क्षेत्र में योगदान देने वाले कवियों और साहित्यिक प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। महापौर प्रवेश वाही ने कहा कि हिंदी देश की विविधताओं को जोड़ने वाली सशक्त कड़ी है, विरासत को एक व्यापक अभिव्यक्ति प्रदान करती है। कार्यक्रम के अंतर्गत कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लोगों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि स्वतंत्रता से संविधान सभा तक हिंदी भाषा ने भारत की चेतना को स्वर दिया है। दिल्ली मेट्रो को राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए भारत का सर्वोच्च राजभाषा सम्मान कीर्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार दिल्ली मेट्रो को लगातार दूसरी बार प्रदान किया गया है। नवी मुंबई में आज आयोजित हिंदी दिवस समारोह और छठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के दौरान गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा दिल्ली मेट्रो के प्रबंध निदेशक डॉ विकास कुमार को ये पुरस्कार दिया गया। रिजर्व बैंक ने साइबर धोखाधड़ी और विवादित लेनदेन पर रोक के संबंध में नई रूपरेखा का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत बैंक पूरे अकाउंट के बजाय सिर्फ विवादित लेनदेन की राशि पर ही अस्थायी रूप से रोक लगा सकेंगे। ऐसा तभी किया जा सकेगा जब 1,000 रूपए या उससे अधिक के असामान्य अंतरण के म्यूल अकाउंट या साइबर फ्रॉड से जुड़े होने की आशंका हो। बैंकों को अचानक ग्राहक की बताई गई प्रोफाइल के लिए अनुपयुक्त या ज्ञात साइबर फ्रॉड नेटवर्क से जुड़े अंतरण की पहचान करने के लिए एआई आधारित लेनदेन की निगरानी प्रणाली का इस्तेमाल करना होगा। मसौदा निर्देश अगले वर्ष 1 अप्रैल से लागू होने वाले हैं, लेकिन बैंक इन्हें पहले भी अपना सकते हैं। एक रिपोर्ट।
1: प्रस्तावित प्रक्रिया में ग्राहकों को किसी लेनदेन का औचित्य साबित करने के लिए 20 कैलेंडर दिवस का समय मिलेगा। इसके लिए उन्हें पहचान का प्रमाण, उसका संदर्भ या ऐसे दस्तावेज देने होंगे जो ये दिखाते हों कि फंड कहां से आया है। इसके बाद बैंकों के पास स्पष्टीकरण और सहायक प्रमाण को देखने के लिए 10 कैलेंडर दिन होंगे। अगर खाता धारक का स्पष्टीकरण ठीक है तो रोक तुरंत हटानी होगी। यदि ग्राहक 20 दिन में जवाब नहीं देता या स्पष्टीकरण से साइबर धोखाधड़ी का संदेह दूर नहीं होता है तो बैंक को NCRP CFRMS पोर्टल के जरिए प्रकरण संबंधित क्षेत्राधिकार पुलिस को सौंपना होगा। संबंधित राशि को हमेशा के लिए फ्रीज नहीं रखा जा सकता, उसके बाद जिम्मेदारी कानून प्रवर्तन एजेंसी की होगी। प्रार्थना की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए प्रशांत कुमार।
0: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI अपनी मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग हेल्पलाइन 1033 को प्रौद्योगिकी के उपयोग से उन्नत बनाएगा। इससे राष्ट्रीय राजमार्ग पर यात्रियों को तेजी से और बेहतर सहायता मिल सकेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि उन्नत 1033 हेल्पलाइन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रियल टाइम लोकेशन ट्रैकिंग और स्मार्ट इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम जैसी प्रौद्योगिकी का उपयोग करेगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। एक्स पर @AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: राजधानी के पीतमपुरा स्थित नेताजी सुभाष प्लेस के DDA ग्राउंड में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गणपति महोत्सव का मुख्य अतिथि के रूप में दीप प्रज्वलित कर आधिकारिक उद्घाटन और बप्पा की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। उद्घाटन समारोह के दौरान पंडाल में रक्षा मंत्री की गरिमामयी उपस्थिति में 2100 श्रद्धालुओं ने एक साथ शंखनाद किया। इस महाशंखनाद के जरिए आयोजन समिति ने नया विश्व रिकॉर्ड बनाने का प्रयास किया है, जिससे पूरा परिसर गणपति बप्पा के जयकारों और दिव्य ऊर्जा से सरोबार हो उठा। मुंबई के प्रसिद्ध लालबाग के राजा की तर्ज पर सजे इस भव्य महोत्सव को देखने और बप्पा के दर्शन करने के लिए पहले ही दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ये महोत्सव 24 सितंबर तक चलेगा। मेट्रो से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए नेताजी सुभाष प्लेस मेट्रो स्टेशन सबसे नजदीकी और सुगम विकल्प है, जहां से पंडाल पैदल दूरी पर स्थित है। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच कल दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। तीसरा और अंतिम मुकाबला इसी स्टेडियम में बृहस्पतिवार को होगा।
3: श्रेयस अय्यर की अगुवाई में भारतीय टीम श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त हासिल करने के इरादे से कल मैदान पर उतरेगी। वहीं अफगानिस्तान की टीम

0: भारत के खिलाफ क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में पहली जीत दर्ज करना चाहेगी। पहले टी20 में भारतीय टीम का प्रदर्शन दमदार रहा। बल्लेबाजी में अभिषेक शर्मा ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए सिर्फ 32 गेंदों में 82 रन की तूफानी पारी खेली थी। अभिषेक के आगे अफगानिस्तान के गेंदबाज पूरी तरह से बेबस दिखाई दिए थे। वहीं ईशान किशन ने 33 गेंदों में 42 रन का योगदान दिया था। हालांकि संजू सैमसन बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके थे और वो केवल 10 रन बनाकर आउट हुए थे। ये देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय टीम पूरे टी20 में संजू सैमसन को प्लेइंग 11 में बरकरार रखती है या फिर टीम मैनेजमेंट वैभव सूर्यवंशी को मौका देती है। प्रादेशिक समाचार के लिए नवीन सक्सेना।
1: राजधानी दिल्ली में आज दोपहर के समय तेज धूप रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में दिल्ली सरकार सेवा संकल्प अभियान चलाएगी। इस दौरान सरकार 13,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदी दिवस के अवसर पर जन सूचना सेवा शुरू करने की घोषणा की। रिजर्व बैंक ने साइबर धोखाधड़ी और विवादित लेनदेन पर रोक के संबंध में नई रूपरेखा का मसौदा जारी किया। लोगों से सुझाव और टिप्पणियां आमंत्रित की। और अरुण जेटली स्टेडियम में कल भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा 2020 मैच। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
3: हाय यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
2: अरे वही अपना 60 रुपया।
3: अरे यार अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपये कैश है।
2: तो देख, दो तरीके हैं। पहला आधी दाढ़ी करा ले।
3: और दूसरा?
2: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
3: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
2: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
4: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
5: हर लेन देन अब है आसान।
6: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ
7: ये आकाशवाणी है। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए श्रोताओं, अब चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर। कार्यक्रम का नाम गीत मालिका। श्रोताओं, मैं रचना अग्निहोत्री आप सभी का स्वागत करती हूं, अभिवादन करती हूं, अभिनंदन करती हूं कार्यक्रम गीत मालिका में। श्रोताओं, आज की ये शाम कुछ विशेष है क्योंकि आज हमारे साथ हैं दो पावन पर्वों की सुंदर आभा, हरतालिका तीज और गणेश चतुर्थी। हरतालिका तीज जो समर्पण, प्रेम और शिव पार्वती के अटूट रिश्ते का उत्सव है, और दूसरी ओर गणेश चतुर्थी जो जीवन में शुभता, बुद्धि, विवेक और मंगल का संदेश लेकर आती है। भगवान शिव और माता पार्वती का प्रेम हमें सिखाता है कि सच्चा रिश्ता केवल साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे के प्रति विश्वास, सम्मान और समर्पण का नाम है। और जब भी किसी शुभ कार्य की शुरुआत हो तो सबसे पहले स्मरण होता है विघ्नहर्ता श्री गणेश का। तो आइए आज की इस विशेष गीत मालिका में हम कभी शिव पार्वती के प्रेम में रंगेंगे और कभी गणपति की भक्ति में झूमेंगे, और कभी तीज के झूले, मेहंदी और सावन की सुगंध को महसूस करेंगे।

श्रोताओ, ये आवाज़ थी विशाल मिश्रा जी की। और इसी के साथ कहते हैं ना, जहाँ गणपति का नाम होता है वहाँ शुभता अपने आप चली आती है। गणेश जी केवल विघ्नहर्ता ही नहीं बल्कि बुद्धि और विवेक के भी देवता हैं। इसीलिए किसी भी शुभ कार्य से पहले उनका स्मरण किया जाता है। और अब जरा चलते हैं उस पर्व की ओर जहां हरी भरी चूड़ियां हैं, हाथों में मेहंदी है, झूले हैं और शिव पार्वती के प्रेम की कहानी है।

श्रोता, ये भजन था हंसराज रघुवंशी जी की आवाज में। मेहंदी की खुशबू, चूड़ियों की खनक, सावन की फुहार और मन की महक, शिव पार्वती के प्रेम का ये त्योहार हर दिल में जगाए विश्वास अपार। प्रेम की सबसे खूबसूरत बात यही है कि उसमें केवल पाने की इच्छा नहीं होती, बल्कि सामने वाले की खुशी में अपनी खुशी ढूंढने का भाव होता है। और शायद इसीलिए शिव और पार्वती का रिश्ता भारतीय संस्कृति में प्रेम और दाम्पत्य का इतना सुंदर प्रतीक माना जाता है। श्रोताओं, अब बारी आती है गणपति भक्ति की। गणेश चतुर्थी आते ही वातावरण बदल जाता है। घरों में पूजा की तैयारी, फूलों की खुशबू, मोदक की मिठास और चारों ओर गूंजता गणपति बप्पा का नाम। लेकिन गणपति उत्सव का सबसे सुंदर संदेश है मिलजुल कर खुशियां मनाना। तो आइए इसी खुशी को अगले गीत के साथ आगे बढ़ाते हैं।

श्रोताओं, ये भजन हमने लिया था फिल्म अग्निपथ से और आवाज थी अजय। और इसी के साथ चलते हैं अगले गीत की तरफ। ढोल की थाप, फूलों की सजावट, मोदक की मिठास और हर तरफ एक ही जयकार, गणपति बप्पा मोरया। गणेश चतुर्थी का उत्सव हमें मिलजुल कर खुशियां बांटने और अपने भीतर की सकारात्मक ऊर्जा को जगाने का संदेश देता है। तो क्यों ना इसी उत्सव में रंग में रंग जाएं। दोस्तों, त्योहारों की असली खूबसूरती क्या है? नए कपड़े, मेहंदी, मिठाइयां या सजावट? शायद इन सबसे बढ़कर है अपनों का साथ। जब परिवार साथ हो, घर में हंसी हो, मन में श्रद्धा हो, तो साधारण सा दिन भी त्योहार बन जाता है ना?

श्रोताओं, ये गीत हमने लिया था फिल्म आपकी कसम से और आवाज थी लता और किशोर जी की। दोस्तों, कहा जाता है कि रिश्ते केवल संयोग से नहीं बनते, उन्हें प्यार, विश्वास और समझ से खूबसूरत बनाया जाता है। शिव पार्वती की कथा हो या हमारे अपने जीवन के रिश्ते, एक दूसरे का सम्मान और साथ ही रिश्तों को मजबूत बनाता है। तो चलिए।

श्रोताओं, ये गीत हमने लिया था फिल्म दुर्गा माँ से, आवाज थी चंद्रानी मुखर्जी और अरुण इंगले जी की। श्रोताओं, अब एक बार फिर करते हैं अपने प्यारे गणपति बप्पा का स्मरण। बप्पा से प्रार्थना है, हर घर में खुशहाली हो, हर मन में उजियाली हो, दूर रहें सारे विघ्न और दुख, हर जीवन में मंगल की लाली हो। गणपति बप्पा हमारे जीवन में बुद्धि, विवेक, सुख और शांति का प्रकाश करें।

श्रोताओं, ये भजन हमने लिया था फिल्म तुमको पूजूं गणेश से, और आवाज थी संजय गिरी जी की। श्रोताओं, आज की हमारी गीत मालिका धीरे धीरे अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ती चली जा रही है, लेकिन त्योहारों का उत्सव समाप्त कहाँ होता है? गणपति बप्पा का आशीर्वाद और शिव पार्वती का प्रेम हमारे जीवन में हमेशा बना रहे, यही तो हमारी कामना है। बप्पा के चरणों में हो हर अरमान, शिव पार्वती दें प्रेम का वरदान, तीज की हरियाली छाए जीवन में बार बार, और खुशियों से सजा रहे हर परिवार। लेकिन कार्यक्रम की समाप्ति शिव स्तुति के बिना कैसे हो सकती है?

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत मालिका। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आइए श्रोताओं, चलते हैं समाचार संध्या की ओर।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता की सराहना की, कहा भारत ने मजबूत आयोजन क्षमता प्रदर्शित की। वैश्विक नेताओं ने विकासशील देशों के बीच सहयोग मजबूत करने और ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने के लिए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की प्रशंसा की। अमरीकी विश्लेषक ने कहा दिल्ली घोषणा पत्र भारत की बढ़ती वैश्विक समन्वय क्षमता को दर्शाता है। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा भारत की संस्कृति और साहित्य कमल की तरह है, जिसकी हर क्षेत्रीय भाषा उसकी एक पंखुड़ी को दिखाती है। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल में जल विद्युत आपूर्ति में आई कमी के बीच दिसंबर के अंत तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली आपूर्ति को मंजूरी दी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद ने क्षेत्र में लंबे समय से जारी विरोध प्रदर्शनों और अशांति पर चिंता प्रकट की और देश भर में गणेश चतुर्थी का पर्व भक्ति और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि अधिकांश राष्ट्राध्यक्षों की उपस्थिति से दुनिया ने भारत के मजबूत नेतृत्व और विभिन्न देशों को एक मंच पर लाने की क्षमता देखी।
2: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा था जब दो बड़े संघर्ष जारी हैं, गहरे मतभेद हैं और विभिन्न देशों के विचारों तथा हितों में काफी टकराव है। इसके बावजूद हम ऐसे वक्तव्य पर सहमति बनाने में सफल रहे जिस पर सभी ने सहमति जताई। इस वक्तव्य में शांति, सुरक्षा, स्थिरता, दीर्घकालिक आपसी समझ, वैश्विक व्यापार और आपूर्ति श्रृंखलाओं के सुचारू प्रवाह, ऊर्जा की निर्बाध आपूर्ति तथा नागरिकों और बुनियादी ढांचे की सुरक्षा का आह्वान किया गया है।
1: डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि सम्मेलन में 11 सदस्य देशों, 10 साझेदार देशों, 4 क्षेत्रीय संगठनों और 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित कुल 32 प्रतिनिधिमंडल शामिल हुए। उन्होंने कहा कि वैश्विक ध्रुवीकरण के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष जैसे सबसे जटिल मुद्दे पर भी आम सहमति बनना महत्वपूर्ण उपलब्धि है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स देशों ने स्पष्ट रूप से माना है कि आतंकवाद का कोई भी कृत्य आपराधिक कृत्य है।
2: ब्रिक्स का रुख स्पष्ट था, आतंकवाद का कोई भी रूप आपराधिक माना जाएगा। ब्रिक्स देशों ने पहलगाम

0: शामिल हुए। नई दिल्ली घोषणा पत्र में भारत की अध्यक्षता की तारीफ की गई और सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत सरकार और लोगों की प्रशंसा की गई। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने ब्रिक्स अध्यक्ष के तौर पर भारत के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि नई दिल्ली ने बेहद सफल सम्मेलन आयोजित किया है। चीन की सरकारी मीडिया और नेताओं ने नई दिल्ली घोषणा पत्र को ग्लोबल साउथ देशों के बीच बेहतर गुणवत्ता के सहयोग और एकजुटता के लिए सकारात्मक कदम बताया। रूस ने ब्रिक्स सहयोगी देशों के साथ समावेशी विकास उन्मुखी साझेदारी के लिए मॉस्को के समर्पण की फिर से पुष्टि की। संयुक्त राष्ट्र महासचिव गुतरश ने भी भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की तारीफ की। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी नई दिल्ली घोषणा पत्र की तारीफ की है। अमेरिका के एक विश्लेषक ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को बहुत सफल बताया है। अटलांटिक काउंसिल में दक्षिण एशिया मामलों के वरिष्ठ फेलो माइकल कुगेलमैन ने कहा कि ये घोषणा पत्र भारत की बढ़ती वैश्विक समन्वय क्षमता और ब्रिक्स की बढ़ती स्वीकार्यता को दर्शाता है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति, विजन महासागर और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में वियतनाम प्रमुख भागीदार है। नई दिल्ली में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक की सहअध्यक्षता करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि आसियान के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे में वियतनाम महत्वपूर्ण साझेदार है। भारत ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण को इस वर्ष 31 दिसंबर तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली आपूर्ति को मंजूरी दी है। विद्युत मंत्रालय ने बताया कि मुजफ्फरपुर ढालकेबार लाइन के जरिए 600 मेगावाट तक और टनकपुर महेंद्रनगर लाइन के जरिए 54 मेगावाट तक विद्युत आपूर्ति को स्वीकृति दी गई है। एक रिपोर्ट।
2: हाल ही में बाढ़ से नेपाल में जल विद्युत अवसंरचना को काफी नुकसान हुआ है, जिससे उसकी घरेलू बिजली निर्माण क्षमता कम हो गई है और बिजली की अतिरिक्त आवश्यकता हो गई है। सोमवार से मिली मंजूरी से नेपाल को मुश्किल समय में बिजली की जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी और भारत और नेपाल के बीच करीबी और लंबे समय से चले आ रहे ऊर्जा सहयोग को और मजबूत करने में सहायता मिलेगी। मंत्रालय ने कहा है कि भारत नेपाल की सहायता करने और ऊर्जा क्षेत्र में आपसी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत की संस्कृति और साहित्य कमल की तरह हैं, जिसकी हर क्षेत्रीय भाषा उसकी एक पंखुड़ी को दिखाती है। श्री शाह ने ये बात आज नवी मुंबई में 2 दिन के हिंदी दिवस और 6ठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर कही।
5: भारतीय साहित्य एक विकसित सतदल कमल की तरह है, जिसकी प्रत्येक पंखुड़ी हमारी प्रादेशिक भाषाएं किसी भी एक पंखुड़ी को नष्ट होने से कमल का सौंदर्य नष्ट हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि प्रादेशिक भाषाएं रानी बनकर प्रांत में विराजमान रहे और इन सभी भाषाओं के बीच में हिंदी मध्यमणि बनकर ये सतदल कमल का सौंदर्य बढ़ाती रहे।
1: श्री अमित शाह ने कहा कि सभी क्षेत्रीय भाषाओं को पूरा सम्मान और गरिमा देते हुए हिंदी को केंद्रीय भूमिका निभानी चाहिए।
6: भाषा किसी भी समाज की स्मृति होती है, उसका आत्मबोध होती है। हिंदी ने इस विविधता के बीच संवाद, संपर्क और समन्वय की भाषा के रूप में देश के विभिन्न वर्गों और समुदायों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी का विकास भी तभी सार्थक है जब सभी भारतीय भाषाओं के सम्मान, संरक्षण और संवर्धन के साथ आगे बढ़े।
1: इस अवसर पर राजभाषा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य और योगदान के लिए 11 संस्थाओं और लोगों को सम्मानित किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदी दिवस के अवसर पर आज जन सूचना सेवा शुरू करने की घोषणा की। इस सेवा के अंतर्गत महत्वपूर्ण फैसलों और आदेशों का सरल हिंदी में सार उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही करीब 15 से 30 मिनट की अवधि के हिंदी ऑडियो और वीडियो बुलेटिन भी जारी किए जाएंगे। राजस्थान में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त हासिल कर ली है। आज राज्य के 10,245 वार्डों के लिए मतगणना हुई। इनमें 10 नगर निगम, 47 नगर परिषद और 252 नगर पालिकाएं शामिल हैं। भाजपा ने जयपुर, कोटा, उदयपुर और भीलवाड़ा नगर निगमों में बहुमत हासिल कर लिया है, जबकि अलवर

0: में वो आगे चल रही है। बीकानेर में कांग्रेस को बहुमत मिला है और अजमेर तथा पाली में पार्टी आगे है। भारतीय रिजर्व बैंक ने साइबर धोखाधड़ी और विवादित लेनदेन पर रोक के संबंध में नई रूपरेखा का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत बैंक पूरे अकाउंट के बजाय सिर्फ विवादित लेनदेन की राशि को अस्थायी रूप से फ्रीज कर सकेंगे। ऐसा तभी किया जा सकेगा जब 1,000 रुपए या उससे अधिक के असामान्य अंतरण को म्यूल अकाउंट या साइबर फ्रॉड से जुड़े होने की आशंका हो। मसौदा निर्देश अगले वर्ष 1 अप्रैल से लागू होने वाले हैं, लेकिन बैंक इन्हें पहले भी अपना सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को नई दिल्ली के यशोभूमि में 5वें सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे। इसमें 40 से अधिक देशों के 600 से अधिक प्रदर्शक, 300 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और प्रतिभागी भाग लेंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबेत्किन ने भारत और मर्कोसुर के बीच तरजीही व्यापार समझौते के विस्तार के लिए बातचीत शुरू करने की घोषणा की है। दोनों मंत्रियों ने वर्तमान समझौते में आपसी हित के क्षेत्रों को शामिल करने पर सहमति प्रकट की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद ने क्षेत्र में लंबे समय से चल रहे विरोध प्रदर्शनों और अशांति पर चिंता व्यक्त की है। परिषद ने कहा कि प्रदर्शनों को अब 100 दिन पूरे हो चुके हैं, जिससे अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है और व्यापक क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। एक रिपोर्ट।
2: परिषद ने चेतावनी दी कि सार्थक बातचीत में किसी भी प्रकार की और देरी से जनता में असंतोष, अविश्वास और अस्थिरता और बढ़ सकती है। परिषद ने बाग जिला परिषद के सदस्य जावेद आरिफ अब्बासी की गिरफ्तारी पर भी चिंता प्रकट की। परिषद ने कहा है कि सार्वजनिक अधिकारों से संबंधित मुद्दों को शांतिपूर्ण ढंग से उठाना मौलिक लोकतांत्रिक अधिकार है। परिषद ने आरिफ अब्बासी पर किसी भी आरोप को पारदर्शी कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से निपटाने का आह्वान किया और कहा कि यदि उनकी हिरासत के लिए कोई स्पष्ट कानूनी आधार नहीं है तो उन्हें बिना किसी देरी के रिहा किया जाना चाहिए। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने घोषणा की है कि गुजरात ने मिस्टी योजना के अंतर्गत कच्छ में 27,000 हेक्टेयर में मैंग्रोव पौधे लगाकर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। पर्यावरण मंत्री ने जाखो स्थित वैज्ञानिक नर्सरी का भी दौरा किया। इस अवसर पर वन्यजीव संरक्षण और चीता परियोजना के अंतर्गत वन विभाग के लिए 33 निगरानी और बचाव वाहनों को झंडी दिखाकर रवाना किया गया। और अब बात मौसम की। गुजरात में आज तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित रहा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सौराष्ट्र के कुछ जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है।
3: राज्य में भावनगर के वल्लभीपुर में आज 6 इंच बारिश दर्ज की गई, जबकि आनंद के बोरसद में 5.5 इंच और अहमदाबाद में 3.5 इंच बारिश से आम जनजीवन पर असर पड़ा। भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में पानी भर गया। इस बीच वाहन चालकों को भी मुश्किल का सामना करना पड़ा। पिछले 2 दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण राज्य में सीजन की औसत 80% बारिश रिकॉर्ड की गई है। बारिश के कारण राज्य के 35 डैम हाई अलर्ट पर है। दूसरी ओर बारिश के कारण लंबे ब्रेक के बाद खरीफ की फसल को नया जीवन मिला है। मनोज सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कल तेज बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने बताया कि केरलम, माहे, पंजाब, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, उपहिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में भी कल इसी तरह के मौसम की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों तक अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, ओडिशा और राजस्थान में गरज चमक की स्थिति बनी रहेगी। देश भर में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लोगों से गणेशोत्सव पारंपरिक तरीके से मनाने और प्रदूषण कम से कम करने की अपील की है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी का उत्सव बड़े उत्साह के साथ शुरू हुआ। भक्तों ने प्रार्थना, आरती, भक्ति गीतों और गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों के साथ भगवान गणेश का स्वागत किया। मुंबई में लालबाग सराजा, गणेश गली, तेजुकाया और जीएसबी जैसी मशहूर मूर्तियों के दर्शन के लिए भारी

0: Arun Jaitley Stadium in Delhi tomorrow. The match will begin at 7:30 p.m. Indian Standard Time. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar hails successful conclusion of BRICS Summit in New Delhi, says India showed strong convening power. Global leaders praise BRICS Summit for strengthening cooperation among developing nations and advancing priorities of Global South. US-based analyst says New Delhi declaration reflects India's ability to build consensus. India approves 18-hour power supply to flooded Nepal till December end amid hydropower crisis. Human Rights Council of Pakistan-occupied Jammu and Kashmir expresses concern over prolonged protests and unrest in the region. Ganesh Chaturthi has been celebrated across country with grandeur, devotion and festive gaiety. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And that is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में ब्रिक्स सरबरा मीटिंग के कामयाब इनेकाद की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि भारत ने कायल करने की जबरदस्त सलाहियत का मुजाहरा किया है। आलमी रहनुमाओं ने भी तरक्की पजीर मुल्कों में इश्तराक को मुस्तहकम करने और आलमी खित्ते जुनूब की तरजीहात को आगे बढ़ाने पर ब्रिक्स सरबरा मीटिंग की सताइश की है। अमरीका में मुकीम तज्जिया निगार ने कहा है कि नई दिल्ली एलामिया इत्तेफाक राय पैदा करने की भारत की सलाहियत की अक्कासी करता है। भारत ने पनबिजली पैदा करने के बहरान के दौरान सैलाब से मुतासरा नेपाल को दिसंबर के आखिर तक 18 घंटे बिजली फराहम करने को मंजूरी दी है। इंसानी हकूक से मुतालिक पाकिस्तान की काउंसिल ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में तवील अरसे से जारी मुजाहिरों और बदमनी पर तशवीश का इजहार किया है। और गणेश चतुर्थी का त्यौहार मुल्क भर में अकीदत और जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। अब खबरें तफसील से। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स सरबरा मीटिंग 2026 के कामयाब इख्तिताम की सताइश की। उन्होंने कहा कि दुनिया ने भारत की मौसर सिफारतकारी और क़यादत का बखूबी मुशाहिदा किया क्योंकि ज़्यादातर ममालिक के सरबराहान अपने अपने मुल्कों की नुमाइंदगी के लिए मीटिंग में मौजूद थे। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि यह समझना ज़रूरी है कि ब्रिक्स सरबरा मीटिंग ऐसे वक्त मुनक़िद हुई जब दुनिया में इख्तलाफात और ग्रुपबंदी मौजूद है। इसके अलावा दुनिया में दो बड़े तनाज़ात के साथ बड़े पैमाने पर इख्तलाफ राय और मफादात भी कारफरमा हैं। उन्होंने कहा कि तमाम ममालिक अमन व सलामती, इस्तेहकाम, तवील मुद्दती बाहमी मफाहमत, आलमी तिजारत में आसानी, सप्लाई चेन तवानाई और शहरियों नीज सिविलियन बुनियादी ढांचे के तहफ्फुज़ के हवाले से एक मुश्तरक बयान पर इत्तेफाक करने में कामयाब रहे। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि मीटिंग में 32 वफूद शरीक हुए जिनमें 11 रुकन ममालिक, 10 शराकत दार ममालिक, 4 इलाकाई तंजीमें और 7 बैनुल अक्वामी तंजीमें शामिल थीं। वजीर खारजा ने कहा कि ब्रिक्स ममालिक इस बात पर बिल्कुल मुत्तफिक हैं कि दहशतगर्दी की कोई भी कार्रवाई एक मुजरिमाना अमल है। उन्होंने मजीद कहा कि ब्रिक्स ने वाज़ेह तौर पर पहलगाम दहशतगर्दाना हमले को नाकाबिले कबूल करार दिया। नई दिल्ली में 18वीं ब्रिक्स सरबरा मीटिंग के कामयाब इनेकाद पर कई रुकन ममालिक ने भारत की ब्रिक्स क़यादत की तारीफ की है। भारत की सदारत में मुनक़िद हुई 2 रोज़ा सरबरा मीटिंग गुज़िश्ता रोज़ कौमी राजधानी में इख्तिताम पज़ीर हुई। इस दौरान हफ्ते के रोज़ ब्रिक्स ममालिक ने मुत्तफ़िका तौर पर नई दिल्ली एलामिया 2026 अपनाया। इस सरबरा मीटिंग में रूस के सदर व्लादिमिर पुतिन और चीन के सदर शी जिनपिंग समेत कई आलमी रहनुमाओं ने शिरकत की। पेश है एक रिपोर्ट।
2: ब्रिक्स सरबरा मीटिंग के दौरान जनूबी अफ्रीका, रूस, चीन, ब्राज़ील और मुत्तहदा अरब इमारात ने ब्रिक्स में इश्तराक मुस्तहकम करने और आलमी खित्ते जनूब की तरजीहात को आगे बढ़ाने की भारत की कोशिशों का खैर मकदम किया। जनूबी अफ्रीका के सदर सिरिल रामाफोसा ने भारत की ब्रिक्स सदारत की तारीफ करते हुए कहा कि नई दिल्ली ने कामयाब तरीके से सरबराह मीटिंग की मेजबानी की और इत्तेफाक राय पर पहुंचने से मुतालिक खदशात के बावजूद नई दिल्ली आलामिये पर रुकन ममालिक को आमादा करने पर कामयाब रहा। चीन के सरकारी मीडिया और क़यादत ने नई दिल्ली आलामिये को आलमी खित्ते जनूब के मुल्कों में आला दर्जे के इश्तराक और यकजहती से मुतालिक मुस्बत कदम करार दिया। روس نے اعلامیے پر ماسکو کے عزم کو دہراتے ہوئے برکس حلیف ملکوں کے ساتھ شمولیاتی اور ترقی پر مرکوز

0: साझेदारी के तई अहदबस्तगी का इजहार किया। अमरीका में मुकीम तजिया निगार ने 18वीं ब्रिक्स सरबराह मीटिंग की भारत की मेजबानी को कामयाब करार देते हुए कहा कि नई दिल्ली आलामिया से मुख्तलिफ नजरियात के हामिल मुल्कों के दरमियान इतफाक राय कायम करने की नई दिल्ली की सलाहियत की अक्कासी होती है। न्यूज डेस्क से स्वाति की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असगर अली।
1: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आइंदा बुध के रोज नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमीकॉन इंडिया 2026 के 5वें एडिशन का इफ्तिताह करेंगे। इस प्रोग्राम में 600 से ज्यादा नुमाइशकार, 300 बैनुल अक़वामी कंपनियां और 40 से ज्यादा ममालिक के वफूद शिरकत करेंगे। नुमाइश में 6 ममालिक के पवेलियन, 12 रियासती हुकूमतों के पवेलियन के अलावा एक खसूसी स्टार्टअप पवेलियन भी होगा। सेमीकॉन इंडिया भारत की सबसे अहम सेमीकंडक्टर कॉन्फ्रेंस और नुमाइश है, जिसका इनेकाद मुश्तरक तौर पर इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत और सेमी करते हैं। ये प्रोग्राम आलमी सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स इको निज़ाम को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का अहम जरिया है, ताकि तआवुन, जिद्दत तराजी, मैन्युफैक्चरिंग, सरमायाकारी और हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत तैयार करने को फ़रोग़ दिया जा सके। 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में आला सतह के कलीदी खुतबे, पैनल मुबाहसे और हिकमत अमली से मुतालिक अहम इजलास होंगे। इनमें सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स के शोबे में उभरते हुए रुझानात और अहम मौजूआत, खसूसी तौर पर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। ये प्रोग्राम भारतीय और बैनुल अक़वामी कंपनियों को कारोबारी शराकतदारी, सरमायाकारी के मौके, टेक्नोलॉजी में ताउन और सप्लाई चेन के रवाबित दरियाफ्त करने का अहम मौका फराहम करेगा। इससे भारत की हैसियत एक काबिल एतमाद आलमी सेमीकंडक्टर शराकतदार के तौर पर मजीद मुस्तहकम होगी। हुकूमत ने नेपाल बिजली अथॉरिटी को इस साल 31 दिसंबर तक रोजाना 18 घंटे बिजली बरामद किए जाने की मंजूरी दी है। वजारत बिजली के मुताबिक नेपाल को मुजफ्फरपुर धलकेबार लाइन के जरिए 600 मेगावाट तक और तनकपुर महेंद्रनगर लाइन के जरिए 54 मेगावाट तक बिजली फराहम की जाएगी। हालिया सैलाब से नेपाल के पन बिजली बुनियादी ढांचे को काफी नुकसान पहुंचा है, जिसके बायस मुल्क के अंदर बिजली पैदा करने की सलाहियत कम और बिजली की इजाफी ज़रूरत पैदा हो गई है। वजारत ने कहा कि इस मंजूरी से नेपाल को मुश्किल हालात में अपनी बिजली की ज़रूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी और भारत और नेपाल के दरमियान देरीना तवानाई तावुन मजीद मुस्तहकम होगा। वजारत ने मजीद कहा कि भारत नेपाल की मदद के लिए और तवानाई के शोबे में दोतरफा तावुन को मजीद मुस्तहकम करने के लिए पुरअज़्म है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज कहा कि भारत की सकाफत और अदब कमल के फूल की मानिंद हैं, जिसकी हर पंखुड़ी मुल्क की मुख्तलिफ इलाकाई जबान की नुमाइंदगी करती है। उन्होंने कहा कि अगर एक भी पंखुड़ी ज़ाय हो जाए तो पूरे कमल की खूबसूरती कम हो जाती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हिंदी को मरकजी रोल अदा करना चाहिए, ताहम तमाम इलाकाई जबानों को भी मुनासिब इज्जत, वक़ार और एहतराम दिया जाना चाहिए। जनाब शाह नवी मुंबई में 2 रोज़ा हिंदी दिवस 2026 और 6ठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का इफ्तिताह करने के बाद इजहार ख्याल कर रहे थे।
2: भाषा किसी भी समाज की स्मृति होती है, उसका आत्मबोध होती है। हिंदी ने इस विविधता के बीच संवाद, संपर्क और समन्वय की भाषा के रूप में देश के विभिन्न वर्गों और समुदायों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी का विकास भी तभी सार्थक है जब सभी भारतीय भाषाओं के सम्मान, संरक्षण और संवर्धन के साथ आगे बढ़े।
1: मरकजी वजीर दाखिला ने कहा कि अगरचे भारत में बहुत सी जबानें और बोलियां हैं, लेकिन भारत का जज्बा और मुल्क की आवाज एक रहनी चाहिए। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर और वियतनाम के उनके हमनसब ली हुई ट्रुंग ने आज नई दिल्ली में मुश्तरक तौर पर 19वें भारत वियतनाम मुश्तरक कमीशन मीटिंग की सदारत की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि नतायज पर मरकूज इस मीटिंग में भारत और वियतनाम के सियासी, दिफाई और सलामती से मुतालिक तआवुन को मजबूत बनाने और भारत में तैयार करदा दिफाई साजो सामान की फराहमी बढ़ाने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल किया गया। फरीकैन ने तिजारत, सरमायाकारी और सप्लाई चेन के उमूर पर भी तामीरी बातचीत की और बाजार तक रसाई को मजीद वसत देने के बारे में तबादला ख्याल किया। दोनों ममालिक की समंदरी मसनूआत, ज़रई मसनूआत और अद्वियात के शोबों में भी तआवुन और बाहमी तिजारत पर तबादला ख्याल किया गया। तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल और जमहूरिया यूरागुए के वजीर खारजा मारियो लुबेटकिन ने भारत और मरकोसुर के दरमियान तरजीही तिजारती समझौते को वसत देने के लिए मुजाकरात शुरू करने का ऐलान किया। दोनों वजीरों ने मौजूदा समझौते को बाहमी दिलचस्पी

0: के मजीद शोबों तक वसत देने पर इतफाक किया। इसका मकसद भारत और मरकोसुर के दरमियान इकतसादी ताल्लुकात को मजीद वसत देना और दोनों फरीकों के निजी शोबों के लिए ज्यादा फवायद और नए मौके फराहम करना है। राजस्थान में हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी ने रियासत में होने वाले शहरी मुकामी बल्दियाती इदारों के इंतखाबात में मजमूई तौर पर बरतरी हासिल कर ली है। आज रियासत के 10,245 वार्डों के लिए वोटों की गिनती हुई। शहरी मुकामी बल्दियाती इदारों में 10 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, 47 म्यूनिसिपल काउंसिल और 252 म्यूनिसिपैलिटीज शामिल हैं। बीजेपी ने जयपुर, कोटा, उदयपुर और भिलवाड़ा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में वाज़े अक्सरियत हासिल कर ली है, जबकि अलवर में भी वो आगे चल रही है। बीकानेर में कांग्रेस ने वाज़े अक्सरियत हासिल की है, जबकि अजमेर और पाली में भी कांग्रेस आगे है। भरतपुर में आज़ाद उम्मीदवारों ने बड़ी कामयाबी हासिल की। आज़ाद उम्मीदवारों ने 65 में से 38 वार्ड्स में जीत हासिल की है। पाकिस्तान के जेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर POJK की इंसानी हकूक काउंसिल ने खित्ते में खासतौर पर रावलकोट और पुंछ और सुधनूती ज़िलों में तवील अरसे से जारी एहतजाज और बदमनी पर तश्वीश का इजहार किया है। इंसानी हकूक काउंसिल ने कहा कि मुजाहिरों को अब 100 दिन मुकम्मल हो चुके हैं, जिससे गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हो गई है और पूरा खित्ता मुतासर हो रहा है। काउंसिल ने खबरदार किया कि बामानी मुजाकिरात में मजीद ताखीर से अवाम में मायूसी पैदा हो सकती है, नीज़ अदम एतमाद और अदम इस्तेकाम मजीद गहरा हो सकता है। काउंसिल ने पाकिस्तानी हुकाम और तमाम मुतालिका फरीकों से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर बामानी और नतीजा खैज मुजाकिरात शुरू करें, सब्र तहमुल का मुजाहरा करें और पुरमन व जमहूरी हल तलाश करें। हुकूमत ने कहा है कि फौज की मुसलसल कोशिशों की वजह से जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी की सूरत हाल पूरी तरह काबू में है। 2025-26 की अपनी हालिया सालाना रिपोर्ट में वजारत दिफा ने कहा कि फौज की इन कोशिशों की वजह से तशद्दुद और मुजाहिरों में कमी आई है और पथराव का खात्मा हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जम्मू कश्मीर और लाइन ऑफ कंट्रोल की सिक्योरिटी की सूरत हाल में नुमाया तब्दीली आई है। गणेश चतुर्थी का त्यौहार आज मुल्क भर में अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। भगवान गणेश की पैदाइश की याद में मनाया जाने वाला यह त्यौहार दानाई, खुशहाली और नेकबख्ती की अलामत है। इसे विनायक चतुर्थी या गणेश उत्सव भी कहा जाता है। इस मौके पर 10 रोज़ा तकरीबात का एहतमाम किया जाता है, जिसके दौरान लोग भगवान गणेश की मूर्तियां अपने घरों में नसब करते हैं और इसकी पूजा करते हैं। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू और वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने गणेश चतुर्थी के मौके पर लोगों को मुबारकबाद पेश की है। इस दौरान महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने लोगों से आलूदगी कम करते हुए रिवायती अंदाज में गणेश उत्सव मनाने की अपील की है। जनाब फडणवीस मुंबई में अपनी सरकारी रिहायशगाह वर्षा में भगवान गणेश की मूर्ति नस्ब करने और उसकी पूजा करने के बाद नामानिगारों से गुफ्तगू कर रहे थे। मुंबई समेत महाराष्ट्र भर में 10 रोजा गणेश उत्सव आज से शुरू हो गया है। तफसील हमारे मुंबई के नामानिगार से।
1: महाराष्ट्र भर में 10 रोजा गणेश उत्सव आज से शुरू हो गया है। अकीदतमंद भगवान गणेश का खैर मकदम कर रहे हैं और भक्ति गीतों के साथ उनकी पूजा आरती कर रहे हैं। पुलिस, रेलवे और बेस्ट की जानिब से भीड़ और ट्रैफिक को मुनज्जम करने के लिए खसूसी इंतजाम किए गए हैं। पूरे महाराष्ट्र में घरों और अवामी मकामात पर हजारों गणेश मूर्तियां नस्ब की जा रही हैं। गणेश उत्सव के दौरान सेहत कैंप, खून के अतिये के कैंप मुनक़िद किए जा रहे हैं और सकाफती तकरीबात के साथ साथ फलाह व बहबूद के प्रोग्राम भी मुनक़िद किए जा रहे हैं। मुंबई से माधुरी पंगे की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असगर अली।
0: भारतीय महकमे मौसमियात ने पूरी गुजरात रियासत में आज मतला अबर आलूद रहने की पेशगोई की है। रियासत के 250 ताल्लुकों में आज मूसलाधार बारिश हुई, जिससे नशीबी इलाकों में पानी जमा हो गया। महकमे मौसमियात ने सौराष्ट्र के चंद जिलों में आज शदीद बारिश से मुतालिक रेड अलर्ट जारी किया है। तफसील हमारे नामानिगार से।
1: गुजरात में आज शदीद बारिश हुई। भावनगर के वल्लभपुर में आज 6 इंच बारिश दर्ज की गई। वहीं आनंद जिले के बोरसद में 5.5 इंच और अहमदाबाद में 3.5 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी मुतासिर हुई। मूसलाधार बारिश की वजह से कई नशेबी इलाकों में पानी भर गया। गुज़श्ता 2 दिन के दौरान गुजरात में बारिश के पूरे मौसम के दौरान होने वाली बारिश की 80% बरसात हुई है। बारिश की वजह से रियासत के 35 डैम्स को हाई अलर्ट पर रखा गया है। दूसरी जानिब लंबे वक्फे के बाद इस बारिश से खरीफ की फसलों में दोबारा जान पड़ गई है। अहमदाबाद से मयूर सोलंकी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तनवीर।
0: इस दौरान भारतीय महकमा मौसमियात ने कल अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में शदीद बारिश की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक केरला, माहे, पंजाब, कर्नाटक के जुनूबी अंदरूनी इलाके, जैली हिमालयी मगरबी बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी कल इसी तरह के

मौसमी हालात रहने का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने कहा कि आइंदा 2 से 3 दिन के दौरान अंडमान निकोबार जजायर, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, ओडिशा और राजस्थान में गरज चमक के साथ छींटे पड़ सकते हैं। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में ब्रिक्स सरबरा मीटिंग के कामयाब इनकाद की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि भारत ने कायल करने की जबरदस्त सलाहियत का मुजाहरा किया है। आलमी रहनुमाओं ने भी तरक्की पजीर मुल्कों में इश्तराक को मुस्तहकम करने और आलमी खित्ते जुनूब की तरजीहात को आगे बढ़ाने पर ब्रिक्स सरबरा मीटिंग की सताइश की है। अमरीका में मुकीम तजिया कार ने कहा है कि नई दिल्ली ऐलामिया इत्तफाक राय पैदा करने की भारत की सलाहियत की अक्कासी करता है। भारत ने पन बिजली पैदा करने के बहरान के दौरान सैलाब से मुतासर नेपाल को दिसंबर के आखिर तक रोजाना 18 घंटे बिजली फराहम करने को मंजूरी दी है। और गणेश चतुर्थी का त्यौहार मुल्क भर में आज अकीदत और जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि अधिकांश राष्ट्राध्यक्षों की उपस्थिति से दुनिया ने भारत के मजबूत नेतृत्व और विभिन्न देशों को एक मंच पर लाने की क्षमता देखी। डॉ जयशंकर ने बताया कि सम्मेलन में 11 सदस्य देशों, 10 साझेदार देशों, 4 क्षेत्रीय संगठनों और 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित कुल 32 प्रतिनिधिमंडल शामिल हुए। उन्होंने कहा कि वैश्विक ध्रुवीकरण के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष जैसे सबसे जटिल मुद्दे पर भी आम सहमति बनना महत्वपूर्ण उपलब्धि है। डॉ जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स देशों ने स्पष्ट रूप से माना है कि आतंकवाद का कोई भी कृत्य आपराधिक कृत्य है।
1: ब्रिक्स का रुख स्पष्ट था, आतंकवाद का कोई भी रूप आपराधिक माना जाएगा। ब्रिक्स देशों ने पहलगाम हमले की अस्वीकार्यता को स्पष्ट रूप से मान्यता दी। उन्होंने आतंकवाद के सभी

0: रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की, जिसमें सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। साथ ही आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर बल दिया।
1: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति, विजन महासागर और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में वियतनाम प्रमुख भागीदार है। नई दिल्ली में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक की सह अध्यक्षता करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि आसियान के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे में वियतनाम महत्वपूर्ण साझेदार है। भारत ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण को इस वर्ष 31 दिसंबर तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली आपूर्ति को मंजूरी दे दी है। विद्युत मंत्रालय ने बताया कि मुजफ्फरपुर ढाल के बार लाइन के जरिए 600 मेगावाट और टनकपुर महेंद्रनगर लाइन के जरिए 54 मेगावाट तक विद्युत आपूर्ति की स्वीकृति दी गई है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद ने क्षेत्र में लंबे समय से चल रहे विरोध प्रदर्शनों और अशांति पर चिंता व्यक्त की है। परिषद ने कहा कि प्रदर्शनों को 100 दिन पूरे हो चुके हैं, जिससे अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है और व्यापक क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। परिषद ने चेतावनी दी कि सार्थक बातचीत में किसी भी प्रकार की देरी से जनता में असंतोष, अविश्वास और अस्थिरता और बढ़ सकती है। परिषद ने बाघ जिला परिषद के सदस्य जावेद आरिफ अब्बासी की गिरफ्तारी पर भी चिंता व्यक्त की। सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदी दिवस के अवसर पर कल जन सूचना सेवा शुरू करने की घोषणा की। इस सेवा के अंतर्गत महत्वपूर्ण फैसलों और आदेशों का सरल हिंदी में सार उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही करीब 15 से 3 मिनट की अवधि के हिंदी ऑडियो और वीडियो बुलेटिन भी जारी किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के यशोभूमि में 5वें सेमिकॉन इंडिया का उद्घाटन करेंगे। इसमें 40 से अधिक देशों के 600 से अधिक प्रदर्शक, 300 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और प्रतिभागी भाग लेंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। महाराष्ट्र में प्रोफेसर भर्ती के लिए आवश्यक राज्य पात्रता परीक्षा सेट अब अगले महीने की 25 तारीख को आयोजित होगी। सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय के सेट विभाग ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से परीक्षा की संशोधित तारीख की घोषणा की। ये परीक्षा पहले 27 सितंबर को निर्धारित थी। पिछले सप्ताह हमले में क्षतिग्रस्त हुई सऊदी अरब की एक महत्वपूर्ण तेल पाइपलाइन मरम्मत के लिए 3 से 5 सप्ताह तक बंद रह सकती है। 7 मिलियन बैरल तेल प्रतिदिन ले जाने वाली ये पाइपलाइन सऊदी अरब के लिए लाल सागर के रास्ते तेल निर्यात करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सऊदी अरब ने गुरुवार के हमले के लिए ईरान समर्थित मिलिशिया के ड्रोन हमलों को जिम्मेदार ठहराया। अधिकारियों ने कहा कि मरम्मत के दौरान पाइपलाइन आंशिक रूप से चालू रह सकती है। अरुणाचल प्रदेश के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी बिरी टाकर ने जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में कांस्य पदक जीत लिया है। उन्होंने टोक्यो में यह खिताब अपने नाम किया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सोशल मीडिया पोस्ट में इस उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई दी और उनके भविष्य के सफर में निरंतर सफलता की कामना की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Himakshi Pawar. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar lauded the successful conclusion of BRICS Summit 2026 in New Delhi, saying that the world saw the strong convening power of India as most of the heads of state were present to represent their countries. Talking to the media, Dr. Jaishankar said that it's important to recognize that this BRICS summit was taking place in a very polarized world.
3: BRICS summit was taking place in a very polarized world where there are two major conflicts where there are very strong opinions and interests. Even in the midst of this polarization, we actually forged a consensus, which was West Asia, Middle East conflict. We were able to get out a statement to which everybody agreed, a statement urging peace, security, stability, long-term understanding, the smooth flow of global trade, of supply chains, energy, and of the protection of civilians and civilian infrastructure.
2: The minister stated that the BRICS countries were very clear that any act of terrorism is a criminal act

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। वक्त हो चला है 1:10 और 8 सेकंड। श्रोताओं, ये वक्त है कार्यक्रम गीत सुनहरे का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि अधिकांश राष्ट्राध्यक्षों की उपस्थिति से दुनिया ने भारत के मजबूत नेतृत्व और विभिन्न देशों को एक मंच पर लाने की क्षमता देखी। डॉ जयशंकर ने बताया कि सम्मेलन में 11 सदस्य देशों, 10 साझेदार देशों, 4 क्षेत्रीय संगठनों और 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित कुल 32 प्रतिनिधिमंडल शामिल हुए। उन्होंने कहा कि वैश्विक ध्रुवीकरण के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष जैसे सबसे जटिल मुद्दे पर भी आम सहमति बनना महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्री जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स देशों ने स्पष्ट रूप से माना है कि आतंकवाद का कोई भी कृत्य आपराधिक कृत्य है।
1: ब्रिक्स का रुख स्पष्ट था, आतंकवाद का कोई भी रूप आपराधिक माना जाएगा। ब्रिक्स देशों ने पहलगाम हमले की अस्वीकार्यता को स्पष्ट रूप से मान्यता दी। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की, जिसमें सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। साथ ही आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर बल दिया।
0: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति, विजन महासागर और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में वियतनाम प्रमुख भागीदार है। नई दिल्ली में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक की सह अध्यक्षता करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि आसियान के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे में वियतनाम महत्वपूर्ण साझेदार है। भारत ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण को इस वर्ष 31 दिसंबर तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली आपूर्ति को मंजूरी दे दी है। विद्युत मंत्रालय ने बताया कि मुजफ्फरपुर ढालकेबार लाइन के जरिए 600 मेगावाट और टनकपुर महेंद्रनगर लाइन के जरिए 54 मेगावाट तक विद्युत आपूर्ति की स्वीकृति दी गई है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद ने क्षेत्र में लंबे समय से चल रहे विरोध प्रदर्शनों और अशांति पर चिंता व्यक्त की है। परिषद ने कहा कि प्रदर्शनों को अब 100 दिन पूरे हो चुके हैं, जिससे अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है और व्यापक क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। परिषद ने चेतावनी दी कि सार्थक बातचीत में किसी भी प्रकार की देरी से जनता में असंतोष, अविश्वास और अस्थिरता और बढ़ सकती है। परिषद ने बाग जिला परिषद के सदस्य जावेद आरिफ अब्बासी की गिरफ्तारी पर भी चिंता प्रकट की। सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदी दिवस के अवसर पर कल जन सूचना सेवा शुरू करने की घोषणा की। इस सेवा के अंतर्गत महत्वपूर्ण फैसलों और आदेशों का सरल हिंदी में सार उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही करीब 15 से 30 मिनट की अवधि के हिंदी ऑडियो और वीडियो बुलेटिन भी जारी किए जाएंगे। दिल्ली सरकार एक महीने तक चलने वाले सेवा संकल्प अभियान के दौरान 13,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक ये अभियान चलाया जाएगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में राजधानी में 1,25,000 करोड़ रुपए के बुनियादी ढांचे से जुड़े काम किए गए। ग्लोबल साउथ के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के लिए मानवाधिकार विषय पर 5वें भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यकारी क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने विदेश मंत्रालय के सहयोग से किया। इसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, ओमान और दक्षिण अफ्रीका सहित 14 देशों के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के 38 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस वीडियो का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया है कि केंद्र सरकार 50,000 रुपए से कम आय वाले व्यक्तियों को मुफ्त कार उपलब्ध कराएगी। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये दावा एआई से निर्मित और फर्जी है। कार्यालय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हाय हमें यूं देखना, ऐसा ना हो बदनाम हो जाए, ये मुमकिन है, इसी का कल

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत बहार, रात्रि के 2 बजने को हैं। आइए अब सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि अधिकांश राष्ट्र अध्यक्षों की उपस्थिति से दुनिया ने भारत के मजबूत नेतृत्व और विभिन्न देशों को एक मंच पर लाने की क्षमता देखी। डॉ जयशंकर ने बताया कि सम्मेलन में 11 सदस्य देशों, 10 साझेदार देशों, 4 क्षेत्रीय संगठनों और 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित कुल 32 प्रतिनिधि मंडल शामिल हुए। उन्होंने कहा कि वैश्विक ध्रुवीकरण के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष जैसे सबसे जटिल मुद्दे पर भी आम सहमति बनना महत्वपूर्ण उपलब्धि है। डॉ जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स देशों ने स्पष्ट रूप से माना है कि आतंकवाद का कोई भी कृत्य आपराधिक कृत्य है।
2: ब्रिक्स का रुख स्पष्ट था, आतंकवाद का कोई भी रूप आपराधिक माना जाएगा। ब्रिक्स देशों ने पहलगाम हमले की अस्वीकार्यता को स्पष्ट रूप से मान्यता दी। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की, जिसमें सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। साथ ही आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर बल दिया।
1: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति, विजन महासागर और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में वियतनाम प्रमुख भागीदार है। नई दिल्ली में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक की सह अध्यक्षता करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि आसियान के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे में वियतनाम महत्वपूर्ण साझेदार है। भारत ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण को इस वर्ष 31 दिसंबर तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली आपूर्ति को मंजूरी दे दी है। विद्युत मंत्रालय ने बताया कि मुजफ्फरपुर ढालकेबार लाइन के जरिए 600 मेगावाट और टनकपुर महेंद्रनगर लाइन के जरिए 54 मेगावाट तक विद्युत आपूर्ति की स्वीकृति दी गई है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद ने क्षेत्र में लंबे समय से चल रहे विरोध प्रदर्शनों और अशांति पर चिंता व्यक्त की है। परिषद ने कहा कि प्रदर्शनों को 100 दिन पूरे हो चुके हैं, जिससे अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है और व्यापक क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। परिषद ने चेतावनी दी कि सार्थक बातचीत में किसी भी प्रकार की देरी से जनता में असंतोष, अविश्वास और अस्थिरता और बढ़ सकती है। परिषद ने बाग जिला परिषद के सदस्य जावेद आरिफ अब्बासी की गिरफ्तारी पर भी चिंता व्यक्त की। सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदी दिवस के अवसर पर कल जन सूचना सेवा शुरू करने की घोषणा की। इस सेवा के अंतर्गत महत्वपूर्ण फैसलों और आदेशों का सरल हिंदी में सार उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही करीब 15 से 30 मिनट की अवधि के हिंदी ऑडियो और वीडियो बुलेटिन भी जारी किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के यशोभूमि में 5वें सेमिकॉन इंडिया का उद्घाटन करेंगे। इसमें 40 से अधिक देशों के 600 से अधिक प्रदर्शक, 300 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और प्रतिभागी भाग लेंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। ग्लोबल साउथ के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के लिए मानवाधिकार विषय पर 5वें भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यकारी क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने विदेश मंत्रालय के सहयोग से किया। इसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, ओमान और दक्षिण अफ्रीका सहित 14 देशों के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के 38 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। देश में थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर मुद्रास्फीति में अगस्त में मामूली वृद्धि हुई है। वार्षिक आधार पर ये जुलाई में 9.78% से बढ़कर अगस्त में 9.92% रही। थोक मूल्य मुद्रास्फीति लगातार चौथे महीने 9% से अधिक रही। 5वां जम्मू फिल्म महोत्सव 17 सितंबर को शुरू होगा। उद्घाटन समारोह गुरुवार को सुबह 11 बजे राइटर्स क्लब के अभिनव थिएटर में आयोजित किया जाएगा। इस महोत्सव का उद्देश्य फिल्म निर्माताओं और जम्मू कश्मीर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय हिमाक्षी पंवार। External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar lauded the successful conclusion of BRICS Summit 2026 in New Delhi, saying that the world saw the strong convening power of India as most of the heads of state were present to represent their countries. Talking to the media, Dr. Jaishankar said that it's important to recognize that this BRICS Summit was taking place in a very polarized world.
4: BRICS Summit was taking place in a very polarized world where there are two major conflicts where there are very strong opinions and interests. Even in the midst of this polarization, we actually forged a consensus, which was West Asia, Middle East conflict. We were able to get out a statement which everybody agreed, a statement urging peace, security, stability, long-term understanding, the smooth flow of global trade, of supply chains, energy, and of the protection of civilians and civilian infrastructure.
3: The minister stated that the BRICS countries were very clear that any act of terrorism is a criminal act, and it also explicitly recognized the unacceptability of the Pahalgam attack. Condemning terrorism, Dr. Jaishankar said that BRICS emphasized zero tolerance for terrorism and rejected double standards in countering it. India's leadership of BRICS has won praise from several member countries following the successful conclusion of the 18th BRICS summit in New Delhi. The two-day summit held in the national capital under India's chairmanship concluded on Sunday. BRICS comprises 11 major emerging economies, representing nearly half the world's population and around 40% of global GDP. BRICS countries unanimously adopted the New Delhi Declaration 2026 at the summit on Saturday, with Russian President Vladimir Putin and Chinese President Xi Jinping among the world leaders attending. The New Delhi Declaration also commended India's chairship and expressed appreciation to the government and people of India for hosting the summit. Prime Minister Narendra Modi has expressed gratitude to the people of Rajasthan following the BJP's victory in the urban local body elections. In a social media post, the Prime Minister said, "The party's win is a testament to the triumph of truth over the echo of lies." Mr. Modi said, "The people of Rajasthan have once again made it clear that they fully support the policies of good governance and development under the double-engine government."

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गजल और गीत। इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं पंकज उदास की गाई हुई ये गजल।

जगजीत सिंह की आवाज़ में ये खूबसूरत सी गज़ल आप सुन रहे थे। अब आपको सुनवाते हैं गुलाम अली और आशा भोसले की आवाज़ में कार्यक्रम की एक और गज़ल।

ये गजल आप सुन रहे थे गुलाम अली के स्वर में। अब आइए आपको सुनवाते हैं चित्रा सिंह की आवाज में कार्यक्रम की ये गजल।

ये गजल आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल और पंकज उदास की आवाज में। अब आइए अब सुनवाते हैं कार्यक्रम की आखिरी गजल गुलाम अली की आवाज में।

0: गुलाम अली की गाई हुई इस गजल के साथ ही कार्यक्रम गजल और गीत अब यहीं समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। प्रातः के 4 बजे हैं। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

மனசின்னுள்ளே மகிமகள் வந்தால் மகேஸ்வரன் வருமா.

अब आप सुनेंगे भगवान कृष्ण को समर्पित एक रचना, स्वर चेरतला आर गोपालन नायर और के राधामणि के हैं।

0: इसके साथ ही आज का अर्चना कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। अब प्रस्तुत है नाद ब्रह्म।

Da da da da.

की 24वीं तिथि, तदनुसार 15 सितंबर सन 2026 सुबह के 4:53 और 51 सेकंड हुए हैं। अब हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आप प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। अब से कुछ ही पल में यानी 5 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 5 बजकर 5 मिनट पर होंगे अंग्रेजी में समाचार। आओ योग करें, ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे प्रातः 5 बजकर 10 मिनट पर।

प्रातः 5:20 पर आप सुनेंगे देशभक्ति गीत। स्वर रंजनी हिंदुस्तानी क्लासिकल संगीत का ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे प्रातः 5:30 पर।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना हम लेकर आएंगे प्रातः 6:10 से। 6:40 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चिंतन। रामचरितमानस गान में अयोध्या कांड भाग 49 आप सुन सकेंगे प्रातः 6:45 पर। संगीत का ये कार्यक्रम होगा प्रातः 7:10 पर। 7:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग।

0: प्रातः 8:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम स्वर गंगा। 9:45 पर होगा कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका। पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक हम लेकर आएंगे प्रातः 9:30 पर। प्रातः 10:10 से आप सुनेंगे कार्यक्रम आपकी फरमाइश। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सुरमंजरी आप सुन सकेंगे दिन में 11:30 पर। महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन हम लेकर आएंगे दिन में 12:10 से। एक ही फिल्म से ये कार्यक्रम होगा दिन में 1:10 पर। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। प्रातः के 5 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि अधिकांश राष्ट्राध्यक्षों की उपस्थिति से दुनिया ने भारत के मजबूत नेतृत्व और विभिन्न देशों को एक मंच पर लाने की क्षमता देखी। डॉ जयशंकर ने बताया कि सम्मेलन में 11 सदस्य देशों, 10 साझेदार देशों, 4 क्षेत्रीय संगठनों और 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित कुल 32 प्रतिनिधि मंडल शामिल हुए। उन्होंने कहा कि वैश्विक ध्रुवीकरण के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष जैसे सबसे जटिल मुद्दे पर भी आम सहमति बनना महत्वपूर्ण उपलब्धि है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स देशों ने स्पष्ट रूप से माना है कि आतंकवाद का कोई भी कृत्य आपराधिक कृत्य है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबेतकिन ने भारत और मर्कोसुर के बीच तरजीही व्यापार समझौते के विस्तार के लिए बातचीत शुरू करने की घोषणा की है। दोनों मंत्रियों ने वर्तमान समझौते में आपसी हित के क्षेत्रों को शामिल करने पर सहमति व्यक्त की। महाराष्ट्र में प्रोफेसर भर्ती के लिए आवश्यक राज्य पात्रता परीक्षा सेट अब 25 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी। सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय के सेट विभाग ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से परीक्षा की संशोधित तारीख की घोषणा की है। ये परीक्षा पहले 27 सितंबर को निर्धारित थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को नई दिल्ली के यशो भूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। ये वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को एक मंच पर लाने तथा सहयोग, नवाचार, विनिर्माण, निवेश और प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने का प्रमुख मंच है। 3 दिन के सम्मेलन में पैनल चर्चाएं और महत्वपूर्ण सत्र आयोजित किए जाएंगे। ये आयोजन भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को साझेदारी, निवेश, प्रौद्योगिकी सहयोग और आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े अवसर तलाशने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत पर प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर कहा कि पार्टी की जीत झूठ की गूंज पर सच्चाई की जीत का साक्ष्य है। श्री मोदी ने कहा कि राजस्थान के लोगों ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वे डबल इंजन सरकार के अंतर्गत सुशासन और विकास की नीतियों का पूरा समर्थन करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने साइबर धोखाधड़ी और विवादित लेन देन पर रोक के संबंध में नई रूपरेखा का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत बैंक पूरे अकाउंट के बजाय सिर्फ विवादित लेन देन की राशि को अस्थायी रूप से फ्रीज कर सकेंगे। ऐसा तभी किया जा सकेगा जब 1,000 रुपये या उससे अधिक के असामान्य अंतरण को म्यूल अकाउंट या साइबर धोखाधड़ी से जुड़े होने की आशंका हो। मसौदा निर्देश अगले वर्ष 1 अप्रैल से लागू होने वाले हैं, लेकिन बैंक इन्हें पहले भी अपना सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आओ योग करें।

नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर हिमानी चौखन। मैं हूं आपकी योग विशेषज्ञ। बहुत बार देखा गया है कि प्रेगनेंसी यानी गर्भावस्था के समय प्रेग्नेंट लेडीज को कई सारी समस्याओं से गुजरना पड़ता है, जिसकी वजह से डिलीवरी के दौरान ऑपरेशन तक की भी नौबत आ जाती है। और आजकल तो देखते हैं कि सिजेरियन केसेस भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए मेरा सभी गर्भवती महिलाओं से यह निवेदन है कि वह गर्भावस्था के दौरान भी पौष्टिक आहार का सेवन तो करें ही, अच्छी नींद लें और साथ साथ कुछ योग अभ्यास भी जरूर करें। योग अभ्यास में जैसे प्राणायाम, ध्यान के साथ साथ कुछ आप सिलेक्टिव आसन भी कर सकते हैं। और यदि किसी भी प्रकार की कोई कॉम्प्लिकेशन प्रेगनेंसी के दौरान आती है तो आप योग विशेषज्ञ के निर्देशन में योग अभ्यास को पहले अच्छी तरह से सीखें, फिर घर पर उसका अभ्यास करें। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि प्रेगनेंसी के समय आप कौन कौन से आसन कर सकते हैं। तो आज हम करेंगे भद्रासन। आइए जानते हैं कि भद्रासन किस प्रकार प्रेगनेंसी के समय किया जा सकता है। दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा फैलाकर पीठ और कमर को सीधा रखते हुए बैठ जाएं। दोनों हाथों को अपने नितंब के पास रखें। हथेलियां जमीन पर टिकी होनी चाहिए। इस स्थिति को हम दंडासन कहते हैं। अब श्वास भरते हुए दोनों पैरों के तलवों को आपस में मिलाने का प्रयास करें। श्वास बाहर छोड़ते हुए पैरों की उंगलियों को हाथों से पकड़कर ढक ले। श्वास बाहर छोड़ते हुए पैरों की उंगलियों को हाथों से पकड़ ले। श्वास लेते हुए एड़ियों को अपने शरीर के बिल्कुल नजदीक लेकर आए। जितना समीप हो सके उतना समीप लाने का प्रयास करें। यदि आपकी जंघाएं जमीन से टच नहीं हो रही हैं, जमीन से नहीं लग पा रही हैं, तो सहारे के लिए घुटनों के नीचे एक मुलायम तकिया आप रख सकते हैं। इस अवस्था में 10 से 30 सेकंड तक रुके तथा सामान्य रूप से श्वास पर श्वास लेते रहें। इस अवस्था में आप समय को भी बढ़ा सकते हैं। यह आसन गर्भावस्था में बहुत ही लाभकारी है तथा महिलाओं को मासिक धर्म के समय अक्सर होने वाले पेट दर्द से भी मुक्ति प्रदान करता है। इसके अन्य लाभ भी हो सकते हैं दोस्तों। यह आसन शरीर में दृढ़ता लाता है और मस्तिष्क को भी स्थिरता प्रदान करता है।

होता है। तो आज हमने सीखा कि प्रेगनेंसी के समय आप भद्रासन किस प्रकार कर सकते हैं। पूरे दिन में कम से कम आप यह अभ्यास सुबह शाम के समय दोहरा सकते हैं। प्रतिदिन करें योग, रहें निरोग। नमस्कार।

नमस्कार, मैं योगाचार्य सुनील गौतम ऐसे आसन के बारे में बात करेंगे जिसको करने से हमारे कमर का दर्द दूर होता है। किसी भी प्रकार के कार्य को करते हुए, ऑफिस में बैठे हुए चेयर पर, पढ़ाई करते हुए, किचन में काम करते हुए हम थकान अनुभव करने लगते हैं, पीठ में अकड़न या जकड़न अनुभव करने लगते हैं, तो इस आसन का